एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 29वीं तिथि। तदनुसार 20 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। 6:02 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात, 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:02 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, 9 बजे हिंदी में समाचार, 9:02 पर लेकर आएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने, 10 बजे अंग्रेजी में समाचार, 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर के प्रसारण समय होगा, 11 बजे सुनिएगा कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, 12 बजे अंग्रेजी में समाचार, 12:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्ले इट कूल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नियुक्त किया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को नए सिरे से मजबूत करने का आह्वान किया है। सऊदी अरब ने पुष्टि की है कि यमन के हौसी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से उसकी राजधानी रियाद पर हमला करने की कोशिश की। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज बड़े पैमाने पर देश भर में युवाओं को एकजुट किया जाएगा। एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। मनु भाकर और पवन सहरावत ने भारतीय दल की अगुवाई की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आज सेमीफाइनल में बांग्लादेश से मुकाबला। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

नमस्कार, सुप्रभात दिल्ली। सुबह के बज चुके हैं 6:12 और तारीख है 20 सितंबर 2026। दिन है रविवार। दिल्ली की सुबह धीरे धीरे जाग रही है, जाएगी खुशबू के साथ दिन शुरू हो गया है कई लोगों का। कोई मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुका है, कोई काम पर जाने की तैयारी कर रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके अलार्म के साथ अभी बातचीत ही चल रही है। बस यार 5 मिनट का स्नूज और फिर वो स्नूज हो जाता है, फिर 5 मिनट का और फिर 5 मिनट का और फिर फाइनली वो लोग शायद स्टॉप ही कर देंगे। लेकिन मॉर्निंग में जल्दी जागना इज द बेस्ट फॉर योर हेल्थ। मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है तो समझिए सुबह ने ऑफिशियली आपको गुड मॉर्निंग कह ही दिया है। आज है संडे, इसलिए थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून और अगले आधे घंटे में ढेर सारा खूबसूरत संगीत और एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाऊंगी। शायद वो कहानी आपके रुके हुए किसी काम को शुरू करने की वजह बन जाए, तो बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल ये गाना अलीसा मेंडोसा की आवाज में और मोहित चौहान की आवाज में फ्रॉम द मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

टाइम है स्टूडियो क्लॉक 70 मिनट्स पास्ट सिक्स और दिल्ली, जैसा कि अब मैंने आपसे वादा किया था, एक छोटी सी कहानी भाई एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हो जाती है ना जब दिन की शुरुआत, तो पूरे दिन ना वो मोटिवेशन का जो बीज हमने बोया होता है ना वो बना ही रहता है। तो इसी पर ही आज की कहानी, दो बीजों की। मिट्टी के अंदर दो छोटे से बीज पड़े थे। पहले बीज ने कहा, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, अपनी जड़ें नीचे फैलाना चाहता हूँ, मिट्टी को चीर कर ऊपर आना चाहता हूँ, धूप देखना चाहता हूँ, बारिश महसूस करना चाहता हूँ और एक दिन बड़ा सा पौधा बनना चाहता हूँ। उसने कोशिश शुरू कर दी। मिट्टी भारी थी, रास्ता आसान नहीं था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसने मिट्टी से अपना सिर बाहर निकाला और

दिन वो एक नन्ना सा पौधा बन गया। दूसरे बीज ने सोचा, अरे यार बाहर तो बहुत तेज धूप है, क्या मेरी जड़ें खराब हो जाएंगी या फिर मुझे धूप लग जाएगी, मुझे किसी ने तोड़ दिया तो? नहीं नहीं, मैं सही समय का इंतजार करूंगा। और वो सही समय का इंतजार करता रहा, सही समय का, सही मौसम का, सही परिस्थितियों का। एक दिन एक चिड़िया आई, उसने मिट्टी गुरे दी और उस बीज को खा गई। कहानी छोटी सी थी लेकिन बहुत बड़ी बात कह गई। कई बार हम भी ना जिंदगी में यही करते हैं, जब कॉन्फिडेंस आएगा ना तब शुरू करूंगा, जब सर्कमस्टांसेस सही होंगे तब कोशिश करूंगी, जब सही समय आएगा तब पहला कदम उठाऊंगा। लेकिन शायद परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। कभी कभी हमें पहला कदम उठाना पड़ता है और रास्ता उसके बाद दिखाई देता है। कहते हैं ना, दिल्ली से देहरादून जाना है तो दिल्ली से देहरादून आपकी लाइट की रोशनी नहीं दिखाएगी, वो थोड़ी सी ही कुछ मीटर की ही रोशनी दिखाएगी। बस उस थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी रोशनी को फॉलो करते हुए आप कैसे देहरादून पहुँच जाएंगे ना, पता नहीं चलेगा। तो यही थी आज की कहानी। आज संडे मॉर्निंग का थॉट अपने साथ पूरे दिन रखिएगा। पूरा रास्ता दिखाई देना जरूरी नहीं है, पहला कदम दिखाई देना ही काफी है। हो सकता है आपकी शुरुआत बहुत छोटी हो, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा सा बीज ही था।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है

एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: और लीजिए सुनते हैं अब हमारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप। श्री राधा अष्टमी के सुअवसर पर हम लाए हैं आपके लिए विशेष कार्यक्रम, जहां हम चर्चा कर रहे हैं श्री राधा रानी पर, किशोरी जी पर, स्वामिनी जी पर। और हमने पिछले कार्यक्रम में ये चर्चा की कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में जो ये बात कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि समस्त धर्मों को त्याग करके सिर्फ मेरी और मेरी शरण ले। बहुतों ने किया, लेकिन तो भी गोपियों ने जैसा किया वैसा कोई नहीं कर पाया। और हम यही चर्चा कर रहे थे, क्योंकि देखिए जब श्याम सुंदर स्वकीय भाव की लीला करते हैं विभिन्न भगवत स्वरूपों में, और स्वकीय भाव की लीला में जो श्याम सुंदर के आराधनी शक्ति हैं प्रिया जी, वो उनकी कांताओं के स्वरूप में होती हैं और स्वकीय भाव की लीला का आनंद देती हैं, द्वारिका में भी, अयोध्या में भी, सब जगह ही देती हैं। लेकिन एक भाव जो परकीय भाव है, मात्र भाव है, तत्वतः परकीय हो नहीं सकते राधा कृष्ण, क्योंकि वो एक ही तत्व है, राधा कृष्ण एकात्मा एक ही है। जैसे श्याम सुंदर और उनकी जो शक्ति है वो अमूर्त रूप में उनको उनके स्वरूप का आनंद देती है, और वही मूर्त रूप में श्री राधिका का रूप लेती हैं और असंख्य गोपियों का रूप भी लेती हैं। चंद्रावली जी हैं, पद्मा जी हैं, शैव्या जी हैं, भद्रा जी हैं, श्यामला जी हैं, ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, अनंत गोपियां हैं, उनके अनंत प्रकार हैं, अनंत स्वभाव हैं, विपक्षा हैं, तटस्था हैं, सुहृत पक्षा हैं, स्वपक्षा हैं, अनेकानेक गोपियां हैं। और इन गोपियों की वजह से ही प्रिया जी जो कि महाभाव स्वरूपिणी हैं, उन महाभाव सिंधु में प्रेम की अनंत तरंगे प्रकट होती हैं जो श्याम सुंदर को सुख प्रदान करती हैं। सब कुछ श्याम सुंदर के सुख के लिए है, इसीलिए श्याम सुंदर ने अपनी ही नित्य शक्ति को ये भाव उड़ाया है, पहनाया है। स्वयं भी भूल गए कि मैं भगवान हूं, प्रिया जी भी भूल गई कि मैं भगवती हूं, और नर्वत लीला प्रस्तुत की है ठाकुर जी ने, आस्वादन किया है, आस्वादन किया है। जहां पर लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा धैर्य, देह सुख, आत्म सुख मर्म, दुस्त्यज्य आर्यपथ निज परिजन, स्वजने करिए जतो ताड़न भर्त्सन, सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत बड़ा दृष्टांत प्रस्तुत किया है इस लीला के द्वारा भगवान ने, और ठाकुर जी ने विशुद्ध प्रेम का आस्वादन किया है, विशुद्ध प्रेम का, जहां पर प्रेम करने का कोई कारण नहीं है। ये कारण नहीं है प्रेम का कि पहले हम एक धर्म निभाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी धर्म और अधर्म के ऊपर का तत्व है। धर्म हमारे लिए है, धर्म उनके लिए नहीं है। अधर्म से हमें डरना चाहिए, अधर्म वो करते नहीं है, वो धर्म स्वरूप है, उनको बंधन में नहीं बांधा जा सकता। ठाकुर जी रसोवै सह हैं, रसिक शेखर हैं, वो अपनी नित्य शक्ति के साथ अनंत प्रकार की लीलाएं करते हैं, तो ये लीला क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, करते हैं, है ना, क्योंकि इसी लीला में वो ये दिखाते हैं कि देखो मेरे सुख के लिए गोपी ने लोक धर्म का त्याग कर दिया। कितनी बातें सुनी, अरे जो आर्य पथ त्याग नहीं सकता है, आर्य पथ को त्यागना ये तो असंभव है एक स्त्री के लिए उस समय तो खास तौर से, लेकिन वो भी त्याग दिया कृष्ण सुख के लिए, देह सुख, आत्म सुख। परिजनों ने, स्वजनों ने कितनी ताड़ना की, भर्सन किया, कलंक दिया, सब कुछ सह लिया श्री कृष्ण सुख के लिए। और यही है, यहा के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धोत वस्त्र जैसे नाही कोनो दाग। यही है श्री कृष्ण में दृढ़ अनुराग। तो यहां जो प्रेम है इस भाव में वो उपाधि रहित प्रेम है। यहां ये भी उपाधि नहीं है कि कृष्ण बहुत सुंदर है, ये उपाधि भी उनको आकर्षित नहीं करती है कि कृष्ण जो है वो हमारे पति हैं। ये उपाधि भी नहीं है वहां पर कि कृष्ण से मेरा कोई संबंध है। उपाधि रहित प्रेम है। प्रिया जी का प्रेम तो इतना गहन है,
मादनाख्य महाभाव है कि जहां पर कृष्ण और मैं, यानी कृष्ण अलग है और मैं अलग हूं, ये उपाधि भी नहीं है, ये उपाधि भी खत्म है। ऐसा उनका प्रगाढ़ प्रेम है। और सोचिए, हमें इसी राधा कृष्ण, यानी ये जो महाभावमयी राधा रानी है, मादनाख्य महाभावमयी राधा रानी, उनकी सेवा दी है गौरांग महाप्रभु ने। कौन है गौरांग महाप्रभु? श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जब एक हैं तो वो जो स्वरूप है वो गौरांग महाप्रभु का है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का है। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जहां तीन वांछाओं की पूर्ति के लिए ये रूप धारण किया, वहीं जीव को बड़ी ही कृपा करके अनर्पित चरी अवदान प्रदान किया है, वह है राधा दास्य। गौरांग महाप्रभु के चरण की शरणागति जो लेते हैं, वही इस भाव के महाप्रेम सिंधु में प्रविष्ट हो पाते हैं, वही ब्रज प्रेम को समझ करके प्रिया प्रियतम के इस प्रेम को, उनके सौंदर्य को, उनके माधुर्य को, प्रेम से उत्थित माधुर्य का आस्वादन करते हैं, वही वहां सेवा सुख प्राप्त कर पाते हैं। गौरांग महाप्रभु ने स्वयं इसका आस्वादन किया, पर किया भाव में ही उन्होंने राधा भाव का आस्वादन किया। जब वो गंभीरा में थे, गंभीरा में जब वो रहते थे, तो माथुर विरहिणी श्री राधा का भाव लेकर के क्रंदन करते रहते थे दिन रात, श्याम सुंदर की विभिन्न लीलाओं को याद करते थे, सोचते थे मैं ही माथुर विरहिणी राधा हूं। और जब वो जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने जाते थे तो श्याम सुंदर को देखते थे कि तुम वही हो, मैं भी वही हूं, मगर फिर भी तुम वो नहीं हो, कारण कि तुम्हारा जो रूप वृंदावन में है वो यहाँ कुरुक्षेत्र में कहाँ पर है, नहीं तुम तो राजा महाराजा हो गए, अब तुम कहाँ वो रह गए। तो ये जो भ्रमर गीत है श्रीमद् भागवत में, वो इसी भाव में है, जहाँ पर प्रिया जी का मोहनाख्य महाभाव स्पष्ट रूप से दिखता है, जहाँ चित्र जल्प की विभिन्न प्रकार की भंगिमाएं दिखती हैं प्रिया जी में। तो ये जो प्रगाढ़तम प्रेम है, जहाँ पर प्रिया जी के प्रेम का विभिन्न स्वरूप दिखता है, जहाँ वो वासक सज्जिका हो जाती है, राधा रानी और श्याम सुंदर को उनकी जो मंजरी है, दासी है, वो उनसे मिलाती है, और जब अभिसार कराती है तो अभिसार तो महलों में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो प्रेम भी छुपाना पड़ता है, और प्रेम प्रकट ना हो जाए इसका ध्यान रखना पड़ता है, प्रेम में बाधाएं बहुत हैं, दुर्लभता है। देखिए कितनी विचित्र बात है, राधा कृष्ण एक आत्मा है, एक ही तत्व है, लेकिन ऐसा खेल खेला, नर्वत खेल खेला कि जहां पर दुर्लभता है, और जहां दुर्लभता है वहीं आकर्षण है इस भागवतीय खेल में। तो ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, है ना, ये तो सिर्फ श्याम सुंदर और प्रिया जी का सुंदर अनुराग है, सुंदर लीला है, जहां पर प्रविष्ट हो सकता है एक जीव भी, अगर वो गौर चरण आश्रित भक्त का आश्रय ग्रहण करे। और जो लोग दासी भाव में प्रिया जी की आराधना करते हैं, वो ही इस भाव को समझ पाएंगे, और वो ही इस भाव में अनुराग रख करके प्रिया जी की सुंदर सेवा प्राप्त करेंगे। क्योंकि मैंने बताया आपको कि प्रिया जी का यहाँ जो प्रेम है, ये बड़ा ही सुंदर प्रेम है, जिसका आस्वादन श्याम सुंदर कर रहे हैं, और ये प्रेम, ये लज्जा, ये धैर्य और कुल मर्यादा, इन सब का बांध तोड़ करके जो प्रिया जी का प्रेम अनवरत बहता है श्याम सुंदर की तरफ, वो बहुत ही आस्वाद्य है, और उसी से श्याम सुंदर का माधुर्य इतना बढ़ जाता है। तो युगल माधुर्य का आस्वादन, युगल प्रेम का आस्वादन गौरांग महाप्रभु ने हमें दिया है। तो ये प्रेम कितने रूप लेता है, 30 दिन 30 तरह का अभिसार कराती हैं मंजरियां प्रिया जी को, ले जाती हैं निकुंज में, वृंदावन के निकुंज में, राधा कुंड के निकुंज में, गिरिराज जी की गुफाओं में, श्याम सुंदर से मिलाने के लिए। और यही प्रिया जी वासिक सज्जिका प्रेम और उत्कंठिता प्रेम, विप्लब्धा प्रेम, खंडिता प्रेम, कलहांत्रिता प्रेम, और उससे पहले पूर्वराग प्रेम, ये सब आस्वादन कराती हैं श्याम सुंदर को।
तो इसकी अनंत वैचित्र्य है, अनंत वैचित्र्य, अनंत। और ये सब आस्वादन करती हैं सखी मंजरियां। और इसीलिए श्रीमन महाप्रभु चूंकि इस रस को बांटना चाहते थे जन जन में, इसीलिए वो रूप गोस्वामी जी को लेकर आए। क्योंकि जब हम किशोरी जी की दासी होना चाहते हैं तो किशोरी जी की प्रधाना दासी का अनुगत्य लेना होगा, क्योंकि भजन तो अनुगत्य में ही होगा, है ना। इसीलिए हमारे आचार्यों ने ये कहा, सुनिया छी साधु मुखे बोले सर्वजन, श्री रूप कृपाए मिले जुगल चरण। हा हा प्रभु सनातन गौर परिवार, सबे मिली वांछा पूर्ण करो अमार। यानी श्री रूप जी की कृपा से ही युगल चरणों की प्राप्ति होती है। अगर हम दासी बनना चाहते हैं, निकुंज में युगल कृपा चाहते हैं, युगल माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं, क्योंकि माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। अगर माधुर्य का आस्वादन ही नहीं किया तो फिर क्या किया। तो रूप जी की कृपा से मिलेगा, गौरांग महाप्रभु की कृपा से मिलेगा, है ना। और इसीलिए एक दासी हमेशा यही सोचती है कि एई नव दासी बोली श्री रूप चाहिबे, हेनो शुभ क्षण मोर कतो दिने होबे, शीघ्र आज्ञा कोरिबेन दासी हेथा आए, सेवार सुसज्जा कार्य करहो त्वर आए। कि कब ऐसा होगा कि श्री रूप मंजरी मुझे देखेंगे कि ये नवदासी, और फिर मुझे आज्ञा करेंगे कि तुम सेवा के समस्त कार्यों को करो, सेवा की सामग्री लेकर आओ और प्रिया प्रियतम के सामने रखो। और फिर क्या होगा, फिर श्री रूप पश्चाते आमी रहिबो भीत होइया, दोहे पुनः कोही बेन आमा पाने चाहिए, सदै हृदय दोहे कोही बेन हासी, कोथाए पाइले रूप एई नवदासी। श्री रूप मंजरी तबे दोहा वाक्य सुनी, मंजू लाली दिलो मोरे एई दासी आनी, अति नम्रचित अमी इहारे जानी लो, सेवा कार्जे दिया तबे हिथाए राखी लो। जब मैं पहली बार राधा गोविंद से मिलूंगी तो रूप जी के पीछे ही खड़ी रहूंगी। थोड़ी सी सहमी हुई, तब वो बड़े ही सदय होकर मुझे देखेंगे श्याम सुंदर प्रिया जी, और पूछेंगे हंसते हुए कि ये नई दासी तुम्हें कहाँ मिली रूप। और रूप कहेंगी कि इनके गुरु मंजरी ने इन्हें हमें दिया, और ये तो बड़ी ही विनम्र है, जब मैंने देखा तो मैं इसे सेवा के लिए आपके पास ले आई। आहा, कितनी सुंदर बात है, है ना। तो देखिए, श्री राधिका की सेवा पाना, वो भी इस कलयुग में, इसे आसान किया है गौरांग महाप्रभु ने। क्योंकि उनके आने से पहले तो कोई जानता ही नहीं था कि राधा तत्व क्या है, ये तो जनाया गौरांग महाप्रभु ने अपने आचार्यों के माध्यम से। श्री रूप जी जिन्होंने हमें श्री भक्ति रसामृत सिंधु दिया, श्री उज्ज्वल नीलमणि जैसे ग्रंथ दिए, जिन्होंने हमें आचरण करके और प्रचार करके सिखाया, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जिन्होंने आचरण किया, प्रचार किया इस मंजरी भाव का, तो अपनी नित्य मंजरियों को लेकर के आए प्रिया प्रियतम इस धराधाम पर। हमारी समस्त जो मंजरियां हैं, श्री रूप मंजरी जी, श्री मंजुलाली जी, श्री रस मंजरी जी, श्री रति मंजरी जी, श्री गुण मंजरी जी, श्री विलास मंजरी जी, श्री लवंग मंजरी जी, श्री कस्तूरी मंजरी जी, ये समस्त मंजरियां हमारे आचार्यों के रूप में आई और उन्होंने ग्रंथ दिए और ये दिखाया कि कैसे श्री राधा रानी का भजन करना है, कैसे उनके लिए विलाप करना है, तड़पना है। तो ये तो हम जान ही नहीं सकते थे अगर आचार्य हमारे पास नहीं होते। तो हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं इस मामले में कि आचार्य हमें सब कुछ दे गए हैं। हमारे आचार्यों ने हमें इतने ग्रंथ दिए हैं कि जीवन समाप्त हो जाए तो भी वो ग्रंथ समाप्त नहीं होंगे, हर जगह

0: कुछ है हमारे पास। इसीलिए भक्त कहते हैं कि सुखमय वृंदावने नवल निकुंज वने कुंजेश्वरी कृष्ण प्रियतमा रसाब्धि तरंग सम दृष्टि भंगी मनोरम प्रणय चंचल विलोचना से लीलामयी देवी पुण्य दृष्टि मोर प्रति करिबे की करुणा स्वभावे देह मन इंद्रिय आदि प्रेम सेवा उपयोगी हुईबे की दासी पद लाभे इते को लालसा मने मदीश्वरी श्री चरणे कृपा मई करो अवधान भणे श्री प्रबोधानंद ओहे भानुकुल चंद कृपा बिनु गति नहीं आन। हमेशा यही कहते हैं प्रिया जी के चरणों में जो उनकी दासी होने का अभिमान रखते हैं, दासी होना चाहते हैं, चाहत रखते हैं, वो यही कहते हैं कि हे कुंजेश्वरी, हे बिहारिणी, हे स्वामिनी, हे राधिका, आप श्याम सुंदर के प्रणय रस में पूरी तरह से निमग्न हैं, आप कृष्ण प्रेममयी हैं, आप कृष्ण प्रेम से बनी हैं, आपके अंग प्रत्यंग महाभाव से बने हैं। हे स्वामिनी, आपका महाभाव ऐसा है कि आपको एक कल्प तक भी कृष्ण मिल जाए तो भी आपको क्षण जैसा लगता है कि अरे अभी ही तो देखा, देखा भी कहां ठीक से, और अगर पलक पड़ जाए कृष्ण दर्शन में तो आप विधाता को कोसने लगती हैं, कैसा महाभाव है। और श्री कृष्ण से अगर किसी का भी कोई संबंध देखती हैं तो उसे प्रणाम करती हैं, आप देखती हैं कि श्री कृष्ण के गले में माला है तो कृष्ण कितने दुर्लभ हैं, ऐसा सोचकर आप सोचते हैं कि ऐसा जन्म पाऊं कि मैं माला बन जाऊं या एक भ्रमरी बन जाऊं। और तो और आप ऐसी हैं स्वामिनी कि आप सोचते हैं कि ऐसा जीवन ही किस काम का जो कृष्ण बिना है, अगर ये जीवन ना रहे तो मेरे शरीर के पांच भूत, हालांकि आपका शरीर पंचभूत का नहीं है, सच्चिदानंदमय है, महाभाव से बना हुआ है, तो भी आप तो यही सोचती हैं नर्वत लीला में कि मेरे शरीर का पांच भूत भी कृष्ण की सेवा करे, मेरे नागर की सेवा करे, वो जिस जमीन पर चले उस धरा की मैं धूल बन जाऊं और उन्हें शीतलता प्रदान करूं, वो जहां स्नान करें मेरे शरीर का जल अंश वहां चला जाए और उनको सुख प्रदान करे, जल बन जाए, वो जब दर्पण में अपना मुख देखें तो मेरे शरीर का अग्नि जो अंश है वो तेज बन जाए, श्याम सुंदर अपना मुख दर्शन करें, और वायु अंश वायु में मिल जाए, श्याम सुंदर को शीतल वायु से आनंदित करे। तो इस तरह से आप तो हमेशा हमेशा कृष्ण सुख के लिए ही रहती हैं, उन्मादित रहती हैं कृष्ण सुख के लिए। लेकिन हे लीलामयी देवी, हम जानते हैं कि आप और श्याम सुंदर एक ही हैं, लीलामयी हैं आप, अनंत लीलाएं खेलती हैं श्याम सुंदर को सुख देने के लिए, तो आप मेरे प्रति क्या पुण्य दृष्टि करेंगी, क्योंकि आप स्वभावतः करुणामयी हैं, अनंत गुण हैं आपके, लेकिन मुख्य 25 गुणों में आपका एक गुण है कि आप करुणामयी हैं। इसलिए हे राधे, क्या आप मेरे देह को, मेरे मन को, मेरी इंद्रियों को प्रेम सेवा उपयोगी कर पाएंगी ताकि मुझे आपकी दासी का पद मिले, मैं रूप जी के अनुगत्य में, मैं गुरु मंजरी जी के अनुगत्य में आपकी सेवा प्राप्त कर सकूं, आपको सुख दे सकूं। हे ईश्वरी, आपके चरणों में बस यही लालसा है, यही लालसा है। तो हे भानुकुल चंद, आपकी कृपा के बिना गति नहीं है, आप कृपा करेंगी तो ही हो सकता है। तो इस तरह से एक भक्त प्रिया जी के चरणों में प्रार्थना करता है ताकि उसे उनकी प्रेममयी सेवा मिल पाए।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278899। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा। और श्री राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर हम लाए हैं आपके लिए स्पेशल कार्यक्रम, जहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री राधा तत्व पर। और ये तत्व बहुत बड़ा तत्व है, ये महाप्रेम तत्व है, महाप्रेम महाआनंद तत्व है। श्री राधिका की कृपा के बिना कोई भी श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकता, माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम के बिना माधुर्य आस्वादन नहीं हो सकता। प्रेम तत्व श्री राधिका ही है, कृष्ण प्रेम श्री राधिका है, प्रेम की महासिंधु है, महाभाव की सिंधु है। इसीलिए आचार्य कहते हैं, राधिका चरण रेणु भूषण कोरिया तनु अनाया से पावे गिरिधारी, राधिका चरण आश्रय जे करे से महाशय तारे मुई जाऊं बलिहारी। जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम, कृष्ण सुख विलासेरो निधि, हेनो राधा गुणगान ना सुनिलो मोर कान, वंचित करिलो मोरे विधि। तार भक्त संगे सदा रस लीला प्रेम कथा, जे करे से पाए घन श्याम, इहाते विमुख जेई तार कभू सिद्धि नाई, ना सुनी जन उतार नाम। देखिए इन छह पंक्तियों में सब कुछ कह दिया गया है। प्रिया जी के चरण रेणु को जो अपने अंग पर लगाता है, श्याम सुंदर को वो अचानक ही पा जाता है। तो श्याम सुंदर को वो पाकर हमें क्या करना है तो उसका उत्तर यही है, श्याम सुंदर माधुर्य निकेतन है, रसोवय सह है, रसमय है, लेकिन उस रसमय का जो रस है, उसका जो सौंदर्य है, वो प्रिया जी के साथ ही अतिशय मात्रा में विकसित होता है। और प्रिया जी की कृपा से, किशोरी जी की कृपा से, श्री राधिका की कृपा से जब स्वरूप शक्ति की कृपा होती है, आश्रय हमें मिलता है, प्रेम का एक कण मिलता है, तब श्याम सुंदर का माधुर्य आस्वादन हो पाता है, वरना नहीं हो सकता है। और वो अचानक ही हो जाएगा। प्रिया जी के चरण रेणु को अगर हम अपने तन पर भूषित करते हैं, है ना, तो प्रिया जी के चरणों का जो आश्रय लेता है वही महाशय है, यानी वो जीवन के महाआशय को जानता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कि मैं उस पर न्यौछावर हो जाऊं, बलिहारी हो जाऊं। और राधा नाम की जय जयकार है, क्योंकि वृंदावन ही उनका धाम है, नाम का भी और प्रियाजू का भी। वो है कौन? वो कृष्ण सुख विलास की निधि है, वो कृष्ण को सुख देने की शक्ति है, है ना, कृष्ण उनके बिना सुख नहीं पा सकते हैं। तो ऐसे प्रियाजू के गुणगान को अगर हमारे कान ने नहीं सुना तो यानी कि हम कहीं ना कहीं से वंचित हो गए। अगर उनके भक्तों का संग नहीं किया, उनके भक्त जो हमेशा उनकी रस लीला में निमग्न रहते हैं, उनका संग नहीं किया तो फिर हम वंचित रह गए। और जो संग करते हैं उन्हें घनश्याम मिल जाते हैं। कैसे घनश्याम? जो प्रिया जी के दासी का अभिमान रखते हैं, ऐसे भक्तों के लिए सिर्फ घनश्याम से काम नहीं चलता, उनका काम चलता है राधे श्याम से, राधा गोविंद। और इससे जो विमुख है, यानी युगल की लीला कथा जो नहीं सुनना चाहता, उसकी कभी सिद्धि नहीं हो सकती है, और आचार्य कहते हैं उसका तो हम नाम भी नहीं सुनना चाहते। और देखिए ये कलयुग है, महाकलयुग। इस महाकलयुग में इतना बड़ा उपहार लेके आए हैं हमारे गौरांग महाप्रभु कि वो एक तटस्था जीव शक्ति को राधा दास्यम का पद दे रहे हैं कि तुम मेरा आश्रय लो और तुम राधा दास्यम के पद तक आ जाओ। तो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जब हम उनका आश्रय लेंगे तो उनके आचार्यों का भी आश्रय लेंगे, रूप जी का आश्रय लेंगे, रघुनाथ जी का आश्रय लेंगे, जब उनका आश्रय लेंगे तो उनके ग्रंथों का भी आश्रय लेंगे। और जो उनके चरणों में समर्पित हैं ऐसे गुरुवर्ग का आश्रय लेंगे, और तब भजन क्रिया से जुड़ेंगे, और तब हमें समझ आएगा राधा तत्व कृपा से अपने आप नहीं, मैं राधा राधा राधा कहती जाऊं, तो शायद यही कृपा होगी प्रिया जी की कि उनका कोई भक्त हमें ऐसा मिल जाए कि हम भजन मार्ग से जुड़ सकें, गौर चरण आश्रित हो सकें। क्योंकि कलयुग में तो राधा कृष्ण एक होकर के गौर रूप में ही आए हैं, और वो हमारे लिए ही आए हैं।
प्रिया जी ने कृपा करके अपना प्रेम बांटा है और बांटने का कार्य करुणामयी श्री कृष्ण के साथ ही कर रही हैं। तो राधा गोविंद जब एक हैं, रस राज महाभाव स्वरूप जब एक हैं, तब गौर हैं, और जब गौर हैं तो अनर्पित चरी अवदान है। और ये अनर्पित चरी अवदान ऐसा है कि जो कभी किसी युग में नहीं दिया गया, सतयुग में नहीं दिया गया। सतयुग में किसी ने युगल सेवा नहीं पाई, पा भी नहीं सकता। ये तो कलयुग में ही दिया, वो भी अब एक कल्प में एक बार, यानी 4000 युगों में एक बार ही ये मिलता है अनर्पित चरी अवदान। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, यदि गौर ना हो तो तबे की हुई तो कैमुने धरिता हम देह, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जना तो के। ये तो गौरांग महाप्रभु की कृपा है कि वो प्रिया जी की मंजरियों को ले आए, रूप जी को, सनातन जी को, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट जी, इन सबको लेकर के आ गए और हम जान पाए ये युगल प्रेम क्या है, ये प्रिया जी का प्रेम क्या है। श्याम सुंदर की इस प्रेम के प्रति अतिशय वश्यता है, अतिशय वश्यता। भगवान भला किसी के वश में हो सकते हैं? नहीं, लेकिन होते हैं। किसके वश में? प्रेम के वश में। कैसा प्रेम? प्रिया जी का प्रेम। प्रिया जी का प्रेम, हाँ, प्रिया जी का प्रेम जो बढ़ नहीं सकता लेकिन तो भी बढ़ता रहता है। ये विरुद्ध धर्म है उनके प्रेम में। जो अतिशय सुनिर्मल है तो विवाह में वक्र व्यवहार से युक्त है ना, कौन समझेगा भला अगर वो ना समझाए। श्याम सुंदर ने खुद कहा है, अमा होते आनंदित हो त्रिभुवन, अमा के आनंद दीबे ऐसे कौन जन, आमा होते जार होए शत शत गुण, से ही जन आह्लादिते पारे मोर मन, आमा होते गुणी बड़ो जगते असंभव, एकली राधा ते ताहा कुरी अनुभव। कि मुझसे तो जगत ही, त्रिभुवन ही आनंदित होता है, मुझे भला कौन आनंद देगा। अगर तटस्था जीव शक्ति ये सोचे मैं ही गोपी बन जाती हूँ और कृष्ण को आनंद दूंगी, तो ये तो हंसी की बात है। क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा अगर किसी में गुण हो, वो भी 100 गुना ज्यादा, शत शत अधिक गुण हो, तो ही वो मुझे आनंद दे सकता है। और वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि किसी भी जगह मुझसे ज्यादा गुणी कोई नहीं है, लेकिन एक है, कौन? श्री राधा, सिर्फ श्री राधा है। तो ये वो स्वीकार करते हैं और ऐसी श्री राधिका का दास्यम हमें गौरांग महाप्रभु ने दिया है। तो गौरांग महाप्रभु की जय हो, जिन्होंने कलयुग में कलिहत जीवों को, जो नाना प्रकार के उपद्रवों से ग्रसित है, उनको ये अनुपम उपहार दिया है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही हमारी, और इसी के साथ आपको एक बार फिर से श्री राधाष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और अब आज्ञा दीजिए, प्रेम धारकों कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

वे श्रीमती राधिका मेरे लिए अपने पाद पद्मों की सेवा प्रदान करती रहें, जिनके श्री विग्रह की कांति कुमकुम से युक्त सुवर्ण कमल के गर्भ का अपहरण करने वाली है और जिनके श्री अंग की सुगंध केसर से युक्त कमल की सुगंध के यश का तिरस्कार करने वाली है और जो गोप राजकुमार श्री कृष्ण के अभिलषित सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो और अब समय है मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नियुक्त किया। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को नए सिरे से मजबूत करने का आह्वान किया। सऊदी अरब ने पुष्टि की है कि यमन के हौसी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से उसकी राजधानी रियाद पर हमला करने की कोशिश की है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज बड़े पैमाने पर देशभर में युवाओं को एकजुट किया जाएगा। एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। मनु भाकर और पवन सहरावत ने भारतीय दल की अगुवाई की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आज सेमीफाइनल में बांग्लादेश से मुकाबला। ये थी एफएम रेनबो पर इस घंटे की खास खबरें।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं निशा, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए बस आपसे यही कहूंगी जी कि जिंदगी से ना हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हाँ हाँ, कई बार फील होता है लाइफ में कि कहीं पीछे तो नहीं छूट गए हैं और हमारे साथ वाले लोग हमसे आगे निकल गए हैं। आपने भी सोचा होगा ना कभी, ऐसा लगता है कि हमारी प्रेयर्स, हमारे ड्रीम्स, हमारे प्लान्स दूसरों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही समय लेते हैं पूरा होने में। लेकिन ओवरऑल अगर आपने ये जान लिया कि जो लाइफ है वो कोई रेस नहीं है जी, तो कोई आपसे आगे होगा और बहुत लोग आपसे पीछे भी होंगे, ये बात समझ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है आपको लाइफ में हर चीज़ बड़ी क्विकली मिले, क्योंकि द राइट अपॉर्चुनिटी, द राइट पर्सन एंड द राइट सीजन ऑफन अराइव व्हेन यू आर फाइनली रेडी टू रिसीव इट। तो क्या आप तैयार हैं नई चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए अपनी लाइफ में? सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं हूं निशा, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

सितंबर महीने की 20 तारीख में सुबह सुबह संडे मॉर्निंग में आपका स्वागत कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के दिल्ली में रहने वालों के तो प्लान बने होते हैं सैटरडे संडे के लिए कि आज अर्ली मॉर्निंग स्पेशली किसी बर्ड वॉक के लिए जाना है, किसी हेरिटेज वॉक के लिए जाना है। बहुत सारे ग्रुप्स को आते हुए मैंने स्पॉट भी किया जो कि वॉक्स के लिए बस तैयार हो ही रहे थे सुबह सुबह, मतलब इन प्यारी बर्ड्स के जो दिल्ली में आती हैं सीजन चेंज के दौरान और माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं उन्हें ऑब्जर्व करना, उनको देखना, मतलब उसका अपना ही एक अलग मज़ा होता है, एक अलग चाम है ना। और मैंने आपको हमेशा से ही कहा है कि आई एम अ बर्ड, पता नहीं कब बन गई लेकिन बन गई। खैर, गुड मॉर्निंग, मैं निशा आपके साथ हूँ और दिल्ली का जो वेदर है बहुत अच्छा वेदर है, पशु पक्षियों के लिए तो मतलब अच्छा वेदर है ही। और हमें भी हल्की हल्की ठंड का एहसास होने लगा है कि सुबह सुबह होता है तो हल्का सा पता चल रहा है कि विंटर्स जो है वो आने वाली है एंड हमारा फेवरेट सीजन। घूमने फिरने से लेके खाने पीने तक हर चीज़ में बहुत मज़ा आने वाला है आने वाले दिनों में। तो आप दिल्ली की इस वेदर को, इस चेंज को एंजॉय करते रहिए, लेकिन चेंज के दौरान बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे अक्सर बीमार पड़ते हैं, उस बात का भी खास ख्याल रखना है। ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना है वो चटपटे गोलगप्पों में या फिर आइसक्रीम्स में, वैसे मैंने कल ही खाए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी आप अपना ध्यान रखें। फिलहाल बाहर का तापमान 27 बना हुआ है और मैक्सिमम ये सिर्फ 35 तक टच करेगा, मतलब यस, दिल्ली वालों का ख्याल ये वेदर रख रहा है। और हम आपका इस तरह के सुंदर म्यूजिक के साथ में बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर, मैं निशा हूँ आपके साथ। हैप्पी संडे मॉर्निंग।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ओए होए क्या गाना था। 102.6 FM रेनबो। गुड मॉर्निंग, मैं निशा हूँ आपके साथ में। और एक बात बताइए आप ही कि ये जो क्लीन अप वर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आज के समय में सबसे ज्यादा ये शब्द कहाँ यूज होता है? सोचिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे बच्चे घरों में टॉयज ऐसे फैला देते हैं ना, मतलब किसी मतलब पूरे घर में सिर्फ खिलौने ही नजर आते हैं, तब हम हार के उन्हें बोलते हैं बेटा लेट्स क्लीन अप, है ना। वहीं पर सबसे ज़्यादा ये क्लीन अप वर्ड इस्तेमाल होता है और हमारे कहने से घर क्लीन हो भी जाता है। लेकिन जिस जगह पर हम लोग टनों कचरा हर रोज़ फेंकते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसे कैसे क्लीन किया जाएगा? इसीलिए आज का दिन वर्ल्ड क्लीनअप डे है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल मोमेंट है जिसमें लोगों को इंस्पायर किया जाता है कि जो हमारी प्यारी सी अर्थ है ना, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है और ये जो कचरा इतनी बड़ी समस्या बन गया है उसी को दूर करना है। इसीलिए इस बार का ऑफिशियल थीम है क्लीन प्लेट्स टू क्लीन सिटीज। हमारी जो ये धरती है ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारी सर्वाइवल के लिए। और ये जो कचरा हर दिन का जनरेट होता है ना, वो कहीं डिसअपीयर नहीं हो जाता है। महात्मा गांधी जी की बात मुझे याद आ जाती है यहाँ पर कि सैनिटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडिपेंडेंस। तो यस, इसी बात को हमें अपने दिमाग में हमेशा रखना है। और बहुत छोटे छोटे मिथ्स जो हैं इस क्लीनअप के साथ में जुड़े हुए हैं। एक्चुअली कल ही जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि सच में हम डीपली इसके बारे में सोचते ही नहीं है। एक बहुत बड़ा मिथ तो मेरे आंखों के सामने आ गया कि कंपोस्टिंग जो है वो सिर्फ गार्डनर्स के लिए है, किसानों के लिए है। नहीं जी नहीं, हमारे घरों में जितना भी गीला कचरा इकट्ठा होता है उसे हम बड़ी आसानी से कंपोस्टिंग कर सकते हैं और इसे एक अपने रोजगार का साधन भी बना सकते हैं, जिसमें बहुत से लोगों ने ऐसा काम किया भी है जिन्हें कोई और खास काम नहीं था तो अपने घरों में उन्होंने कंपोस्ट क्रिएट की और वो अपने पड़ोसियों को सेल किया, एक छोटा सा इनकम का सोर्स भी अपने लिए बनाया और एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ा काम किया इनडायरेक्टली। वेस्ट सेग्रीगेशन जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कितने लोगों को हमने ये बात कहते हुए सुना है, देखो मेजर अपने घर के लेवल पे तो हम दो ही तरह से गीला और सूखा कूड़ा सेग्रीगेट करते हैं, लेकिन आगे चलकर यहाँ और लेवल्स पे सेपरेट होता है। बट हमें इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है कि जो ई वेस्ट हमारा क्रिएट होता है उसे हम नॉर्मल कचरे में ना फेंकें। पता है आपको, हर साल 40 मिलियन टन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है ग्लोबली जनरेट होता है, तो ये कहाँ जाएगा कचरा? ये वैनिश नहीं हो जाता है। और यही है मेरा एक और मिथ जिसपे गई कि जो वेस्ट है वो सिर्फ कलेक्टर जो है हमारे घर से आकर ले गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं डिसअपेयर हो गया, वो वहीं हमारे आसपास इकट्ठा होता रहता है, क्लटर करता रहता है। तो हमारी इस धरती को क्लीन अप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे हम अपना घर, ऐसा होता है ना, इमरजेंसी बेसिस पर अपना घर क्लीन करते हैं कि हाँ बस बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखना चाहिए, इसी तरह से अब ज़रूरत है काम करने की धरती के लिए भी। तो क्यों ना, तो चलिए आज 20 सितंबर के दिन से ही लेट्स डीक्लटर आवर प्लैनेट एंड आवर लाइव्स। क्योंकि जब हम लोग बहुत सारी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को हटा देते हैं ना जिंदगी से, तब जाकर इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए जगह बनती है। सोचिए और बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर।

बजे के दिन 1931 की बात करते हैं, भाप से चलने वाली पहली बस आज के दिन ही बनाई गई थी, चली थी वो, और 30 लोगों की क्षमता थी उस बस में। इसका मतलब कुछ खास बड़ी बस नहीं रही होगी, बहुत ही धीमी गति से ये चल रही थी। और इसका आविष्कार जो है गॉर्डन ब्राउन्स ने किया था, जो कि एक ब्रिटिशर साइंटिस्ट थे। इसके अलावा 1857 में 20 सितंबर के दिन ही जो आखिरी मुगल बादशाह थे उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, और इस दिन से ही दिल्ली पर, या फिर यूं कहें पूरे देश पर ही अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। और 1946 में आज ही के दिन कैन फिल्म फेस्टिवल, जो कि वर्ल्ड वॉर टू की वजह से बहुत दिनों से डिले किया जा रहा था, फाइनली 20 सितंबर 1946 को पहला कैन फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए, मैं जल्दी वापस आती हूँ।

वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो 7:39 हो चुके हैं। मैं निशा हूँ आपके साथ में। आज देखे हम अपने देश का तिरंगा फहराने का मौका जब भी हमें मिलता है तो हम पीछे नहीं हटते। हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा हजारों लाखों लोग बनते हैं, अपने घर की बैल्कनीज पर छतों पर तिरंगा फहराते हैं। लेकिन एक बात सोचती हूँ कि एक समय ऐसा भी था जब लोगों को तिरंगा फहराने तक के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी थी, और एक ऐसी ही महिला की कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बचपन से ही जिनके माता पिता का साया उनके सर से उठ गया, नानी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अपने नानी के कामों में हाथ बटाती थी बचपन से ही, मन लगाकर पढ़ाई भी करती थी, लेकिन इतनी विषम परिस्थितियां थी जीवन जीने की। तब भी इन परिस्थितियों के बावजूद कनकलता बरुआ की मैं बात कर रही हूँ, जिनका झुकाव राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की ओर हो गया था, और आज इनकी शहादत का दिन है। सोचिए, जब एक समय में पुलिस के अत्याचार लगातार लोगों पर बढ़ते चले जा रहे थे, स्वतंत्रता सेनानियों से जेलें भर गई थी और कई लोगों को पुलिस की गोली का शिकार बनना पड़ता था, और इसी आंदोलन के लिए लोगों ने 20 सितंबर 1942 के दिन तेजपुर जगह थी वहां की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया था। और तब कनकलता की नानी ने उन्हें कहा था कि देखो तुम बड़ी हो गई हो, शादी की तुम्हारी उम्र है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी शादी की अपेक्षा भारत की आज़ादी को वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मान चुकी थी और उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए कनकलता आत्म बलिदानी दल की सदस्य थी उस दिन, और हाथों में तिरंगा झंडा थामे हुए वो उस पूरे दल का नेतृत्व कर रही थी। पुलिस ने जब भीड़ को बढ़ते हुए देखा तो गोलियों की बौछार कर दी गई, और पहली गोली कनकलता ने अपनी छाती पर झेली और देश की आज़ादी का सपना लिए वो आज 20 सितंबर 1942 के दिन अलविदा कह गई इस दुनिया को।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM 7:45 बाय द स्टूडियो क्लॉक और हमारा दिल बहुत ही चीजों के लिए धड़कता है लेकिन हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए भी यस हमारा दिल जरूर धड़कता है। एशियाई खेलों की शुरुआत हो चुकी है, आपको पता ही होगा, जिसका भव्य उद्घाटन हो चुका है, उसका हम साक्षी बन चुके हैं और अच्छा लग रहा था अपने सभी खिलाड़ियों को पूरे जोश में जब मैंने देखा उस सेरेमनी में। और आज बहुत सारे मुकाबले होने वाले हैं लेकिन एशियन गेम्स में विमेंस क्रिकेट का आज सेमीफाइनल मैच भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा, इसकी बात हम थोड़ी डिटेल में कर लेते हैं। आज मुकाबला ये लगभग 10:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया अगर आज जीतती है तो 22 सितंबर को गोल्ड मेडल मैच के लिए खेलेगी। T20 इंटरनेशनल में ये बांग्लादेश और इंडिया 25 बार एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं जिसमें से 22 मुकाबले भारत ने जीते हैं और बाकी के 3 मुकाबलों में बांग्लादेश को जीत मिली है। लेकिन हमारी होप्स काफी हाई हैं, लग रहा है कि इंडियन टीम ही जीतेगी। और आखिरी जीत जो है अगर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ मिली थी वो 2023 में मिली थी। तो यस, हम अपने खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि एशियाई खेलों में भारत का तिरंगा बहुत ऊंचा रहने वाला है, ऐसा हमें उनके ऊपर 100% यकीन है। आप बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर 102.6 FM, यहां पर भी आपको यकीन करना चाहिए कि म्यूजिक तो श्योरली 24/7 आपको मिलेगा।

उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

20 सितंबर का दिन है, आकाशवाणी रेनबो, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं निशा हूँ आपके साथ में। और भारत की मिट्टी से बहुत ही गहरा लगाव रखने वाली जानी मानी समाज सेविका, लेखिका और या यूं कहे स्वतंत्रता सेनानी भी एनी बेसेंट की बात कर लेते हैं। आज इनकी पुण्यतिथि है। ये एक ऐसी विदेशी महिला थी

जो भारत में रहने लगी थी, और उन्होंने खुद को कभी भी विदेशी नहीं समझा, हमेशा से हिंदू धर्म का व्याख्यान किया करती थी, ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, इनकी स्मरण शक्ति जो थी बहुत ही अच्छी थी, कभी नोट्स नहीं बनाती थी, और वेशभूषा का हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, समय की बहुत ही ज़्यादा पाबंद थी, और मेम साहब कहलाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उन्हें अम्मा नाम पसंद था कि लोग उन्हें अम्मा कहकर बुलाए, लेकिन फिर भी भारत ने प्रेम से उन्हें माँ बसंत कहकर सम्मानित किया, और महात्मा गांधी जी ने भी उन्हें बसंत देवी की उपाधि से विभूषित किया था। इंग्लैंड की सबसे शक्तिशाली महिला ट्रेड यूनियन की जो है वो सचिव रही थी। हमेशा से अपने जीवन में इन्होंने मजदूरों, अकाल पीड़ितों और अभावग्रस्तों के लिए काम किया, और भारत को स्वतंत्रता दिलाने का भी उन्होंने लगातार प्रयास किया। आज 20 सितंबर 1933 में चेन्नई के इनका निधन हुआ था, और उस जमाने में वैसे ये संभव नहीं था कि उनके शरीर को वाराणसी लेकर आया जा सके विमान के द्वारा, इसीलिए उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए ही भारतीय पद्धति से उनका दाह संस्कार हुआ, और उनके अस्थि कलश को बाद में विसर्जन के लिए लेकर आया गया बनारस। आकाशवाणी रेनबो, इस तरह सुनते रहिए, इसी तरह की जर्नी हमारी और आपकी चलती रहेगी, और इस तरह के महान विभूतियों की बातें हमेशा एफएम रेनबो पर होती रहेंगी। फिलहाल मैं जा रही हूं 9 बजे दिल के तराने, गाने नए पुराने आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। कीप लिसनिंग।

नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में 8 बज गए हैं और लीजिए सुनिए अभी तक की खास खबरें। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविरों में मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। यश दबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए हैं। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को नए सिरे से मजबूत करने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान है। और जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आज सेमीफाइनल में बांग्लादेश से मुकाबला होगा। ये थी अभी तक की खास खबरें। बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

गुड मॉर्निंग दिल्ली का अगला सेगमेंट लेकर आ गई है आपकी आरजे खुशी। संडे की एक खूबसूरत सुबह, थोड़ी सी फुर्सत, थोड़ा सा सुकून और अपने शहर के साथ वक्त बिताने का एक परफेक्ट बहाना। मैं हूँ आपकी दोस्त खुशी और इस घंटे हम बात करेंगे अपनी दिल्ली की, क्योंकि भाई प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली। क्या नया हो रहा है शहर में, यानी 20th September यानी कि आज 20 तारीख को दुनिया भर में कौन सा स्पेशल डे ऑब्जर्व किया जा रहा है, दिल्ली में आज संडे को क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है और कुछ ऐसी अपडेट्स जो डायरेक्टली हम दिल्ली वालों की एवरीडे लाइफ से जुड़ी हुई है। तो चाय की पहली सिप हो चुकी है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए क्योंकि संडे मॉर्निंग को बनाते हैं हम और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग। रेनबो स्टेशन 102.6 पर

0: जिगर और प्रिया सरारिया की आवाज में दिस ट्रैक वॉज फ्रॉम द मूवी शुद्ध देसी रोमांस। अच्छा दिली, आज मुझे ये बताओ कि संडे वाली सफाई होने वाली है, किसी घर में कबर्ड खुलेगा, किसी के घर में वो ड्रॉअर साफ होगा जिसमें दुनिया भर के हजारों चार्जर्स पड़े हुए हैं जो आधे तो चलते नहीं हैं, आधों की तार हिलानी पड़ती है और आधे ऐवे ही साथ आ गए, और कुछ लोग कहेंगे कि संडे है यार रहने दो थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज सफाई की बात हम सिर्फ हमारे घर तक लिमिटेड नहीं है। 20 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड क्लीनअप डे ऑब्जर्व किया जाता है, जैसा कि निशा ने भी बताया है, और 2026 का थीम ना बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्रॉम क्लीन प्लेट्स टू क्लीन सिटीज। यानी बात सिर्फ सड़क से कचरा उठाने की नहीं है, बात हमारी प्लेट से शुरू होती है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक दुनिया भर में हाउस होल्ड्स, फूड सर्विसेज और रिटेल लेवल पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में खाना वेस्ट होता है, और कंज्यूमर लेवल फूड वेस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा हाउस होल्ड से ही आता है। तो आज का संडे चैलेंज ना बहुत सिंपल है, इनफैक्ट इसको सिर्फ संडे का चैलेंज नहीं पूरी अपनी लाइफ का चैलेंज बना लीजिए कि प्लेट में उतना ही लीजिए जितना खा सकें। कई जगह आपने देखा भी होगा लिखा हुआ उतना ही ले थाली में कि वेस्ट ना जाए नाली में। भाई बहुत मेहनत लगती है खाना, वो जो फार्मर्स होते हैं उसको उगाते हैं, वो कहाँ होलसेल से, रिटेल से, हमारे घर से, किचन से प्लेट में आता है, और फिर अगर वो वेस्ट हो जाए ना तो नहीं यार, इतनी तो रिस्पेक्ट करो भाई हमारे अन्न देवता की। फ्रिज में अगर कुछ पहले से पड़ा हुआ है ना उसको पहले यूज़ करो फिर कोई नई चीज़ बनाओ। और बाहर निकले तो छोटी सी हैबिट, मेरा कचरा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि क्लीन दिल्ली की बिगनिंग किसी डिपार्टमेंट या कैंपेन, किसी कोई भी डिपार्टमेंट या कोई कैंपेन चलाने से नहीं होगी, वो हमसे होगी, हमसे शुरुआत होगी। और मुझे तो 2026 का ये थॉट बहुत ही पसंद आया, क्लीन प्लेट, क्लीन होम, क्लीन गली एंड इवेंचुअली अ क्लीनर सिटी। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर्स से छोरे से ब्रेक के बाद।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी।

टाइम पर स्टूडियो क्लॉक 17 मिनट्स पास्ट 8 आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली आपके आज खुशी के साथ। और आपको जैसा पता ही है सेवा संकल्प अभियान ये क्या है। सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने और उनके जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलाया जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी जनसेवा और जनसंपर्क अभियान है। और इस अभियान की जो मुख्य विशेषताएं या मुख्य बातें हैं वो पता है क्या है। पहली, जनसेवा और जन भागीदारी यानी कि नागरिकों विशेषकर युवाओं और सामाजिक सरोकारों और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना। दूसरी, विकास कार्यों का प्रसार यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी को जन जन तक पहुंचाना। साथ ही तीसरा, विकसित भारत 2047 यानी कि नागरिकों को विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प साथ जोड़ना।

0: ये आपका प्यार ही तो है तो जो हमें बार बार खींच के ले आता है। वेलकम बैक लिसनर्स टू रेनबो स्टेशन 102.6 प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली आपके आरजे खुशी के साथ। अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट उन लिसनर्स के लिए जिनका कनेक्शन दिल्ली एयरपोर्ट से है। आज यानी कि संडे 20 सितंबर दिल्ली एयरपोर्ट का थर्ड रनवे 11R29L ऑपरेशंस के लिए रीओपन हो रहा है। ये रनवे लगभग 7 महीने से रिहैबिलिटेशन वर्क के लिए बंद था और इस दौरान रीसरफेसिंग, पेवमेंट स्ट्रेंथनिंग और लाइटिंग की अपग्रेड्स जैसे काम किए गए और रिक्वायर्ड रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद रनवे को दोबारा ऑपरेशंस में लाया जा रहा है। अब यहाँ पैसेंजर नेचुरली सोचेगा खुशी रनवे खुल गया तो हमें क्या। सिंपल सी बात है, दिल्ली का आईजी एयरपोर्ट देश के बिजीएस्ट एयरपोर्ट में से एक है तो एडिशनल रनवे कैपेसिटी का ऑपरेशनल बेनिफिट एयरपोर्ट को मिल सकता है। वैसे अगर आज आपकी फ्लाइट है ना तो संडे मूड में कहीं घर से लेट मत निकलना। एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन का लेटेस्ट फ्लाइट का जो स्टेटस है वो ज़रूर चेक कर लेना। और आप अगर कहीं भी ट्रैवल नहीं कर रहे तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री।

0: अले द्वारा जनहित में जारी।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज में ये ट्रैक चल रहा था फ्रॉम द मूवी चांदनी चौक टू चाइना। अब चांदनी चौक से चाइना वाली बात हो रही है और मैंने अभी बात की थी एयर ट्रांसपोर्ट की, तो एयर ट्रांसपोर्ट से अब हम आ जाते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट पे। अब मैं बात करती हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। ऐसे आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स की स्ट्राइक की वजह से दिल्ली में बस सर्विसेज पर इम्पैक्ट देखा गया और कुछ रूट्स पर पैसेंजर्स को डिलेज और बस शॉर्टेजेस भी फेस करनी पड़ी थी। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक डीटीसी ने 2693 यानी कि 2693 कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स को टेम्पररली रीडिप्लॉय किया है ताकि इफेक्टेड डिपॉट्स और रूट्स पर बस ऑपरेशंस को सपोर्ट किया जा सके। तो अगर आज आप डीटीसी बस से ट्रैवल करने वाले हैं, स्पेशली किसी टाइम सेंसिटिव काम के लिए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो है ना ट्रैवलिंग टाइम लेकर ही चलना, वो सेंसिबल रहेगा। और वैसे भी दिल्ली में एक गोल्डन रूल तो है ही भाई, डिस्टेंस जो है ना वो गूगल मैप्स बता देते हैं, लेकिन जो टाइम है वो दिल्ली ट्रैफिक ही डिसाइड करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे शहर की लाइफलाइन है, तो उम्मीद करते हैं कि सर्विसेज जल्दी से स्मूथली नॉर्मलाइज हो जाएंगी। फिलहाल आपका संडे स्मूथ बनाने के लिए ये ट्रैक।

गुड मॉर्निंग दिल्ली प्रोग्राम है तो दिल्ली में क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। भाई संडे का दिन है तो घर पे बैठना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आपको दिल्ली की कल्चर और हेरिटेज एक्सप्लोर करना पसंद है तो आज एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी चितरंजन पार्क यानी अपनी दिल्ली के मिनी बंगाल में स्केड्यूल्ड है। दुर्गा पूजा से पहले एक कल्चरल हेरिटेज वॉक या पूजो आश्चर्य ऑर्गेनाइज की गई है। ये वॉक सीआर पार्क में सुबह 8 बजे से स्केड्यूल है और इसमें बंगाली कल्चर, दुर्गा पूजा प्रिपरेशंस, हिस्ट्री, माइथोलॉजी, फूड और लोकल ट्रेडिशन को एक्सप्लोर किया जा सकता है। और ऑर्गेनाइजर के इवेंट के लिस्टिंग के मुताबिक एडवांस बुकिंग मैंडेटरी है, तो अगर अभी भी टाइम है आप एडवांस बुकिंग अभी कर लीजिए और जा सकते हैं। नहीं तो वैसे भी दुर्गा पूजा के आसपास सीआर पार्क यानी चितरंजन पार्क का जो एटमोसफेयर है दिल्ली में रहकर कोलकाता की एक छोटी सी झलक दे जाता है। लाइट्स, मार्केट्स, फूड, म्यूजिक, पंडाल की प्रिपरेशन, दिल्ली की यही तो खूबसूरती है। एक ही शहर में आपको पूरे हिंदुस्तान के कलर्स मिल जाते हैं। विकासपुरी में मेला लगा हुआ है, पुरानी दिल्ली में मेला लगा हुआ है, पंजाब के फ्लेवर मिल जाते हैं, बंगाल की पूजो भी, पुरानी दिल्ली की तहजीब भी, साउथ दिल्ली की मॉडर्निटी भी, एंड दैट्स दिल्ली।

0: दिल्ली की बात हो रही है तो चलिए अब सड़कों की बात कर लेते हैं दिल्ली की। और दिल्ली में सड़कों की बात हो और ट्रैफिक की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो दिल्ली के पीडब्ल्यूडी से एक करंट अपडेट है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा जी ने कहा है कि ऑफिशियल्स को कहा है कि दिल्ली में 600 किलोमीटर रोड्स की रीसरफेसिंग और रिनोवेशन वर्क को 30 नवम्बर तक कम्प्लीट करने के डायरेक्शन दे दिए गए हैं। रिसेंट इंस्पेक्शन में रोडवर्क की क्वालिटी और प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड को फॉलो करने पर भी इम्फोसाइज दिया गया है। तो अब रोड रिपेयर का मतलब कुछ वक्त के लिए तो डायवर्जन या इनकन्वीनियंस भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेटर रोड सरफेस का बेनिफिट कम्यूटर्स को ही तो मिलना है। तो अगर आपके एरिया में भी रोड वर्क चल रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और हाँ, कंस्ट्रक्शन बैरिगेड को ना फॉर्मूला वन चिकन समझ कर जिगजैग ड्राइविंग बिल्कुल भी मत करिएगा। सेफ ड्राइव, पेशेंट ड्राइव, बिकॉज संडे हो या मंडे, घर पहुंचना डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सब लिसनर से छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू द प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली, जहां आपकी आज खुशी आपके साथ बनी हुई है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

हाईवे से ये ट्रैक चल रहा था रेनबो स्टेशन 102.6 पर जहाँ प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली आपके आज खुशी के साथ। और आज वर्ल्ड क्लीन अप डे है तो दिल्ली की बात यमुना के बगैर इनकम्प्लीट लगती है। यमुना सिर्फ दिल्ली से गुजरती हुई एक नदी नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट अ रिवर, ये हमारे शहर की हिस्ट्री, इकोलॉजी और आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दिल्ली में यमुना रिवर बैंक क्लीनलीनेस को लेकर भी ड्राइव्स चलती रही हैं और जहाँ गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ सिटीजन्स, वॉलंटियर्स और कम्युनिटी ऑर्गेनाइज को इन्वॉल्व करने की अप्रोच रखी गई है, वहां एक मेजर क्लीनलीनेस कैंपेन में दिल्ली के मल्टीपल घाट्स पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू वेस्ट रिमूवल और रिवर बैंक क्लीनलीनेस पर फोकस भी करते ही हैं और करते आएंगे। हम अक्सर कहते हैं ना कि दिल्ली क्लीन होनी चाहिए, भाई बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन एक बार सेंटेंस को ना थोड़ा सा चेंज करके देखिए कि मैं दिल्ली को क्लीन रखूंगा या मैं दिल्ली को क्लीन रखूंगी। बस एक वर्ड चेंज हुआ है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी चेंज हो गई है। आज वर्ल्ड क्लीन अप डे पर एक छोटा सा प्रॉमिस कर सकते हैं, कार की विंडो से कुछ बाहर नहीं प्लीज यार। इतने पढ़े लिखे लोग हैं और मैंने देखा था कि एक लेडी ने अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाई और उस लेडी ने खिड़की खोली, रैपर सड़क पे फेंक दिया और उसको देख के उसके बच्चों ने भी फेंक दिया। भैया हम ही अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, प्लीज कार की विंडो से कुछ भी बाहर नहीं फेंकें, प्लास्टिक बॉटल्स रोड पर नहीं फेंकें, पार्क में अगर पिकनिक कर रहे हैं तो कचरा वहीं नहीं छोड़े, और सबसे ईजी खाना वेस्ट नहीं। छोटी छोटी आदतें लेकिन बड़े डिफरेंस लेकर आती है।

कमी तो हम होने ही नहीं देंगे, ना गानों की कमी होने देंगे, ना आरजेस की कमी होने देंगे, और किसी भी चीज की कमी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। और निशा आ गई है स्टूडियो में विद द प्रोग्राम दिल की तरह, आने गाने नए पुराने जो आप सुनेंगे 9 से 10, 10 से 11 आपके साथ रहेंगी हरप्रीत कौर। मैचलेस म्यूजिक आर प्रोग्राम है विच इज अ वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम। 11 से 12 आप सुनेंगे रेणु भट्ट के साथ पोस्ट बॉक्स नंबर 111। 12 से 1 आपके साथ रहेंगी हरप्रीत वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम में, जो कि है प्ले इट कूल और रेनबो पर यूं ही सिलसिला चलता रहेगा गीत संगीत प्रोग्राम्स का।

आरजे खुशी यानी कि मेरे जाने का वक्त आ गया, और जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके समाधान की दिशा में एक पहला कदम उठाना आपके हाथ में होता है। तो हिम्मत कीजिए और कदम जरूर उठाइए। इसी विचार के साथ आरजे खुशी को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, खुश रखिए और सुनते रहिए रेनबो स्टेशन।

आकाशवाणी रेनबो पर अब समय है इस घंटे के मुख्य समाचारों का। सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए पहली अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविरों में मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए हैं। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को नए सिरे से मजबूत बनाने का आह्वान किया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान और जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आज सेमीफाइनल में बांग्लादेश से मुकाबला होगा। ये थी एफएम रेनबो पर इस घंटे की खास खबरें।

वेलकम बैक 102.6 एफएम रेनबो. दिल की तरह ने गाने नए पुराने लेकर मैं निशा आ गई हूँ. वही प्यारा प्रोग्राम, वन एंड ओनली प्रोग्राम, जहाँ पर आपको नए गानों के बीच में तीन खास रेट्रो गीतों का तड़का भी मिलता है. यस, तो आज के वो तीन स्पेशल गाने कौन से होंगे वो भी आपको सुनना है. और अगर दिल्ली NCR में कहीं पर भी कोई ट्रैफिक अपडेट है तो वो आप मुझे दीजिए. 9868107070 इज द नंबर. कीप लिसनिंग. मैं निशा.

102.6 FM रेनबो, मैं निशा हूँ आपके साथ। दिल के धराने गाने नए पुराने में पहला रेट्रो गीत आपको सुनवाई देती हूँ, ठीक है जी। तो एक राजा जी की कहानी, फिलहाल उसी फिल्म का गाना लेकर आई हूँ। राजा जी की कहानी, ये फिल्म का नाम नहीं है, राजा नाम का कैरेक्टर जो है फिल्म में देवानंद ने प्ले किया था, जिसे उसकी जो बायोलॉजिकल मदर होती हैं वो बचपन में ही बहुत यंग एज पर छोड़ देती है और बस वो बड़ा होता है जीवन के सहारे। जीवन तो आपको पता ही है ना किस तरह के रोल्स हिंदी सिनेमा में किया करते थे, मोस्टली विलन। तो ये हिंदी लैंग्वेज की अच्छी क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसे अमरजीत साहब ने बनाया था और इसमें सचिन देव बर्मन जी का म्यूजिक था, तो इसी फिल्म का एक खासम खास गाना लेकर आई हूँ हमारे प्यारे रफी साहब की आवाज़ में। एंजॉय।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: मेरे यार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर इसी तरह दिल के तराने कार्यक्रम में नए और पुराने गाने आपको सुनते मिलते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: नमस्कार, एशिया के सबसे बड़े खेल मंच से जुड़ी हर हलचल की ताजा अपडेट के साथ मैं हूं कविता।
3: एंड आई एम

0: समापन।
1: जापान के आइची नागोया में एशियन गेम्स का रोमांच हर मुकाबले में देखा जा रहा है और आज के दिन की भारतीय खेलों की शुरुआत हुई एक मेडल के साथ, और वो भी उस खेल में जहां उम्मीद थोड़ी कम ही थी, मिक्स मार्शल आर्ट्स। जी हां, भारत की सुचिका तारियाल ने MMA के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मंगोलिया के खिलाड़ी को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है और अपने लिए कम से कम एक कांस्य पदक अर्जित कर लिया।
0: Yes, she has made it to the semi-finals, which means the bronze medal is confirmed. India's first medal is confirmed. And what a story Suchika has had. She's 36 years of age, playing her second Asian Games. But the last time around in 2023 in Hangzhou, China, she was representing India in Kurash. Before that, she has also tried her hands on Jujutsu and Judo. And finally, her medal has come in MMA. That tells you that if you keep on knocking the door, eventually it will break down. Talking about breaking down doors, the Indian women's hockey team is breaking some doors down in their first match. They are off to a winning start.
1: बिल्कुल जी हाँ, बात हॉकी की है और एक तरफा मुकाबला जो हॉकी में महिलाओं का खेला गया उसमें भारतीय महिला टीम ने एक तरफा अंदाज में इस मुकाबले को 19-0 से अपने नाम कर लिया और एक बेहतरीन स्टार्ट इंडिया को दिया।
0: Yes, they have defeated Uzbekistan. Of course, Uzbekistan were not considered a big boulder in their way. They were considered a very light team, thin on experience, and India were going in as the favorites. However, the kind of explosivity that India showed was heartening. They were playing in their saffron kits and they started off on the right note in the 6th minute. Lal Rensamai, who was struggling with some strain in her hamstring and had her hamstring heavily taped, scored the first goal, and after that the procession began. Total 19 goals, out of which 8 came off Deepika's hockey stick. 19-0, first game done. The Indian women's team have started off on the right note, and now the eye will be on India's men's team, who will be in action at 11:30 a.m. by Indian Standard Time. They will be facing Indonesia in their first pool match.
1: बात करते हैं अब अन्य मुकाबलों की, जिसमें अब टेक बॉल की, जहां पर लग रहा था कि इस डेब्यू खेल में भारत को कोई ना कोई पदक जरूर मिलेगा, क्योंकि दो कांस्य पदक के मैच मुकाबले थे निशाने पर, लेकिन यहां पर हमें निराशा हाथ लगी है। टेक बॉल में डेब्यू हुए इस खेल से पदक की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। महिला सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में क्विम्सी डिसूजा को जापान की विश्व नंबर 7 युइना साकामोटो के खिलाफ 2 सेटों में हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम बेहद करीबी रहे, लेकिन क्विम्सी दोनों सेट 11-12 के अंतर से हार गयी। हार के साथ चौथे स्थान पर रही और हिस्ट्री बनाने से चूक गयी। इसी के साथ टेक बॉल में अगला मुकाबला हुआ मिक्स डबल्स का, जहां एक और कांस्य पदक दांव पर था, लेकिन ये मुकाबला भी भारतीय टीम वियतनाम की जोड़ी से हार गई। मिक्स डबल में क्विम्सी और मोहम्मद अनस इमरान बेग की जोड़ी वियतनाम से 12-9, 12-6 से हार कर बाहर हो गई, और इस तरह से एशियन गेम्स में टेक बॉल में भारत का अभियान बिना पदक के समाप्त हो गया।
0: यू हैव टू फील फॉर क्विंसी डिसूजा, शी हैड टू प्ले बैक टू बैक मैचेस एंड हर बॉडी कुड नॉट टेक द टोल ऑफ इट। शी वाज स्ट्रगलिंग विद सम एक्सक्रूशिएटिंग पेन इन हर लोअर बैक, ड्यू टू व्हिच देयर वर मल्टीपल टाइम आउट्स कॉल्ड, शी हैड टू टेक मल्टीपल इंजरी ब्रेक्स, बट इवेंचुअली शी गॉट अप, कंपीटेड। यस, शी डिड नॉट विन द मैच, हाउएवर वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द वेलर दैट शी एग्जिबिटेड।
1: बात करते हैं तैराकी की, जहां भारतीय तैराकी के लिए आज का दिन मिला जुला रहा। पुरुषों की बैकस्ट्रोक स्पर्धा में ऋषभ दास ने शुरुआती प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली, जबकि 100 मीटर फ्रीस्टाइल में भारत के तैराकों को निराशा हाथ लगी है।
0: Right, now talking about shooting, where in the women's 10 meter air rifle, the event is still going on, and 3 of India's shooter are in business, and currently as a team, they are in the silver medal position. However, the official results will be announced after each shooter has finished 6 series, so we are hoping that the Indian trio of Elavelin Valarivan and Sona Maskar, and along with them Vidarsa Vinod, will be able to secure another medal for India.
1: बात करते हैं वुशु की, जिसका मुकाबला 5:30 पर हुआ, जहां पुरुषों की चांगक्वान फाइनल में भारत के मया मंगलम्बम सूरज अपनी चुनौती पेश कर रहे थे और उन्होंने 9.683 अंक हासिल किए और 11वें स्थान पर रहे। बेहद करीबी मुकाबले में वो पदक से सिर्फ 0.040 अंक दूर रह गए।
0: राइट, टेबल टेनिस, द फर्स्ट मैच ऑफ द मेंस टीम इज करेंटली गोइंग ऑन एंड द गुड

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

अब अगर मुहूर्त का नाम आ गया है तो बस समय हो ही गया है दिल की तरह ने गाने नए पुराने का तीसरा रेट्रो गीत आपको सुनवाने का. यस, और जब भी हम गाड़ी, एक कार और एक ट्रेन का को इमेजिन करते हैं एक साथ में, जिसमें एक हीरो बैठा है, एक हीरोइन बैठा है, आई एम श्योर दिस इज द वन एंड ओनली सॉन्ग जो आपके ख्यालों में आता है, मेरे सपनों की रानी. घूम फिर के बात कही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसी फिल्म का गाना फिलहाल आपके लिए लेकर आई हूँ. शक्ति सामंत साहब ने ये फिल्म बनाई थी और इसी मेरे सपनों की रानी, इस गाने के साथ ही ना वो ट्रेन में बैठी हुई रानी शर्मिला टैगोर जी दिलों की रानी बन गई थी लोगों के. मतलब इतना प्यार मिला था राजेश खन्ना साहब को उनके अनोखे स्टाइल में गाड़ी में बैठे हुए गाना गाते हुए देखना बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया जी. अब इतनी तारीफें हो गई हैं तो गाना तो फिल्म का आपको मैं ज़रूर सुनवाऊंगी, लेकिन ये नहीं, दूसरा, पूरी एल्बम ही बहुत अच्छी थी. देखिए जब भी SD वर्मन साहब म्यूजिक देते थे तो ऐसे ही देते थे, एकदम कमाल का संगीत. तो अभी उसी कमाल के संगीत को हम सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर. ये सुंदर सा गाना हमारी प्यारी लता जी और किशोरदा की जोड़ी में, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM.

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।

वेलकम बैक, दिल के तराने, गाने नए पुराने सुन रहे हैं आप. मैं हूं निशा आपके साथ में और आप मेरे यहाँ से जाने का टाइम. यस ऑफ कोर्स, आप दिल्ली के वेदर को एंजॉय करते रहिए और 24/7 आकाशवाणी रेनबो पर ये म्यूजिक तो आपको इसी तरह मिलता रहेगा. और मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ. यस, 10 बजे के बाद से ही आप सुनेंगे मैचलेस म्यूजिक आवर और ये हरप्रीत कौर आपके लिए लेकर आएंगे. तो यस, वेस्टर्न म्यूजिक के इस प्रोग्राम को जरूर इंजॉय कीजिए. फिलहाल आई एम निशा साइनिंग ऑफ और छोड़े जा रही हूँ आपको एक बहुत ही सुंदर डांसिंग नंबर के साथ. दर्शन रवल की आवाज में और असीस कौर है साथ में. एंजॉय कीजिए इस गाने को और बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर.

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
7: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: Hey friends, after this superb track, it's time for me to take a short break. Well, it's time for the Asian Games 2026 update on Akashwani Rainbow. Please stay tuned for the same.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
2: नमस्कार। जापान के नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं कविता
3: एंड आई एम दर्पण।
2: अब तक के भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारतीय परफॉर्मेंस में दो मेडल कंफर्म हो चुके हैं। पहली अपडेट में हमने आपको बताया था सुचिका तारियाल MMA सेमीफाइनल के मुकाबले में पहुंच गई हैं, जहां कम से कम उन्होंने अपने लिए एक कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है और दूसरा पदक ऑफिशियल तौर पर आया है शूटिंग रेंज से।
3: Yes, so that becomes the first official medal that has been confirmed. Of course, Suchika could go on to get into the final, could wield a silver or a bronze. But the first official medal has come from the shooting range, 10-meter air rifle women's team event, where the trio of Elavanil Valarivan,

आई द सिस्टर डुओ आशा भोसले एंड लता मंगेशकर. यस, इट्स मैं चली. इट वॉज पिक्चराइज आई थिंक इन द गार्डन्स ऑफ बेंगलुरु. द लिरिक्स आर रिटन बाय राजेंद्र कृष्णन एंड ऑल म्यूजिक इज कंपोज बाय आर डी बर्मन. इट हैज गॉट सम क्लासिक हिट्स. दिस मूवी वॉज रियली अमेजिंग. इफ यू हैवन वॉच्ड इट, आई वुड सजेस्ट प्लीज डू वॉच द मूवी. इट्स वेरी हिलेरियस एंड द ट्रैक्स आर सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. सो व्हाट आई हैव चोजन

0: So that was such a beautiful track from the movie Padosan. It's now time for us to take a short break. We'll be right back. You stay tuned to Akashwani Rainbow.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है, और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया एक बेहद रोचक वेबसाइट का, साथ ही जो वेबसाइट के संस्थापक हैं उनसे बात भी की। आपको याद आया, वेबसाइट थी www.bharatrajya.com और इसके संस्थापक श्री कृष्णा शेषाद्री जी, इनसे प्रधानमंत्री जी ने बात भी की थी। तो आज हम भी कृष्णा शेषाद्री जी से अपनी एक बातचीत के माध्यम से आपको इस वेबसाइट के बारे में बेहद रोचक जानकारी दे रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कृष्णा शेषाद्री जी से बात की थी।
3: साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
4: नमस्ते सर। नमस्ते
3: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
4: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर, मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
3: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
4: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, तारकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
3: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
4: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है ये, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली, एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया, बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले

0: 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे. तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर.
1: हम जानते हैं कि ये बातचीत आपको बेहद रोचक लग रही है, लेकिन आपको हम ज्यादा तो ऑडियो क्लिप नहीं सुनवा पाएंगे. हाँ, कृष्णा शेषाद्री जी से हम बहुत सारे सवाल जरूर करेंगे ताकि इस वेबसाइट के बारे में, उनके इस प्रयास के बारे में हम और ज्यादा जान सके. तो सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करते हैं कृष्णा शेषाद्री जी का. कृष्णा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद. धन्यवाद.
1: आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने आपकी वेबसाइट का उल्लेख मन की बात में किया और आपसे संवाद भी हुआ उनका, कैसा लगा आपको, आपका अनुभव कैसा रहा?
2: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे आपके स्टूडियो पे बुलाया. और जैसे बात आती है मन की बात की, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वेबसाइट मैंने बनाया था एकदम मैंने एक हॉबी की तरह से बनाया था. मेरे को इससे कोई अपेक्षा नहीं थी, मुझे पसंद था तो मैंने बनाया. तो जब मुझे पता चला कि इस वेबसाइट को प्रधानमंत्री जी ने ना ही देखा है बट उसे यूज भी किया है, उसके एक्सपीरियंस किया है, उसके बहुत सारे फीचरों के साथ खेला है, तो इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर माई फैमिली एज वेल. द मोस्ट इमोशनल मोमेंट फॉर मी वॉज वेन माई मदर क्राइड आफ्टर सीइंग द ब्रॉडकास्ट. इट वॉज टीयर्स ऑफ जॉय दैट शी हैड. मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ गई थी कि हमारे सबका एक लक्ष्य होता है, पूरी दुनिया चाहे ना चाहे, हमें अपने माँ पिताजी, वी हैव टू मेक देम प्राउड. और वो मैंने इसके थ्रू किया, दैट वॉज माई बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन. और मेरी जो वाइफ है शी इज अ नेशनल लेवल राइफल शूटर, सो शी नोज हाउ हार्ड इट इज टू अचीव समथिंग एट दैट लेवल, एंड सो शी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी. और रही बात बाकी दोस्तों या प्रतिक्रियाओं की, मेरे बहुत सारे जो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें कोई मैसेज नहीं भेजता था, वो जाग उठे थे मन की बात के बाद. बहुत सारे लोगों ने उसमें कॉन्ग्रेचुलेट किया, बहुत सारे लोगों ने अपनी पॉजिटिव ओपिनियन या प्रतिक्रिया दी, वेबसाइट के बारे में तारीफ की, विच आई फेल्ट वेरी हैप्पी. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन माई पेरेंट्स, जो हमारे मम्मी डैडी अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे मम्मी डैडी को, अच्छा वो आपका बेटा है, वो आपका बेटा है, जो वो एक फीलिंग मेरे मम्मी डैडी के, आज भी मेरी मम्मी डैडी के आंखों में वो जो प्राइड है, मैं आपको सच बताऊं तो अभी भी, आज भी मैं थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है कि, मेरे हिसाब से आई थिंक 2 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक्चुअली ये मेरी वेबसाइट का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया.
1: अच्छा, ये बताएं कि वेबसाइट शुरू करने का विचार आपको कैसे आया, कब सोचा आपने कि इस तरह की एक वेबसाइट मुझे शुरू करनी है?
2: एक्चुअली आपने मन की बात में भी सुना होगा तो मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, तो मैं एक इंजीनियर हूँ, फिर मैं एक MBA हूँ, मैं अभी मार्केटिंग में काम करता हूँ. अभी जो मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ है और इतिहास में, उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन बचपन से मुझे इतिहास में एक विशेष तरह की दिलचस्पी है. आई हैड अ वेरी गुड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री. तो एक्चुअली उसका इंस्पिरेशन जाता है मेरी माँ को. वी आर ऑल तमिलियंस. मेरी माँ एक तमिल में एक मैगजीन आती थी उस टाइम पे, वीकली मैगजीन होती थी, उसका नाम कल्की था. तो उन्होंने एक जो साउथ इंडियन चोलास के ऊपर एक एपिक लिखी थी, उसका नाम था पोन्नियिन सेल्वन. 1-2 साल पहले उसकी पिक्चर भी बनी थी. तो उस मैगजीन में हर हफ्ते वीकली स्निपेट्स के हिसाब से छपती थी, और मेरी माँ हर हफ्ते वो मैगजीन लेके आती थी और मुझे पढ़ के सुनाती थी. और उन्होंने इतने अच्छे से उस टाइम का, उन चोलास का, उन मंदिरों का और उस लैंडस्केप का इतने अच्छे तरह से वर्णन किया था कि मेरे तभी से मेरी हिस्ट्री में इंटरेस्ट शुरू हो गया था कि ये हम और किस तरह से देखें और किस तरह से जाने. और इस तरह से मैंने इतिहास के और सारे, कई सारे किताबें पढ़ना शुरू की, और वहीं से मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में था. और रही बात भारत राज्य के इंस्पिरेशन की, तो मेरे जब भी मैं हिस्ट्री क्लास में, स्कूल में पढ़ता था या कोई मुझे हिस्ट्री सिखाता था, हमारे देश में जिस तरह से हिस्ट्री सिखाई जाती है उससे आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ इट. क्योंकि हम क्या करते हैं, एक इतिहास जैसे एक सब्जेक्ट को, या एक डेट, या कोई किंगडम, या कोई किंग, उस लेवल पे लेके आ जाते हैं. तो उसके वजह से क्या होता है कि इतिहास जो है एकदम ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है. जैसे आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि जहांगीर ने क्या किया, उससे मेरा क्या लेना देना. तो मतलब हिस्ट्री एकदम बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है, और हम कभी भी हिस्ट्री को पूरे भारत के दृष्टिकोण से नहीं देखते. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताऊं कि हमको ये नहीं पता कि जब मुगल नॉर्थ में थे, जब बाबर आए थे देश में 1526 में, तब साउथ में क्या हो रहा था. जब वास्को डगामा आए थे 1400s के एंड में, तब नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था. तो हमें एक पूरा इंडिया का व्यू हिस्ट्री में कभी नहीं मिलता. तो ये जो था, ये आइडिया मेरे मन में 15 साल से इट वॉज ट्रबलिंग मी, मेरे को चुभ रहा था. लेकिन प्रॉब्लम ये थी

0: कि जब वो आइडिया आया तो मेरे पास वो ना टेक्निकल एक्सपर्टीज थी ना नॉलेज थी उस आइडिया को एक वर्किंग वेबसाइट बनाने में। लेकिन जब ये एआई रेवोल्यूशन आया 3 साल, जब एआई ने हमें कोडिंग और प्रोग्राम बनाने की शक्ति दी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे इस्तेमाल करके मेरे 15 साल के ख्वाब को सच बनाया जाए।
1: तो कृष्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐतिहासिक लेखों, दुर्लभ तस्वीरों और नक्शों को जब हम आर्काइव करते हैं, फिर उन्हें जब सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेटाबेस को कैसे आपने डिजाइन किया?
0: अगर आप भारत राज्य के वेबसाइट देखेंगे तो इसका स्ट्रेंथ ही इसकी सिंप्लिसिटी है। हम ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस या ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम यूज करते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू, जो वेबसाइट का जो हीरो है, वो मैप है। आप देखोगे तो बहुत सारे इंटरनेट में ऐसे ओपन सोर्स मैप मिलते हैं जहां पे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपको बराबर मैपिंग मिल जाती है। तो हमने क्या किया कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो मैप है, उसको वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैप को लिया और हमने एक सब कॉन्टिनेंट व्यू लिया था। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, इस 5 कंट्री के मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल मैप्स मिले। और फिर मैंने क्या किया कि एआई के थ्रू मैंने ऐसे सोर्सेस या ऐसे बुक्स चूज किए जो इतिहास में एक स्टैंडर्ड माना जाता है, जैसे जादूनाथ सरकार जी हैं और ऐसे बहुत सारे किताबें हैं जो हमने मैसूर किंगडम के एक हायर वर्धन राव करके एक हैं, शायद मैं नाम में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर सकता हूँ, मुझसे माफी चाहता हूँ। तो ऐसे मैंने कम से कम एटलीस्ट 25-30 बुक्स को सोर्सेस के नाम पे डिसाइड किया और फिर मैंने क्या किया कि एआई को ये सारे बुक्स में सर्च करने बोला कि एक ईयर में उस डिस्ट्रिक्ट में कौन राज कर रहा था। और इस तरह से मैंने एक पूरी मैपिंग बनाई। अभी जो आप लेते जाओगे तो 300 सीई से आपके पास डेटा है, तो 300 सीई टू 2026 में हर एक साल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में किसने राज किया का मैंने एक मैपिंग बनाया और वो मैपिंग से आपको भारत राज्य आज दिखता है।
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड़ पर। मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: हाँ, ये जो गीत है ये मेरी वाइफ और मेरे पिताजी और मेरी मम्मी, ये तीनों का वन ऑफ मोर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। डेफिनेटली ये गाना सुनिए। ये गाना है अमर प्रेम से कुछ तो लोग कहेंगे।
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो पुरानी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें होती हैं या दस्तावेज होते हैं, जब हम वो चेक करते हैं तो वेबसाइट की जो स्पीड है बहुत धीमी हो जाती है उनकी वजह से। तो आपने ऑप्टिमाइजेशन की तकनीक इस्तेमाल की है ताकि ठीक से ये वेबसाइट चल सके?
1: तो हमारे वेबसाइट में मैंने ऐसे कोई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें या ये कोई नहीं डाला है, क्योंकि मेरा ये मैप बेस्ड वेबसाइट है तो इसमें हम तस्वीरें नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम तस्वीरें डालते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि भारत राज्य का, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में किस किस भाग में कौन राज कर रहा था। तो मेरे को उस ऑब्जेक्टिव से डाइवर्ट नहीं होना था, तो इसके लिए पिक्चर्स हो या ऐसे हाई रेजोल्यूशन फोटो हो जिससे यूजर का ध्यान या यूजर का क्या बोलते हैं उसका एक्सपीरियंस हर्ट हो सकता है या डिमिनिश हो सकता है, वो कोई भी फीचर मैंने नहीं डाले हैं। और रही बात उससे डेटा निकालने में, हाँ बहुत सारे किताबें ऐसी थी जो एक फोटो के हिसाब से थी, तो हमने जब एरिया के लिए वो डेटा सेट लोड करने से पहले मैंने उसको OCR कराया, उसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और उस कन्वर्जन से मैंने डेटा निकाला। लेकिन अगर आप देखने जाओगे वेबसाइट में कोई ऐसा कोई फोटो नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम वो फोटो डालते हैं तो यूजर का ध्यान बट जाता है और हमारे वेबसाइट का कोर ऑब्जेक्टिव है वो शायद कहीं मीट नहीं हो पाता।
0: आपकी वेबसाइट में लोग सामग्री जोड़ सकते हैं और इस तरह से आपके प्रयास में वो भी जुड़ते हैं। मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि आपने सिक्योरिटी के लिए भी क्या कुछ फीचर्स ऐड किए हैं कि जो हमारे सही तथ्य हैं उनसे छेड़छाड़ ना हो।
1: हमने किसी को भी एडिट राइट नहीं दिए हैं, तो एडिट राइट्स अभी फिलहाल सिर्फ मेरे पास ही हैं। तो कोई भी सुझाव आते हैं, कोई भी हमको करेक्शंस आते हैं, कोई भी रिकमेंडेशंस आते हैं, तो मैं अपने सोर्सेस, जो हमने बुक्स की जो सोर्सेस गैदर की हैं, जो आपको हमारे वेबसाइट के सोर्सेस के टैब में भी मिल जाएंगी, उसके अगेंस्ट मैं मेजर करता हूं। अगर वो सोर्स में होता है तो ही मैं उसको इनकॉर्पोरेट करता हूं। पूरा वेबसाइट का कंटेंट है, मैं अकेले अपने कंप्यूटर से उसको अपलोड करता हूं। ये कहीं इंटरनेट में या कहीं ऐसे जगह नहीं है जहां पे आके लोग उसे हैक कर सके। तो इसके लिए जितना मैंने ये वेबसाइट को सिंपल बनाया है। और रही बात सिक्योरिटी या चोरी करने की डेटा की, तो मैंने ये जो वेबसाइट है ये ओपन सोर्स कर दिया है, फ्री कर दिया है। तो अगर कोई भी जाके मेरे वेबसाइट से वो मेरा जो भी सारा डेटा है वो डाउनलोड करके अपना खुद का वेबसाइट भी बना सकता है। क्योंकि मैंने जब ये वेबसाइट बनाया तो मुझे ये लगा था कि हमको कभी अपना जो नॉलेज है, अपनी जो भारत की इतनी वास्ट नॉलेज का जो हमारी रिपोजिटरी है, वो हमेशा सबको ओपन होनी चाहिए। इट हैज टू बी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। और हम वो

0: नहीं कर सकते अगर हमने उसमें कुछ या पे वॉल लगा दिया या उसको पैसे लेके उसको एक्सेस दिया, तो ये जो वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव है टू मेक हिस्ट्री फन टू एवरीवन, वो फेल हो जाएगा। इसके लिए मुझे सिक्योरिटी की कोई डर नहीं। अगर कोई तोड़ के डेटा ले भी जाए तो वो अच्छा ही है, क्योंकि मैं उससे बस विश करूंगा कि इससे भी अच्छा और वो वेबसाइट बना दे। तो अगर आप जब भारत राज्य के वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पे एक करेक्शंस करके एक टैब होगा, तो अगर वो आप करेक्शंस के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको दो टाइप के सजेशंस आप हमें दे सकते हो। एक है कि अगर हमें कुछ फीचर्स चाहिए, जैसे हम बहुत लोग ने मन की बात प्रोग्राम के बाद बहुत लोगों ने ऐसा सुझाव दिया कि ये वेबसाइट को आप रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल करो, तो वो टाइप के फीडबैक भी हम आप दे सकते हो। और अगर दूसरी टाइप का फीडबैक ये है, अगर आपको लगता है कि इस प्रदेश में जो हमने मार्क किया है ये जो रूलर है वो गलत है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल तक के करेक्शंस भी आप हमें पहुंचा सकते हो। इट इज अ वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टैब, और आप उसमें जैसे ही सबमिट करेक्शन सबमिट करोगे वो हमको मेल में आता है, हम उसे रीड करते हैं, अगर वो सोर्सेस के साथ वेरीफाई होता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि करेक्शंस की इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने 1000 डिस्ट्रिक्ट को कम से कम 1500 साल पे मैप किया है। इसका मतलब है हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको 1000x1000 टाइम्स एंट्री आपको मिलेगी, तो और हमें पता है कि कहीं ना कहीं हम गलतियां करेंगे और इस गलती को हमको सबको मिलकर सुधारना है। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री ऐसी चीज है जो एक आदमी या एक वेबसाइट की बस की बात नहीं है, ये हम सबका एक वेबसाइट है और हम सबको मिला के सामूहिक योगदान से ही हम इसके एंट्री को और एक्यूरेट बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं, ताकि अगले कुछ सालों तक ये हिस्ट्री लर्निंग को मजेदार बना।
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड़ पर। मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: सो दिस इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू माई वाइफ। ये हमारी दोनों की फेवरेट मूवी तारे जमीन पर से है, और वो जो गाना है खोलो खोलो, तो ये हमें बहुत दोनों को बहुत पसंद है, एंड ये एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग है।
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। कृष्णा जी, ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट के दौरान आपकी जो सबसे बड़ी सीख थी वो क्या रही और शुरुआती दौर में कैसी चुनौतियां थी?
1: बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्न इन दिस एक्सपीरियंस इज बिल्डिंग थिंग्स, कि अगर आप कुछ चीज बिल्ड करते हो और अगर एक चीज क्रिएट करते हो, उसमें जो आपको मजा आता है वो और किसी चीज में नहीं आता। तो जब आप एक चीज आप देखते हो, एक वेबसाइट जो नहीं है, देन इट स्लोली कम्स टुगेदर एंड देन फाइनली एक विजुअली वो आपको दिखता है, जो आपको जॉय और वो एंजॉयमेंट आता है, इट आई डोंट थिंक देर आर वेरी फ्यू एक्सपीरियंसेस इन द वर्ल्ड विच आई थिंक प्रोबेबली मैच इट।
0: मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमारे जो दृष्टि बाधित साथी होते हैं, हम देखते हैं अक्सर कि वो पठन पाठन में बेहद रुचि लेते हैं और साथ ही बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। ऐसे में वो नए नए माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए, नई तकनीक इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी वेबसाइट पर क्या स्क्रीन रीडर जैसी सुविधा है ताकि दृष्टि बाधित साथी जो हैं वो भी आपकी वेबसाइट से जुड़ सके?
1: ये एक्चुअली आपने मुझे बहुत दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि ये जो है भारत राज्य जो है एक विजुअल मीडियम का वेबसाइट है। इसमें हम विजुअली इंडिया के मैप को दिखाते हैं, इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट, और अगर हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर भी दें तो एज अ स्क्रीन रीडर हो या जो तकनीक है वो वेबसाइट उनके लिए ऑप्टिमम एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। लेकिन हमने थोड़े कुछ फीचर्स डाले हैं, तो अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है या किसी को और कुछ है तो वो हमने कलर ब्लाइंड मोड इम्प्लीमेंट किया है ताकि वो भी ये वेबसाइट को एंजॉय कर सके।
0: जब आपने वेबसाइट डेवलप की तो उस दौरान बहुत सारे इतिहासकारों, शोधकर्ताओं या फिर कंटेंट राइटर्स के साथ आपका मिलना जुलना हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, तो ये बताएं कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे उन्हें समझाई और कहीं इसमें तकनीक तो कोई बाधा नहीं बनी?
1: एक बात मैं अभी सच्चाई में बताता हूँ कि मैंने ये कंटेंट रिसर्च है, ये जो कंपाइलेशन है, ये मैंने अकेले में किया है। लेकिन मैं कभी जिंदगी में ये नहीं बोलूंगा कि मैंने अकेले में किया है, क्योंकि आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। द एंटायर कंटेंट, द एंटायर मैपिंग, जो भी आप देख रहे हो भारत राज्य में डिस्ट्रिक्ट में किसने काम किया, ये मेरे से बहुत ही बड़ी हस्तियों ने, बहुत ही बड़े हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर अपनी पूरी जिंदगियां डेडिकेट की हैं, और उसमें से ऐसे किताबें लिखी हैं जिसमें सब कुछ क्लियर है। जैसे हमारे जो सोर्सेस हैं, सबसे बड़े सोर्स जो है वो आरसी मजुमदार जी हैं, जिनके ऑलमोस्ट 10 से 11 वॉल्यूम हैं।

0: जो इंडिया के वैदिक एज से लेके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल तक सारी चीजें कवर करती हैं। फिर हमने नीलकंठ शास्त्री, जिन्होंने साउथ इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। जादूनाथ सरकार जी, जिसने फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे इतने अच्छी किताबें लिखी हैं इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कि इट इज अमेजिंग द डिटेलिंग दैट दे हैव गॉन थ्रू। और बहुत सारे और भी ऑथर्स हैं, जैसे एक ऑथर थे जिसने सिर्फ राजपूतों पे, राजस्थान पे 5 वॉल्यूम लिखे हैं। एक एक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट तक उन्होंने कवर किया है कि कब क्या हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, युद्ध में कौन सी टेरिटरी इधर से उधर गई। तो मैंने ऐसा नहीं समझा है कि मैंने अकेले में काम किया है। आई हैव ओनली रेफरेंस्ड एंड आई हैव ओनली यूज्ड द वर्क्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक मजुमदार, जादूनाथ सरकार जी, नीलकंठ शास्त्री एंड ऐसा और एंड सो मेनी मोर ऑथर्स और बिकॉज ऑफ हुम दिस वेबसाइट इज अलाइव टूडे। मैंने ऐसा तो नहीं कि मेरे पास कोई टीम ऑफ हिस्टोरियंस है, बट मेरे पास इन जैसे महान दिग्गज हिस्टोरियंस का आशीर्वाद था जिसके वजह से आज ये भारत राज्य जो वेबसाइट है वो लाइव है।
1: जब प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हो रही थी उस वक्त आपने उनसे कहा था कि हम इतिहास को रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो इस बारे में आपके और क्या विचार हैं? एक प्रयास तो आप कर चुके हैं, आपको क्या लगता है हमें अपने बच्चों को अपना इतिहास, अपना गर्व कैसे बताना चाहिए?
0: जो आज हम इतिहास स्कूलों में पढ़ाते हैं या बहुत सारे जो नौजवान हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको ये एक सोर्स ऑफ विजुअल हिस्ट्री है, और अगर ये देखेंगे तो और हिस्ट्री या इतिहास को और अच्छे से वो याद रख सकते हैं। हम वो ही एंगल से इस वेबसाइट को नियर फ्यूचर में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा हमारे वेबसाइट में एक फीचर है ट्रम्प कार्ड का, तो हम सब जब बच्चे थे तब हमने WWE के या क्रिकेटर्स के ट्रम्प कार्ड के साथ बहुत एंजॉय किया है, और आज भी हमको बहुत सारे जो डेटा है वो ट्रम्प कार्ड के वजह से याद है। और हमने ये वेबसाइट में इतिहास के ट्रम्प कार्ड्स बनाए हैं, हर एक एम्पायर के, हर एक किंगडम के हमने ट्रम्प कार्ड्स बनाए हैं। तो अगर वो ट्रम्प कार्ड बच्चे रेफर करें या बच्चे यूज करें तो उनको इतिहास मजेदार ही नहीं रहेगा, याद भी रहेगा। मेरा उद्देश्य ये है कि हम हिस्ट्री को एक स्टोरी बनाएं, और अगर हम स्टोरी की तरह सब बच्चों को ये इतिहास पढ़ाएं तो वो इतिहास उन्हें याद तो रहेगा ही, बट वो उसे वैल्यू भी करेंगे।
1: हो सकता है कि हमारे न्यू डेवलपर्स इस समय आपको सुन रहे हों, हमारे ऐसे साथी, हमारे ऐसे श्रोता जो अपनी कोई वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं या किसी वेबसाइट में सहयोग करना चाहते हैं, तो आप जरा उनके लिए बताएं क्या सलाह आप देंगे, उन्हें क्या क्या फीचर्स अपनाने चाहिए और कैसे तैयारी करें?
0: इफ एनीवन वांट्स टू बिल्ड एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, छोटी सी छोटी वेबसाइट हो सकती है या कुछ बड़ा भी प्रोजेक्ट हो सकता है, माय ओनली रिक्वेस्ट टू देम इज आप उसके अंदर जाइए, बिल्ड करना चालू कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बिल्ड करोगे वो आपके अंदर अच्छा एहसास होगा, यू विल फील बेटर एंड देन यू विल नॉट ओनली बिकम अ बेटर बिल्डर बट यू विल ऑल्सो बिकम अ बेटर ह्यूमन। ये जरूर बोलूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात इनिशिएटिव है, इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग एंड अ मोटिवेटिंग इनिशिएटिव। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई जरूरत नहीं थी ये वेबसाइट के बारे में जाके मुझसे बात करने की, बट उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, मेरे से बात की, वो वेबसाइट में, इससे बड़ा मोटिवेशन एक फॉरगेट टेक पर्सन किसी को भी नहीं हो सकता। और ये मन की बात जब हो गई तो इसमें मुझे एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस आया, एक रिन्यूड एनर्जी आई है, जिसमें से मैं इस भारत राज्य को और भी ज्यादा बेहतर बनाऊं, और भी ज्यादा पीछे टाइम में जाऊं, जितना भारत का इतिहास है उसे कवर कर सकूं, और इसे एक ऐसा वेबसाइट बनाऊं जो आगे इतिहास के लिए सबसे ज्यादा यूज्ड वेबसाइट हो। तो ये मोटिवेशन मन की बात के साथ आया है, और सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका रिकॉग्निशन मिलेगा। ये मुझे मन की बात के ये प्रोग्राम के थ्रू, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स आई हैव लर्नड।
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड़ पर। मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: तो ये गाना मेरे जो बॉस हैं सुरेश कुमार सर, आनंद सर और राजेश सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये उनका एक वन ऑफ देयर फेवरेट सॉन्ग्स, दिस इज फ्रॉम आई थिंक मूवी हम दोनों, द सॉन्ग इज मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। यहाँ आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कृष्णा जी, आपकी वेबसाइट में बहुत सारे ऐतिहासिक पात्र हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके फेवरेट पात्र कौन से हैं, आप किन पात्रों से ज्यादा प्रभावित हुए हैं?
1: अब तो वेबसाइट पूरा बनाए तो सारे पात्र से प्रभावित हुए ही, बट माई फेवरेट इज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, माई फेवरेट इज द ट्रम्प कार्ड सेक्शन। क्योंकि अगर हमने अलग अलग टाइम के, अलग अलग टाइम पीरियड्स के, अलग अलग एम्पायर्स के कार्ड प्रिंट करके हमने हमारे बच्चों या हमारे स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उनके थ्रू वो हिस्ट्री पढ़ाना मजेदार बना सकते हैं और उनके बच्चों के बीच में वो एक खुद ही में एक इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है, जो वो समर में या कभी भी जब उनको टाइम मिले तो खेल के ना ही वो रिलैक्स कर सकते हैं, बट इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। तो हमारे वेबसाइट के थ्रू जो है आपको आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। अगर आप रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप रायगढ़ पे क्लिक करोगे तो 300 CE से आज तक रायगढ़ में

0: किस किस
1: क्या
0: लोगों ने
1: बात है।
0: राज किया, कितनी बार वो जिला हाथ बदला, कितने राजा आए कितने राजा गए, ये सब का आपको एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वो ही नहीं, आपको और भी आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे उसका पॉपुलेशन क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका एवरेज टेम्परेचर क्या है, उसमें कौन से क्रॉप उगते हैं, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, कौन से मंदिर हैं, कौन से आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, सबकी लिस्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। वो भी आप खुद डाउनलोड भी कर सकते हो। कैन टेल यू अ फनी इंसिडेंट रिगार्डिंग दिस। किसी कलीग को दिखा रहा था तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा जिला कौन सा है जहां से तुम हो, तो उस जिला का नाम बताओ। तो उसने रायगढ़ बताया, तो हमने रायगढ़ पे क्लिक किया। तो रायगढ़ में अराउंड 1100 1200 के टाइम पे एक शिलाहारास करके एक जो डायनेस्टी थी वो रूल करती थी। तो वो उसने देखा और उसने बोला कि मेरा जो सरनेम है वो शिलाहारा है। तो वो उसी को नहीं पता था कि वो एक जमाने के राज परंपरा से था। तो वो एक अच्छा सा कोरिलेशन हो गया था हमको, और उसको भी एक अच्छी जानकारी मिली जो उसको तभी तक नहीं पता थी।
2: कृष्णा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और बहुत कुछ हमें आपकी वेबसाइट के बारे में जानने को मिल रहा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आने वाले समय के लिए क्या आप वर्चुअल रियलिटी या AI जैसे फीचर्स भी इसमें जोड़ने की योजना बना रहे हैं?
0: जैसे मैंने आपको बोला था कि 3D मॉडल्स ऑफ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, जैसे कैलाश टेम्पल हो, या जैसे मैंने बोला था बृहदीश्वर टेम्पल हो, या एलोरा केव्स हो, या अजंता केव्स हो, तो हम वर्चुअल रियलिटी के थ्रू लोगों को उन मॉन्यूमेंट्स को घर बैठे बैठे एक्सपीरियंस दे सकते हैं। मुझे VR के वर्ल्ड के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी है नहीं, तो इसके लिए मैं इसके बारे में आपको विस्तारित से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आई एम श्योर दैट इन द कमिंग टाइम टेक्नोलॉजी विल बी सोफिस्टिकेटेड इनफ वेयर आप घर बैठे बैठे कैलाश टेम्पल को एक्सप्लोर कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे फीचर डाल सकते हैं जहां पे लोग घर बैठे बैठे या वो मॉन्यूमेंट में ही वो मॉन्यूमेंट के बारे में जाने और उसको एंजॉय करें। अभी तो फिलहाल 3D मॉडलिंग तो हमने नहीं की, हमने तो एक सिंपल ओवर 2D मैप ओवर लेआउट में हमने एक टाइमलाइन किया है। जैसे हम सोच रहे हैं कि जैसे आगे बढ़े, हम ऐसा भी कुछ करें कि भारत के कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उसको हम एक 3D मॉडल बना के वेबसाइट में होस्ट करें, ताकि लोग वहां पे 3D के थ्रू उस मॉन्यूमेंट्स को एक्सपीरियंस कर सके। ये एक फीचर है जो हमने पाइपलाइन में रखी है, जल्दी में वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। कोलैबोरेशन से हमारा जो एक्यूरेसी है, ये जो एनरिचमेंट ऑफ डेटा है, ये कोलैबोरेशन से आगे बढ़ेगा। बट हाउ आई विजुअलाइज दिस वेबसाइट एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर इज एन एजुकेशनल एड।
2: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी। यहाँ इसी मोड पर मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: दंगल टाइटल सॉन्ग है वो।
2: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। मैं ये उम्मीद करती हूँ कृष्णा जी, जब आपसे इतनी रोचक बातचीत आज हमारी हुई है, हमें bharatrajya.com के बारे में पता चला है और प्रधानमंत्री जी ने भी हमें प्रेरित किया है कि हम अपने प्रेरणा देने वाले ऐतिहासिक पात्रों के बारे में जानें आपकी वेबसाइट के माध्यम से, तो जो श्रोता आज हमें सुन रहे हैं ऐसे में बहुत सारे छात्र भी हो सकते हैं, विद्यार्थी हैं या शोधकर्ता हो सकते हैं, इतिहासकार हो सकते हैं, उन्हें आपके इस प्रयास से जरूर मदद मिलेगी और हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे युवा साथी भी अपने बीते हुए कल को गर्व के साथ याद करें और उसमें आपकी वेबसाइट भी उनकी मदद करती रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको और आपकी पूरी टीम को। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा शेषाद्री जी।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
0: तो चलते चलते अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना।

0: इस गाने के साथ ही पोस्ट बॉक्स नंबर 111 की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मुल्काने अब आपसे लेती हूं अनुमति। आप वेबसाइट देखिए, कुछ सीखिए और जो सीखा है हमें भी आप बता सकते हैं अपने ईमेल्स के माध्यम से, अपनी चिट्ठियों के माध्यम से। और हम विशेष आभार प्रकट करते हैं विविध भारती मुंबई की पूरी टीम का, उनकी मदद से ही हम ये कार्यक्रम तैयार कर पाए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: You are listening to the Asian Games 2026 update. This is Akashwani Rainbow at 102.6 megahertz.
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं

और तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। कोई भी गीत ऐड करने के लिए कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है जब आप कहते हैं कि कोई भी ट्रैक आप प्ले कर दीजिए। सनम बेवफा से ट्रैक सुनना चाहते हैं और राहुल रितिका जगदीश कुमार नांगलोई दिल्ली से, और हमें मैसेज आया है त्रिनेत्र का ट्रैक सुनना चाहते हैं। जोकीहाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से मोहम्मद सरफराज आलम, मोहम्मद जाहिद आलम, अब्दुल वाहिद प्रवेज, अब्दुल वासित, अब्दुल अजीज़, बेगम खालिदा जिया, बीबीसी खजाला प्रवीण, शबाना प्रवीण एवं अनोखा प्रवीण, आपके मैसेज आए, थैंक यू सो वेरी मच। और फिर से मैसेज आ रहा है कि हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहा है, पुराना ही गाना आ रहा है जो चलाया था, तकनीकी दिक्कत है, इसे ठीक करें। आपकी इस तकनीकी दिक्कत को हम आगे ज़रूर पहुँचाएँगे। और एक फटाफट हम मैसेज लेते हैं, राजा हिंदुस्तानी का गाना सुन

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में।

आते भी हैं, ऐसे नहीं, आपको नाराज होने का हक है, लेकिन इतना नाराज मत होइए जब तक आपके सामने वाले की सिचुएशन पता ना हो। आपके ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं फिर से बोलूंगी कि पिछला जो ट्रैक था, हम एशियन गेम्स के अपडेट से पहले जो ट्रैक सुन रहे थे, वो ट्रैक भी आप में से ही किसी लिसनर ने हमें रिक्वेस्ट की थी, जिनका मैसेज जो है अब मेरी आंखों से ओझल हो चुका है, लेकिन हम बाकी मैसेजेस लेना चाहेंगे, डेफिनेटली लेना चाहेंगे। और किशन, वंचली, नीलम, स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमें मैसेज करते हैं, और इन्होंने बहुत सारे गानों की रिक्वेस्ट की है, और एक गाने की जो रिक्वेस्ट है वो है रब ने बना दी जोड़ी का, तो हम वो ट्रैक ज़रूर लेंगे। और हम बाकी मैसेज लेते हैं। मनमोहन सिंह, सोनम काव्या दक्ष, यूपी रामपुर ज़िले के मंडवा हसनपुर गांव से मैसेज भेज रहे हैं, और इनको मोहरा फिल्म से एक ट्रैक सुनना है। और जो हमारे नाराज़ लिसनर है उनको मनाते हुए हम पढ़ना चाहेंगे नाम इनका। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, और इन्होंने सन ऑफ सरदार से ट्रैक प्ले करने की रिक्वेस्ट की है। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि सन ऑफ सरदार का हम ट्रैक प्ले करें। कृष्ण कुमार मेसर हैं और ये दयालपुर दिल्ली में रहते हैं, और तकनीकी खराबी के कारण इनको कोई भी गाना प्ले होता हुआ नहीं सुनाई दे रहा है, तो उन्होंने मैसेज किया है कि तेरे नाम का कोई भी ट्रैक प्ले कर दूं। और इन्होंने मैसेज किया हमें दार्जिलिंग से, विधान नगर शांतिपारा वेस्ट बंगाल से मैसेज आया है विप्लव दास।

नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद, सूफिया नवाब का बली माराण से मैसेज आया है, और बबलू कश्यप, अशरफ अली,

नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद, सूफिया नवाब का बली मारान से मैसेज आया है और बबलू कश्यप, अशरफ अली, सिराज मिथुन, पिंटू दीवाना भी सब में शामिल है। इनको भी टेक्निकल

0: मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर। रेणु भट्ट है आपके साथ और हम फटाफट मैसेजेस लेना चाहेंगे। जिला मुरादाबाद ग्राम दोलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह को भी ट्रैक प्ले कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच इस तरह की फरमाइश भेजने के लिए। और हम मैसेज लेना चाहेंगे, मेरा वाला सॉन्ग में ये ट्रैक प्ले करवाना चाहते हैं। ढेर सारे कई गाने हैं। और ये मैसेज आया कहाँ से हमें, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार का हमें आया है मैसेज। और एक शिकायती भरा मैसेज ये ज़रूर आ जाते हैं, शिकायती भरे मैसेज ज़रूर नज़र के सामने आ जाते हैं, लेकिन कई बार होते हैं ना जो मैसेज हमें पढ़ना होता है वो नहीं आ पाते। और हमारी तरफ ही ध्यान दीजिएगा, इंतज़ार कर रहे हैं। सलीम अख्तर है, रेशमा बेगम है, मेरे ख्याल से मैंने आपका नाम ले लिया था। और रिक्वेस्ट प्ले करने के लिए हम ट्रैक पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमें मैसेज आया है, हमारे यहाँ पर आज गोवा में बारिश नहीं हो रही, क्या हाल है दिल्ली में मौसम का, अभी तो बहुत धूप है, आज तो बहुत गर्मी है दिल्ली की बात करें तो। और ये है नवलू फरक, गांव मलपण, ज़िला उत्तर गोवा से, और इनको गाना सुना है।

और हमें मैसेज आया है, हमारे यहाँ पर आज गोवा में बारिश नहीं हो रही। क्या हाल है दिल्ली में मौसम का? अभी तो बहुत धूप है, आज तो बहुत गर्मी है दिल्ली की बात करें तो। और यह है नवलू वरक, गांव मलपण, जिला उत्तर गोवा से, और इनको गाना सुना है बासिकर का, बासिकर ओ बासिकर। अच्छा जी, तो चलिए ये ट्रैक हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। और सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का मैसेज आया।

0: इस्लाम सलमानी, महबालपुर अदनान सलमानी, अमन सलमानी, सब राजा हिंदुस्तानी का ट्रैक सुनना चाहते हैं। राजा हिंदुस्तानी की काफ़ी काफ़ी रिक्वेस्ट आई है और इस ट्रैक को मैं ऑलरेडी प्ले कर चुकी हूँ, सुन लीजिए।
1: मुझे क्या हुआ?
0: अनीता वर्मा द्वारका से हमें मैसेज करती हैं और शिवानी कर्माकर सोनितपुर असम से, नयन, मीरा, पूनम, सुमन, प्रशांत का मैसेज हमें आया है और प्रदीप सलूजा का मैसेज।

नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा किया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस गिरोहों को के खिलाफ विभिन्न अभियानों में 101 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को नए सिरे से मजबूत करने का आह्वान किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारईकल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने जापान के आइची नागोआ में एशियाई खेलों में महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। सुचिका तारियाल ने इतिहास रचते हुए आइची नागोआ खेल में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट के में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराकर शानदार शुरुआत की है। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से

बिल्कुल, क्या पता क्या नहीं पता, आपको सब पता है वैसे। और बिल्कुल एक सीक्रेट बात बताना चाहूँगा बच्चों आपको कि गलती करना हमेशा बुरी बात बिल्कुल नहीं होती। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि अगर हम गलतियों से सीख ले लें ना, तो वो हमारी गलती बिल्कुल एक टीचर बन जाती है हमारी, और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मान लो एक आप पज़ल सॉल्व कर रहे हैं, पहली बार में आप गलती कर देते हैं, दूसरी बार में फिर गलती हो जाती है, लेकिन तीसरी बार में बिल्कुल आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और यही एक आपकी एक लर्निंग बन जाती है लाइफ में। और बिल्कुल जब तीसरी बार आप सही आंसर तक पहुंचते हैं ना, तो आपकी मदद किसने की थी? बिल्कुल उन्होंने की थी, जो कि आपने पहली जो मिस आपने कर दिया था अपने मिस्टेक्स की वजह से, इसी वजह से आप वहां तक पहुंच पाए। तो बिल्कुल ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि गलती करना अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन गलती से ही हम आगे सीखते हैं। और इसलिए जब भी अगली बार आप कोई गलती करें, तो तुरंत ये मत कहना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन इसके बजाय आपको बिल्कुल ये अपने अपने माइंड में दोहराना है कि यस, इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, कुछ नया कर सकता हूँ। चलो अगर आप एक सिचुएशन में फंस जाते हैं कहीं पर आपको, और आपको लगता है कि आपने ड्राइंग बनाई और फर्स्ट प्राइज नहीं मिल पाया, तो आपको क्या लगता है कि आप उसमें हार गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और अगर साइकिल चलाते चलाते कई बार आप गिर जाते हैं, कई बार हम शुरुआत करते हैं साइकिल चलाने की और अक्सर हमारा बैलेंस खराब हो जाता है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि आप साइकिल नहीं चला सकते लाइफ में? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल ट्राई करते रहिए लगातार, और आपको लगेगा, आप बिल्कुल महसूस करेंगे कि आप धीरे धीरे टाइम के साथ उस चीज़ को सीखते चले जा रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम पढ़ाई में देखते हैं कई बार कि एक डिफिकल्ट चैप्टर आपके लाइफ में आ जाता है, अपने किसी भी सिलेबस में आ जाता है, और आप उसको छोड़ कर चले जाते हैं कि नहीं, मैं इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको उसको एक चैलेंज की तरह लेना है और उसी को एक लर्निंग की तरह लेना है, और वो आपकी लाइफ का पहला स्टेप हो सकता है सीखने के लिए। और उसके बाद जब आपको वो चीज़ें इतनी आसान लगनी शुरू हो जाएंगी ना, काम करते करते, प्रैक्टिस करते करते, तो आप कहेंगे कि यस, ये पहले क्यों नहीं आया। तो स्टे ट्यून्ड, और इसी लाइफ को बहुत आसान बनाए रखिए, क्योंकि लाइफ बहुत अच्छी है और इसको आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते चले जाएंगे ना, तो और भी आप इसको मजेदार बना पाएंगे। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए छोटे स्टार।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ की जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं छोटे उस्ताद मेरे यानी आशुतोष के साथ और आकाशवाणी रेनबो पर आपका साथ लगातार हमारे साथ यूं ही बना हुआ है। सो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ कनेक्ट होकर हमें। और एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। और बिल्कुल एक छोटा बच्चा था आरव, और उसको क्रिकेट खेलना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद था। और एक दिन स्कूल में क्रिकेट का मैच था और आरव की बैटिंग आई और वो बैटिंग करने आया तभी, और पहली बॉल जैसे ही बॉलर ने डाली और बिल्कुल बॉल सीधा आरव के विकेट्स पर लगे और आरव इसी के साथ आउट। और आरव उदास होकर बैठ गया, लेकिन और अपने कोच उसके पास आए तो कहने लगे कि क्या हुआ आरव, इतने उदास क्यों? तो उसने बड़ी उदासी के साथ कहा कि मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता और बिल्कुल मुझे इसमें नहीं होना चाहिए, मैं इसमें ये नहीं कर पाऊँगा। सो कोच ने उसको बिल्कुल शांति के साथ समझाया कि आज तुम आउट हुए हो, लेकिन तुमने आज जो कुछ भी सीखा है उसको अगर अपनी लाइफ में आप अगली प्रैक्टिस में उतारोगे तो आपको पता रहेगा कि आपने आज क्या कुछ सीखा। तुमने आज सीखा कि उस तरह की बॉल जैसे कि आज तुमने फेस की अपनी लाइफ में, उसको कैसे खेलना नहीं है आज तुमने ये सीखा, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से उसको खेलते चले जाएंगे तो आप बार बार आउट होते चले जाएंगे। तो ये लर्निंग है आपकी लाइफ में और इसको आप अपनी लाइफ में उतारिए कि इस तरह के गेंदे जब आती हैं आपके पास तो कैसे उसको आपको नहीं खेलना है और किस तरीके से उसको दूसरे ऑल्टरनेटिव वे में उसको आपको चूज करने हैं शॉट्स को। सो आरव चुपचाप सुनता रहा और अगले दिन जब वो फिर प्रैक्टिस पर लौटा तो फिर वही गेंद आई और इस बार आरव ने बहुत ही अच्छे से डिफेंस किया उस गेंद को, और जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस बढ़ती चली गई और गेंद्स जब आने लगी उसके पास रेगुलर बेसिस पे, तो उसके बाद जब एक शॉट उसने ज़बरदस्त मारा और सिक्स किया तो उसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और बिल्कुल उसके बाद उसने सोचा कि यस, अगर कोच ने अगर वो वाली बात उसकी उसने कोच की ना मानी होती तो आज शायद वो जो उसने सिक्स मारा है गेंद पर वो शायद आज ना हो पाता और वो शायद क्राउड में ही मैच देख रहा होता बैठ के। तो बच्चों बड़े ध्यान से आपको ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि पहली कोशिश में मिली असफलता ने उसको रोक नहीं पाई, बिल्कुल आपको रोकना नहीं चाहिए उसको और उसे अपनी कोशिश के लिए तैयार रहना चाहिए आपको हमेशा। और यही फ़र्क होता है कि हार मान लेने में और सीख कर उसको आगे बढ़ जाने में। तो आपको क्या करना होता है, आपको अपना सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है कि आपको बिल्कुल कुछ सीखना है उस लेसन से और उसको अपनी लाइफ में उतार लेना है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लेना है। फिलहाल आप सुनते रहिए हमारे साथ इसी लर्निंग के साथ छोटे उस्ताद, क्योंकि आप बड़े अच्छे बच्चे हैं और हर चीज़ को अच्छे से सुनते हैं, मानते हैं, हम पूरा ऐसे यकीन करते हैं। और फिलहाल आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए क्योंकि बहुत ही अमेजिंग गाने हम आपके लिए क्यों करके लाए हैं। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए छोटे उस्ताद आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

बिल्कुल अपनी लाइफ में जुनून ऐसे ही लगातार बनाए रखिए। और अब एक कल्पना कीजिए, एक इमेजिनेशन आप कर सकते हैं कि अगर आपकी पिछली गलती बोल पाती तो आपसे वो क्या कहती है ना। एक थोड़ा सा मज़ेदार सवाल आपके लिए। और अगर आप ये मैथ्स की गलती अगर आप देखते तो वो कहते कि बिल्कुल मुझे देख कर दोबारा सीखो, मेरे को दोबारा सॉल्व करो मेरे सवाल को। और क्रिकेट का अगर मिस शॉट अगर बोल पाता आपसे तो कहता कि अगली बॉल के लिए तैयार रहना आप। और ड्राइंग कॉम्पिटिशन कहता आपसे कि अगली बार और प्रैक्टिस करो और दोबारा से बनाओ। और एग्ज़ाम में हुई गलती कहती आपसे कि इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ो और दोबारा से रिवाइज करो। सो बिल्कुल, तो गलती हमें रोकती नहीं, अगर हम उससे सीख लें तो वो हमें आगे धकेल देती है। और बिल्कुल यही तो वो बात है। और बिल्कुल गलती दीवार नहीं, वो एक सीढ़ी है जो हमें आगे की ओर ले जाती है। सो इसलिए आपको इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखना है कि हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, हमेशा एक उत्साह के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। फिलहाल आप सुनते रहिए छोटे उस्ताद आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: बढ़ते दिन के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है खिलाड़ियों की उम्मीदें और हौसले मेडल जीतने के लिए। नमस्कार, 20वें एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं कविता
3: एंड आई एम दर्पंती किया।
2: अब तक भारत के शेड्यूल पर नजर डालें, खेलों पर नजर डालें तो अब भारत 2 मेडल जीत चुका है शूटिंग में। 10 मीटर एयर राइफल वुमेन्स टीम में आया है भारत का पहला मेडल जो जीता है एला वनिल वलारीवन सोनम मस्कर विदर्शा विनोद ने। वहीं इसी की इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में एला वनिल ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है।
3: Right, so 2 medals for Elavanil Valarivan, who hails from Tamil Nadu, and she calls Gagan Narang her mentor. And the interesting bit is that in the 2010 Asian Games in Guangzhou, Gagan Narang also achieved the same feat. He had won 2 silver medals, one in the individual event, one in the team event, and that's exactly what Elavanil has done today. And obviously, as Kavita told you, alongside Sonam Maskar and Vidarsha Vinod, she also won a medal in the team event. So India now are at 9th spot in the medals table, still early days with those 2 medals, but there are 2 more medals which have been confirmed but are not currently reflecting on that medals table. One in MMA, we have been telling you again and again that Suchika Tarial has confirmed at least a bronze by entering the semi-finals in the women's 60 kilogram category. However, another medal has now been secured in cricket as well. The Indian women's team have won their semi-final contest in a one-sided manner. They steamrolled Bangladesh, riding on Shefali Verma's record-breaking century, and are now assured of at least a silver. However, we will hope that in the final, when they lock horns with Sri Lanka, whom they defeated a few days back in the Women's Asia Cup final, they will again retain their gold medal, retain their crown of the Asian Games as well.
2: क्रिकेट के साथ ही जीत का सिलसिला बढ़ाया है आगे हॉकी के खिलाड़ियों ने। जी हाँ, हॉकी में भी दोनों ही टीमों के रिजल्ट हम सबके सामने आ चुके हैं। पहले मुकाबला खेला गया महिलाओं का, जहाँ पर भारतीय टीम ने उज्बेकिस्तान को शानदार तरीके से 19-0 से हरा दिया। इसी के पीछे पीछे भारतीय पुरुषों की भी मुकाबला खेला गया, जहाँ पर भारतीय टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 से हरा दिया। और बात करें अगर इसी के साथ स्विमिंग की, जिसका मुकाबला अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है, यानी दो

0: 40 पर ये मुकाबला होगा। तैराकी में पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा पर भारतीय तैराक एक बार फिर से मेडल के लिए दावेदारी पेश करते नजर आएंगे। ऋषभ दास यहाँ पर होंगे हमारे सामने। और आपको ये भी बता दें कि जो सारी प्रतिस्पर्धाएं हैं नागोया शहर और आईची प्रीफेक्चर में हो रही हैं, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हो रही हैं।
1: राइट, सो वी होप दैट ऋषभ दास हु विल बी फीचरिंग इन दैट फाइनल विल बी एबल टू गेट अ मेडल एज वेल। हाउएवर फ्रॉम द स्विमिंग सेंटर इन टोक्यो वी मूव आवर attention to the Sky Hall in Nagoya where the table tennis event is happening. As we told you in our last update that Indian women's team had won their opening contest against Indonesia and the men's team also started off on a winning note by defeating Indonesia. However, in their second tie, Singapore is giving the Indian women's team a run for their money. In each tie, there are 5 matches played and you have to win 3 of them in order to win the tie and take the points out of it. In the first match in this particular tie against Singapore, Yashaswini Ghorpade got India off to a good start. However, after that, Shrija Akula has lost her match and Dia Chitale has also lost her match. So now in the remaining 2 matches, India need to make it or break it, otherwise they will lose this fixture. On the other hand, in the badminton court, there was not much of competition. India secured a comfortable victory against Kazakhstan, riding on good performances from Unnati Hooda, Tanvi Sharma and PV Sindhu. And based on that, now they are into the quarterfinals where they will be facing Japan.
0: बात करते हैं वुशू की, जिसमें अब से कुछ देर बाद भारत के 2 खिलाड़ी अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। 52 किलोग्राम में अपर्णा सांडा इवेंट में ईरान की सोगंध सिंह काई चेतन से भिड़ेंगी। वहीं पुरुष 75 किलो में विक्रांत बालियान का मुकाबला ईरान के सोहेल मौसवी से होगा। ये भी सांडा इवेंट का ही मैच है। सांडा इवेंट सांशो की कहा जाता है वुशू मार्शल आर्ट का फुल कॉन्टेक्ट कॉम्पिटिशन है, जिसे फाइटिंग इवेंट माना जाता है। वुशू की उत्पत्ति चीन से हुई है। ये चीनी मार्शल आर्ट है जिसे दुनिया भर में कुंग फू के नाम से भी जाना जाता है।
1: सो वील कीप आर आईज ऑन दैट एंड वी विल गिव यू द अपडेट एज सून एज पॉसिबल एज एंड व्हेन इंडिया विन द मेडल्स। फॉर नाउ दिस इज दर्पण एंड कविता साइनिंग ऑफ विद द मैसेज दैट वी विल मीट अगेन एट 3:30 PM विद द लाइव अपडेट्स फ्रॉम द 20th एशियन गेम्स।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स सुन रहे थे।

बिल्कुल, और आपको भी हर मैदान ऐसे ही फतह करना है। और बिल्कुल सक्सेस की बात हर कोई करता है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की जो तैयारी होती है उसकी बात आज हम कर रहे हैं। और बिल्कुल आज आपको हम बना रहे हैं फेलियर डिटेक्टिव। और बिल्कुल हमारे पास अब 3 क्ल्यूज होंगे और एक मिस्ट्री सवाल भी हम आपको देंगे। और एक बच्चा एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाया और डिटेक्टिव उसका क्या पता लगाएगा कि उसने कितने घंटे पढ़ाई की, कहाँ गलती हुई और या अगली बार क्या बदल सकता है। तो बिल्कुल सिर्फ मार्क्स ही नहीं देखने, हमें अपनी तैयारी को भी देखना है। और साथ ही साथ एक और एक मिस्टीरियस सवाल आपसे पूछते हैं कि एक बच्चा फुटबॉल में गोल नहीं कर पाया था, तो वो अपने आप से क्या बोलेगा कि मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता, या फिर जो उसके अंदर का डिटेक्टिव होगा वो पूछेगा कि क्या मुझे पासिंग टाइम, जो टाइमिंग होती है उसकी, शूटिंग है, उसमें प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी चाहिए, तब मैं और ज़्यादा परफेक्ट हो सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता हूँ, खेल सकता हूँ, बस मुझे प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो ये डिटेक्टिव जब उसकी हेल्प करता है ना, तो वो और भी अच्छा खिलाड़ी बन जाता है। और ऐसे ही जब एक बच्चा स्टेज पर बोलते बोलते भूल जाता है ना, तो बिल्कुल क्या उसकी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं। और अगली बार वो पहले से प्रैक्टिस करेगा, छोटे छोटे नोट्स बनाएगा और अपने कॉन्फिडेंस के साथ उसको फिर से बोलेगा, क्योंकि एक कोशिश असफल हो सकती है लेकिन सीख कभी भी बेकार नहीं होती है। तो इसलिए आपको अपनी जो लर्निंग है ना, उसको लगातार बनाए रखना है। और अब घर पर बैठे एक छोटा सा चैलेंज आप भी ले सकते हैं कि अपने आसपास ऐसी कोई चीज़ देखिए जो आप सीखना चाहते हैं, जैसे कि ड्राइंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, डांस हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग हो गई, मैथ्स हो गया, या फिर म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, स्विमिंग सीखना चाहते हैं, तो कुछ भी। बस अब खुद से आपको इतना बोलना है कि मैं अभी फ़िलहाल परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं सीख सकता हूँ और बिल्कुल इसको मैं आगे कर सकता हूँ। और कैसे कर सकते हैं? ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, बस छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करने, छोटे छोटे सेशन करने, और देखिएगा कि आप कैसे परफेक्ट होते चले जाएंगे। फिलहाल आपके साथ हम भी यहाँ पर इस

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।

वेलकम बैक बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब आपको बता दूं कि आज जो लोग भी किसी भी काम में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना, तो वो कभी ना कभी उस काम में बिगिनर थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। और आज जो लोग बिल्कुल पहली बार में, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और पहली ड्राॅइंग आपकी गलत हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है, कलर्स उसके बाहर निकल सकते हैं, पहली कविता में जो तुकबंदी होती है वो भी गलत हो सकती है, पहली स्पीच में आवाज़ कांप सकती है, और पहली कोशिश में गोल मिस हो सकता है, शॉट भी मिस हो सकता है, और पहली जो भी कोशिश होती है वो कहीं बार गलत हो सकती है। बट प्रैक्टिस जब आप लगातार करते हैं ना, तो बिल्कुल वो काम आती है। और वो क्या करती है, वो आपको परफेक्ट बना देती है। और वो कहती है कि चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, और बिल्कुल फिर थोड़ा और बेहतर और बेहतर और बेहतर, और फिर आप बन जाते हैं एक बिल्कुल परफेक्ट इंसान। और यही छोटे छोटे सुधार मिलकर बड़ी प्रोग्रेस बनाते हैं, तो बिल्कुल वो एक आप बंदा बना देते हैं, बड़ा अमेजिंग बंदा बना देते हैं। आप स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ, और अमेजिंग गीत के साथ आप भी हमारे साथ यूं ही एंजॉय करते रहिए इस शो को। छोटे उस्ताद आपके साथ हैं, हम आकाशवाणी रेनबो पर।

बिल्कुल, जो बंदा होता है ना बिल्कुल बहुत अमेजिंग होता है। और बिल्कुल अब आपको बता दें, हम जाते जाते बिल्कुल 5 golden rules, और बिल्कुल आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि गलती से कभी डरना नहीं है आपको। रूल नंबर 2 है कि गलती का कारण समझना है आपको हमेशा, और ज़रूरत पड़े तो ये रूल नंबर 3 आपका कि ज़रूरत पड़े तो मदद ज़रूर मांगनी है, टीचर से पूछो, पेरेंट्स से पूछो, फ्रेंड से पूछो, बुक देखो, प्रैक्टिस करो, बस आपको अपने आप अंदर एक क्यूरियोसिटी जगा के रखनी है। और रूल नंबर 4 है कि दूसरों से नहीं, अपने आप से, अपने कल से कंपटीशन करो और आज से थोड़ा बेहतर बनो। और बिल्कुल रूल नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्राई अगेन, और इससे अच्छा और कोई साथी आपका हो नहीं सकता। इससे अच्छी प्रैक्टिस आप खुद से अपने आप को बेहतर बनाने में नहीं कर सकते। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ। और छोटे उस्ताद फिलहाल एक और इंपॉर्टेंट टिप आपको देने वाले हैं इसी गीत के बाद। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए अमेजिंग प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

बिल्कुल, और आपको चांस अपने आप को हमेशा देते रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आप कुछ सीखते हैं ना तो वहाँ पर हार अपने आप चली जाती है, और बिल्कुल आपकी जो गलतियाँ होती हैं ना आपको एक नए मुकाम पे ले जाती हैं, और बिल्कुल काम बिल्कुल बहुत आसान हो जाता है, और छोटे छोटे स्टेप्स आपको बहुत आगे ले जाते हैं, और बिल्कुल जब कोशिश करते हैं ना तो असफलता भी बिल्कुल ऐसे दूर भागती है आपसे कि वो भी डर के मारे बिल्कुल ऐसा कहते हैं कि नहीं मेरे को इसके पास नहीं आना है। और साथ ही साथ बस अगली बार जब भी कोई काम मुश्किल लगे तो बिल्कुल लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, और खुद से कहे कि मैं फिलहाल अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन अभी मैं कुछ सीख सकता हूं और सीखने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। बिल्कुल, तो अपने आप को हमेशा प्रेरित रखना है, फोकस रखना है, और अपनी गलतियों से सीखते रहना है, और गलती ऐसा नहीं मानना है कि वो अंत है, वो हमारा एक क्लोजिंग चैप्टर है, बिल्कुल ऐसा नहीं मानना है, बल्कि कोशिश करके एक नई शुरुआत आपको पैदा करनी है अपने अंदर, और सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए, और बिल्कुल लगातार ऐसे ही मुस्कुराते हुए हमारे साथ यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और फिलहाल अमेजिंग गीतों के साथ यहां पर का दौर लगातार चलता जाता है, और एशियन गेम्स के अपडेट्स भी आपको लगातार मिल रहे हैं हर घंटे में, वो भी सुनते रहिए, और स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ में बिल्कुल इंक्लूड कीजिए, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स के साथ जुड़ते हैं ना तो आपकी लाइफ बहुत ही एनर्जेटिक हो जाती है। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ सुनते रहिए आकाशवाणी। फिलहाल आशुतोष आपसे लेते हैं अनुमति, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।

0: वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज का अंक फैटी लिवर पर आधारित है। आज हम जानेंगे फैटी लिवर को और साथ ही फूड सेफ्टी और फूड एडल्टरेशन पर भी बात होगी हमारे जो आज की रेडियो डॉक्टर है उनसे। हम खाने की मिलावट और खाने की मिलावट से होने वाले हमारे शरीर में नुकसान, साथ ही साथ फैटी लिवर पर इसका क्या असर पड़ता है, ये सारी बातचीत करेंगे। हमारी रेडियो डॉक्टर हैं आज की डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंटरोलॉजी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। स्वागत है डॉक्टर साहब आकाशवाणी के स्टूडियो में।
2: नमस्कार एंड धन्यवाद शालिनी जी। मुझे भी बड़ी खुशी होगी इस बारे में बात करके, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और खान पान तो हमारे देश की तहजीब है तो उससे रिलेटेड है।
1: बिल्कुल, और फैटी लिवर की जब हम बात करते हैं, लिवर एक ऐसा अंग है मैडम हमारे शरीर का जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे आपने कहा खान पान एक तरह से धुरी है ये हमारे जीवन की और शरीर की भी। क्या हम खाते हैं उसी से ही हमारा शरीर बनता है, तो बहुत जरूरी होता है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें क्या खाना है ये सोचना, कितना खाना है, ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, जो आजकल हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो इसकी अवेयरनेस की भी जरूरत है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ है, वो भी इस चीज को समझे। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम उनको भी ये बात समझाएं कि किस तरह से हम अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। लिवर क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो आप पूरी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। और फैटी लिवर जो पहले हम कभी कभार सुनते थे, फैटी लिवर जैसा शब्द, वो इतना कॉमन अब आजकल होने लगा है। तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि पहले तो ये कि फैटी लिवर होता क्या है और ये आजकल क्यों बढ़ रहा है।
2: देखिए, फैटी लिवर, लिवर यानी हमारा यकृत और फैट मतलब वसा। तो जब फैटी फैट जो होता है वो जरूरत से ज्यादा हम खाने लग जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे डायबिटीज और मोटापा साथ में होना और हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होना, इन सब के साथ क्या होता है कि जो लिवर का मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाता है और जो फैट है वो हमारे लिवर पे जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, उसे हम फैटी लिवर कहते हैं। और इसका जो प्रेवलेंस और इंसिडेंस है ये काफी बढ़ गया है आने हुए सालों में। और ये इसलिए है क्योंकि जो हमारी खान पान की शैली है, जो हमारी जीवन की शैली है, उसमें बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ गया है। तो उस कारण से फैटी लिवर जो है वो काफी सुनने में आ रहा है।
1: तो ये क्या बदलाव है और ये बदलाव हमारे लिए कितने हानिकारक हैं और अब हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं, ये सारी चीजें, ये सारे डिस्कशन हम आज करेंगे। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और फिर लौट कर आते हैं, रेडियो डॉक्टर को जारी रखेंगे हमारा जो आज का विषय है फैटी लिवर पर।

0: दिल बहलता है आपके आ जाने से, और जब आप इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, आज जो हमारे श्रोता है बहुत सारे अभी तक सवाल अभी से ही भेज चुके हैं, कार्यक्रम अभी शुरू ही हुआ है तो लगता है बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं फैटी लिवर से संबंधित। तो मैं शुरुआत यहीं से कर लेती हूं। हमें लिखा है अनमोल ने सरिता विहार से कि कैसे पता चलता है कि फैटी लिवर हो गया है, ये बताएं।
1: देखिए अनमोल जी और बाकी श्रोतागण भी, नॉर्मल जो हमारा लिवर होता है उसमें थोड़ा बहुत फैट तो एक्यूमुलेट होता है, वो नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन जब लिवर के वेट का 5-10% सिर्फ फैट हो जाता है तो उसे फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर एक डिसीज होती है, इसके कई स्पेक्ट्रम होते हैं। तो इनिशियल जो होता है, जो सिंपल चीज होती है, जब सिंपल फैट एक्यूमुलेट होना शुरू होता है तो वो होता है फैटी लिवर। उसके बाद जब फैट इतना ज्यादा हो जाता है कि जो लिवर के सेल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है तो स्टियोहेपेटाइटिस हो जाती है, उसे हम कहते हैं नैश या मैश। और आगे चल के जब ये इन्फ्लेमेशन की वजह से लिवर ही डैमेज हो जाता है तो वो होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो शुरुआत हमेशा फैटी लिवर से होती है। नॉर्मली हमें या तो जब लिवर में फैट जमा हो जाता है तो उसका साइज बड़ा होने लग जाता है और हमें जहां लिवर होता है राइट साइड में वहां पर हमें खिंचाव या हल्का हल्का दर्द महसूस होने लग जाता है। तो नॉर्मली फिर सब हम नॉर्मल होता है, आजकल की अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें लिखा हुआ आता है फैटी लिवर। तो जरूरी नहीं है कि वो देख के हम डर जाएं। फैटी लिवर जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं काफी कॉमन है और प्रिवेंटेबल भी है एक बार अगर पता चल जाए तो। लेकिन जैसे ही अगर आपको पता चलता है फैटी लिवर है और उसके साथ फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसमें कुछ टेस्ट आते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, तो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि भाई फैटी लिवर है और अब आपको सावधानी रखने की जरूरत है। और अगर साथ में आपको मधुमेह है, शुगर की बीमारी है, आपको मोटापे से आप ग्रसित हैं और बीपी की बीमारी है या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें कई बीमारियां साथ में आती हैं और फिर फैटी लिवर आता है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, उस समय आपको और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है।
0: जी, तो बहुत सारी बातें आपने, बहुत सारे सवालों का जवाब आपने इसमें दिया, क्योंकि हमने अभी कॉज पे बात की थी पर आपने सिम्टम भी बताया।
1: जी जी,
0: तो इसमें क्या दर्द भी होता है जैसे खिंचाव के साथ?
1: देखिए जो हमारा लिवर होता है ना वो एक कैप्सूल के अंदर रहता है, एक खोल होता है, भगवान ने आप एक प्रोटेक्टिव लेयर देके हम सबको भेजा है लिवर के आसपास। तो जो वो जब नॉर्मल लिवर रहता है, फैट उसमें नॉर्मल मात्रा में रहता है तो वो खिंचाव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे फैटी लिवर बढ़ता जाता है, जैसे कि मैंने बताया 5-10% लिवर के वेट से ज्यादा होना शुरू हो जाता है, तो फिर लिवर का जो कैप्सूल है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है और आपको दर्द या एक हल्की सी चुभन या ऐसा महसूस होता है जहां पर लिवर है राइट साइड में। आगे इसके लक्षण क्या होते हैं कि फिर जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपके जो लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं उसमें एबनॉर्मैलिटी आनी शुरू हो जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल वाले टेस्ट होते हैं उनमें एबनॉर्मैलिटी आनी शुरू हो जाती है, तो फिर ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज बनना शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कहीं

0: आपको थायराइड तो नहीं है, कहीं आपको शुगर तो नहीं है, कहीं आपको बीपी की दवाई या दिल की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें फैटी लिवर के साथ होती है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है.
1: अच्छा
0: फिर हम आपका वेट देखते हैं कि आपका वेट नॉर्मल है या आप ओबीस हैं या ऐसा है कि आपका शरीर मोटापे की तरफ बढ़ रहा है. तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं देखने के लिए कि अगर अकेला फैटी लिवर है या उसके साथ और भी जो लक्षण होते हैं वो है या नहीं है.
1: जी. तो अगर इस तरह का कुछ लगता है तो उन्हें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जो जो टेस्ट डॉक्टर लिखें
0: जी
1: वो सब कराने बहुत
0: जी
1: आवश्यक
0: जी
1: है.
0: जी जो भी आपके निकटतम डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, वो आपको असेस करेंगे, आपको टेस्ट बताएंगे, और फिर उन सारी चीजों को, आपके जो लक्षण हो रहे हैं उनके साथ आपके टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सबको मिला के देख के फिर आपका डायग्नोसिस बनाएंगे कि आप किस बीमारी से पीड़ित हैं.
1: जी. तो डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि वेट भी इसमें
0: जी
1: काफी
0: जी
1: मैटर
0: जी
1: करता है, कि
0: जी
1: ओवर वेट तो नहीं है.
0: जी
1: तो ऐसा ही एक प्रश्न हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है. जतिन मल्होत्रा हैं और ये रहते हैं गीता कॉलोनी में, दिल्ली में. लिख रहे हैं कि मेरा फैट बहुत बढ़ गया है और मुझे भूख बहुत लगती है, तो बताएं नॉर्मल वेट होना कितना चाहिए?
0: देखिए, वो तो एज के हिसाब से स्टैंडर्ड होते हैं कि भाई इस एज में पर्टिकुलर बीएमआई होता है कि हमारा बेसल वो उसके हिसाब से होता है. तो ऐसे रेडियो पे तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती,
1: जी
0: लेकिन आपकी हाइट और आपके वेट और आपके एज के हिसाब से होता है. और अगर आपकी जो चर्बी है वो पेट पर है ज्यादा, जो एब्डोमिनल ओबिसिटी होती है वो रिस्क फैटी लिवर के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ होता है.
1: अच्छा.
0: एब्डोमिनल ओबिसिटी जो होती है, जो पेट पे जो खासकर मोटापा होता है, वो फैटी लिवर, शुगर और दिल की बीमारियों के साथ ज्यादा कोरिलेट होता है.
1: अच्छा, इन्होंने
0: तो
1: एज लिखकर भेज दी है मैडम.
0: अच्छा,
1: अभी लिखा है कि मैं 27 ईयर्स का
0: जी
1: हूँ.
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी
0: जी तो
1: तो
0: 27 ईयर्स के हैं, और अगर 5 फुट, 5.5 या 6 फुट के कहीं बीच में है तो इनका वजन कहीं 70 से 72 किलो के बीच में होना चाहिए, वो इनका नॉर्मल वेट है.
1: ठीक है
0: ऐसे रेडियो पे बताना बड़ा
1: जी,
0: मुश्किल
1: बिल्कुल.
0: है,
1: आपने बताया
0: ये
1: कई सारी चीजें
0: बहुत सारी
1: देखनी
0: चीजें
1: पड़ती हैं.
0: देखनी पड़ती
1: हाँ
0: हैं. पर
1: हाँ
0: अगर इन्हें लग रहा है कि मेरा फैट बढ़ गया
1: हाइट
0: है,
1: भी
0: हाँ,
1: देखना
0: हाइट भी देखनी पड़ेगी, सर्कमफ्रेंस देखना
1: पड़ेगा.
0: पड़ेगा,
1: जी
0: पेट नाप के ना जो मेजरमेंट्स हैं वो लेने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी. लेकिन अगर आप खुद ही महसूस कर रहे हैं कि मेरा फैट बढ़ता जा
1: हाँ
0: रहा है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि
1: हाँ
0: आप उस पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि ये चीज बेस्ट चीज ये ऐसी है कि एक बार आप अगर ध्यान देना शुरू करेंगे तो ये रिवर्सिबल है शुरू में,
1: अच्छा.
0: मतलब ये ठीक हो जा सकती है. ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपको फैटी लिवर हो गया तो वो नहीं ठीक होगा. इनिशियल जो स्टेजेस होती है फैटी लिवर, स्टियोहेपेटाइटिस, दे आर रिवर्सिबल एंड दे कैन बी रिवर्टेड बैक.
1: अच्छा
0: आप
1: अच्छा
0: नॉर्मल लिवर अपना दोबारा पा सकते हैं
1: जी
0: अगर आप सही समय पर लक्षण पहचान लें और ध्यान रखना शुरू कर दें
1: जी
0: तो.
1: तो ये भी हम जानेंगे आपसे कि कैसे इसको रिवर्स किया जा सकता है. हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर है, इनसे प्रश्न पूछ लेते हैं इनका. हेलो.
2: हेलो,
1: हेलो जी.
2: रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार.
1: नमस्कार जी.
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम.
0: नमस्कार जी, नमस्कार जी.
2: जो लोग ज्यादा नॉन वेज खाते हैं उनका लीवर जल्दी फैटी होता है. नंबर टू, जो हम सील्ड पैक्ड जिसको कहते हैं पैक्ड प्रोडक्ट लेते हैं
0: प्रोसेस्ड फूड,
2: उनकी.
0: प्रोसेस्ड फूड चड्डा जी उसको हम कहते हैं, प्रोसेस्ड फूड जो हाईली प्रोसेस्ड होता है.
2: तो उसको उसकी शेल्फ लाइफ काफी लंबी होती है, 1 साल से
0: जी
2: लेकर 2 साल तक.
0: जी जी
2: तो वो खाने से भी लीवर फैटी हो सकता है, कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा.
0: देखिए चड्डा जी, देखिए कुछ भी चीज है ना, या हम अकेले नॉनवेज की बात नहीं कर सकते क्योंकि ये जीवन शैली है, हर हर आदमी का एक अपना खान पान है. तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाला खान पान गलत है और ये वाला सही है. कोई भी चीज जब भी हम एबनॉर्मल मात्रा में करेंगे तो वो हमें नुकसान देगी. उसमें ज्यादा घी तेल भी आ गए, उसमें ज्यादा मिठाइयां भी आ गई, उसमें ज्यादा तले हुए पदार्थ भी आ गए, उसमें ज्यादा नॉन वेजिटेरियन भी चीजें, मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही जो अनहेल्दी हैं अगर वो हम ज्यादा मात्रा में लेंगे तो फैटी लिवर हो सकता है. तो ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये जो आजकल प्रोसेस फूड का चलन चल गया है कि जो आप पैकेट खरीदें और वो 1-1.5 साल तक ठीक रहेगा, और इंस्टेंट फूड जो है, ये जो फूड है ये बहुत प्रोसेस्ड होते हैं, इनसे फैटी लिवर होने का बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है. फैटी लिवर ही नहीं और भी जो बीमारियां हैं वो इनसे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इनका चलन आजकल ज्यादा ही चल गया है. और इनकी
1: जी
0: शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनमें केमिकल्स वगैरह डालने पड़ते हैं जिससे कि जो इनकी नॉर्मल और अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो खराब हो जाती है.
1: एक तो प्रोसेस भी हो गया, और कई बार
0: जी
1: ऐसा भी देखने में आता है कि सब स्टैंडर्ड
0: जी
1: माल भी कई बार मिलता है, जिसको हम एडल्टरेटेड कहते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उससे भी काफी
0: क्योंकि
1: समस्याएं बढ़
0: खपत
1: रही.
0: ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है देश की, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए कई
1: जी
0: बार सब स्टैंडर्ड चीजें होती हैं उनमें मिलावट हो जाती है, पता नहीं चलता. आए दिन हम रेडियो और टीवी पे सुनते रहते हैं कि भाई फलाना चीज में ये पकड़ा गया.

0: ये पकड़ा गया, तो वो भी चीजें, वो केमिकल्स होते हैं वो मिलाए जाते हैं और वो सब स्टैंडर्ड होते हैं, और हर जो चीज हम खाते हैं वो मेटाबोलाइज लिवर में ही होती है जाके, तो वो लिवर को नुकसान पहुंचाती है।
1: इसमें डॉक्टर साहब कई चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है
0: जी, मतलब हाँ, इनका तो हम कुछ हाँ, कर नहीं सकते,
1: जैसे पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है या स्प्रेज हो रहे हैं वो किस तरह से, तो हम ये कर सकते हैं कि हम अच्छे से धो के खाएं, जो भी
0: जी
1: कच्चा खा रहे हैं,
0: जी
1: फ्रूट्स खा
0: और
1: रहे हैं,
0: कोशिश करें कि ताजी चीजें खाएं, पैकेट बंद चीजें अवॉइड करें खाना जितना हो सके। जैसे कि हमारे पूर्वज थे वो साथ के साथ बनाते थे, साथ के साथ खाते थे, रखने का चलन कोई नहीं था कि एक समय का खाना दो तीन दिन तक चलता रहेगा, और यहाँ तो हम प्रोसेस फूड की बात करें जो पैकेट साल भर चलने की बात करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ताजा बनाएं, साथ के साथ खाएं और प्रोसेस फूड अवॉइड करें।
1: जी जी बिल्कुल सही बात। और हमारे ये एक श्रोता हैं तपोष प्रमाणिक, बोंगा वेस्ट बंगाल से हमें लिखकर भेज रहे हैं, आर चिल्ड्रन मोर एट रिस्क ऑफ फैटी लिवर, तो मुझे लगता है कहीं से ये जुड़ता है क्योंकि बच्चे प्रोसेस फूड बहुत खा रहे हैं।
0: पोस्ट कोविड जो है चाइल्डहुड ओबिसिटी काफी बढ़ गई है, मतलब मैं पीडियाट्रिशियन नहीं हूं तो मैं एग्जैक्ट जो फिगर्स है वो नहीं बता सकती, लेकिन प्रोसेस फूड का चलन तो चल ही रहा है और जो बच्चे होते हैं उन्हें ये घर की बनी हुई सब्जी और जो हेल्दी चीजें होती है वो नहीं पसंद आती उन्हें, पैकेट वाली चीजें, प्रोसेस फूड, फैटी फूड, ये सब चीजें बहुत
1: कुछ एडिटिव्स
0: प्रमोट भी होती
1: जाते
0: हैं
1: क्या
0: हमें एज अ पेरेंट तो मुझे लगता है, बट एज अ डॉक्टर तो मैं भी नहीं कह सकती कि कुछ है या नहीं है, बट हाँ हमारे बच्चे जो हैं वो भी, हमें भी लगता है कि हाँ इजी चीज है एक पैकेट पकड़ा दो इंस्टेड ऑफ कि हम जाके ताजा बनाए, वो भी एक है क्योंकि सब बिजी है, सबकी लाइफ स्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है और समय ही नहीं है किसी के पास, तो जो इजी ऑप्शन है वो पैकेट्स ही होते हैं, बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते या तो मौसम खराब है, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा सर्दी है, या फिर कभी बारिश आ रही है, तो जो पहले जैसे बच्चे पूरे दिन खेला करते थे, फिजिकल एक्टिविटी जो पहले ज्यादा होती थी वो अब बिल्कुल जीरो या निल रह गई है, और जो फूड है वो प्रोसेस्ड और रिच ज्यादा होता जा रहा है, तो हर चीज बराबर होती है ना कि जितना हम खाएं उतना हम पचाने के लिए एक्सरसाइज तो करें तो बैलेंस बना रहता है, जहां पे पाचन करने के लिए हम एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे और कैलोरीज और एनर्जी कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो वो फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है और फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है।
1: जी
0: ये है,
1: तो बहुत सारी डॉक्टर साहब ने बात बताई है कि फिजिकल एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है, तो हम इन सारी बातों पर अभी इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद करेंगे बातें। आपके बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं, हम उनको भी लेंगे। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। मैं हूं शालिनी मित्तल और मेरे साथ आज की रेडियो डॉक्टर डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। और आज हम उनसे बात कर रहे हैं फैटी लिवर के बारे में और साथ ही फूड सेफ्टी एंड एडल्टरेशन, खाने में होने वाली मिलावट और उसके नुकसान के बारे में भी डॉक्टर साहब बहुत कुछ बता रही हैं। तो एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो।
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून।
1: और डॉक्टर साहिबा को भी मेरा गुड आफ्टरनून।
2: जी गुड आफ्टरनून।
1: मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे महिलाएं घर के काम में ज्यादा लगी रहती हैं, तो मेरे जैसी जो 45+ महिलाएं हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है और मैम उनको किन किन चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए पर्टिकुलर इस एज में आने के बाद, ताकि हम इस समस्या से दूर रह सके।
2: जैसा कि आपने कहा कि घर का काम इम्पोर्टेंट है, तो जितनी इम्पोर्टेंस आप घर के काम को दे रहे हो ना कि भाई नाश्ता लंच डिनर बनाना है, उतनी इम्पोर्टेंस आपको एक्सरसाइज को देनी है कि एक्सरसाइज भी रोज करनी ही करनी है। अगर आप ये मान के चलेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। और आपको ही नहीं, हर एज की फीमेल्स या मेल्स को बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखनी है। एक तो हमें अपना जो बॉडी वेट है वो आइडियल रखना है, यानी मेल्स में जो वेस्ट सर्कमफेरेंस होती है वो 102 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए और फीमेल्स में 88 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका वेट सर्कमफेरेंस। अगर आपका वेट सर्कमफेरेंस इन नंबरों से ऊपर है मेल्स और फीमेल्स में, तो आप थोड़े हाई रिस्क की तरफ जा रहे हैं मोटापे के, और वो आपको लीड करेगा फैटी लिवर, डायबिटीज ऐसी बीमारियों की तरफ। फिर खान पान का बहुत ध्यान रखें, ताज़ा खाना बना के खाएं, अपने खाने में फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स और प्रोसेस फूड कम से कम रखें, ताज़ा खाना बनाएं, सब्जियां और फल ज़्यादा मात्रा में लें, एक्सरसाइज करें, खूब सारा पानी पिए और अपनी सेहत का ध्यान रखें। किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती है, योगा हो गया, वॉकिंग हो गई या जिम अगर आप जाते हैं, तो वो उसको अपनी लाइफस्टाइल का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बना लें जितना कि आपकी रोजमर्रा का जो घर का काम या ऑफिस का काम है वो रूटीन है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। उम्मीद है कि आपको सही और सटीक जवाब जो डॉक्टर साहब ने दिया और आप जैसे और बहुत सारे जो हमारे श्रोता है जो जिनका यह प्रश्न था उनको भी मिल गया। लेकिन हमारे एक श्रोता है डॉक्टर साहब मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक गाजियाबाद से, वो थोड़ा सा अलग व्यू रखते हैं
2: जी।
0: वो ये लिख रहे हैं कि फास्ट फूड और तरह तरह का नशा ये हमारे लिवर के लिए किस तरह से असर डालता है, ये तो एक क्वेश्चन है। पर इन्होंने लिखा है आगे कि आजकल घरों में महिला हो या पुरुष या बच्चे, कोई अपना काम करना नहीं चाहता, करता ही नहीं है, घर में नौकर लगा के रखा है, कामवाली लगी हुई है, खुद मेहनत नहीं करना चाहते, तो इसका हमारे शरीर पे हमारे लिवर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है ये मैं जानना चाहता हूँ। और आपको और डॉक्टर साहिबा को नमस्कार।
2: नमस्कार जी। एक तो जो आपने बात कही नशे की, तो वो दो हम फैटी लिवर पे बात कर रहे हैं, ये जो है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इन पर्टिकुलर पे हम बातें कर रहे हैं। लेकिन लिवर जो है वो अल्कोहल से भी खराब हो जाता है और ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो इस आज के प्रोग्राम के उससे बाहर है। लेकिन हर तरह का नशा हमारे शरीर को नुकसान दे सकता है, ये हमें स्मोकिंग अल्कोहल ये तो सबको पता ही है। और जहां तक कि आपने बात की कि काम कम कर रहे हैं, देखिए आजकल जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा बदल गया है, फीमेल्स भी काम करने लगी हैं, मेल्स भी काम करने लगे हैं, और किसी ना किसी तरह हाउस हेल्प की जरूरत तो हमें पड़ती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारा काम हम उन पर ही छोड़ देते हैं, बहुत सारा काम हम खुद भी करते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल पर से अगर आप अपनी लाइफ में एक्टिविटी नहीं करते हैं वो एक रिस्क फैक्टर है, ना कि सिर्फ फैटी लिवर के लिए बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए, जैसे शुगर डायबिटीज हो गई, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई। तो फिजिकल एक्टिविटी तो हमें जितनी भी हो सके, बचपन से ही बच्चों में भी आदत डालनी चाहिए और जो भी घर के सदस्य हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी वो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाकर रखें। काम तो कोई भी अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी ही होगी।
0: हमारे साथ एक श्रोता फोन लाइन पर। हेलो।
3: हेलो नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। शालिनी मित्तल जी, संजीव कुमार हूँ जी मैं गाँव।
0: जी संजीव जी, अपना प्रश्न कर
3: ले। मैं प्रश्न ही है मैडम जी, अल्ट्रासाउंड में ना उसका कई साल पहले फैटी लीवर आया था जी। और उसकी वो यहाँ से पटना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या करनाल में दवाइयां भी लिखी, दवाई करके ली, नाम तो मेरा याद नहीं है, पर उससे उसको कोई खास आराम नहीं है, देखने में कमजोर है और परफॉर्मेंस उसकी स्टडीज में बिल्कुल भी क्या है। पहले 6 साल मैंने बीएससी पास कर सके और अब भी यानी से कर रहा वैसे वो बीएससी, तो अब उसको क्या करना चाहिए मैडम? सर्दी में नाता नहीं है कहीं कहीं महीने, जैसे कि अक्टूबर में रुकेगा ना, फिर अप्रैल के बाद ही ना आएगा। और जी यानी वीक वीक है बिल्कुल, कई बार अगर जाता है सीजोफ्रेनिया भी है उसको और एपिलेप्सी भी है जी।
2: हाँ देखिए, मैं भी यही कहने वाली थी कि ये सिर्फ एक शारीरिक बीमारी के लक्षण नहीं है, ये मानसिक बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं। तो उन्हें जरूरत है कंप्लीट मानसिक इवैल्यूएशन की। जो भी आपके पास डॉक्टर हैं उनसे या किसी भी मनोचिकित्सक से आप उनको दिखाएं और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, और फिर दोनों तीनों चीजें एक साथ मिलकर चलेंगी। कई बार क्या होता है कि जो दवाइयां उनको अपनी मानसिक दवाइयों के कारण चल रही हैं उनसे भी फैटी लिवर हो जाता है, कुछ दवाइयों से होता है। तो आपको उनके बिहेवियरल थेरेपी और काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत लग रही है जैसा कि आप बता रहे हैं उनके कारण।
3: काउंसलिंग तो मैडम बहुत करते हैं,
2: जी
3: नहीं कल्पना चावला गवर्नमेंट
2: जी जी जी
3: काफी बार करते हैं काउंसलिंग
2: जी जी
3: ये मानता नहीं है।
2: वो आपको ना रेगुलर करवानी पड़ेगी ये, क्योंकि बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, ये रोज रोज रोज रोज स्ट्रेस करना पड़ेगा आप लोगों को भी, और काउंसलिंग और दवाइयां जब दोनों तीनों चीजें इकट्ठे होंगी तो ही फर्क पड़ेगा। जी
0: धन्यवाद संजीव
2: बहुत
0: जी, और
2: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि उनको इवैल्यूएशन की जरूरत है, आप उसको फॉलो अप करें। और हमारे पास दिनेश शर्मा जी ने डॉक्टर साहब लिखकर भेजा है शिमला झुंझुनू राजस्थान से कि फैटी लिवर को पता करने के लिए कौन कौन सी जांचें की जाती हैं और इसका उपचार और बचाव, वो सारी चीजें पूछी। तो हम बात तो कर ही रहे हैं, इसका कोई टेस्ट भी होता है जो अलग
2: जी,
0: से
2: शुरू में तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है एक, और अल्ट्रासाउंड के साथ कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट जिसे MLF कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल देखे जाते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल किया जाता है देखने के लिए कि आपको मधुमेह तो नहीं है। तो इनिशियली ये सब चीजें होती है, उसके बाद ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी या फाइब्रोस्कैन नाम का एक टेस्ट होता है जो बड़े अस्पतालों में और बड़ी जगहों पर उपलब्ध होता है, वो टेस्ट कराना होता है देखने के लिए। उसमें एक पर्टिकुलर कट ऑफ वैल्यू होती है जो देखी जाती है, अगर आप उस वैल्यू के ऊपर आते हैं तो फिर रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से असेस किया जाता है, और आपको जो भी प्रिवेंटिव चीजें हैं जो आपको उस समय से लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी बढ़ानी है, खाने में क्या खाना है, कितनी आपकी न्यूट्रिशनल कैलोरीज अलाउड है, वो सब आपको डिटेल फिर उसमें बताया जाता है।
0: डॉक्टर साहब, हमारी श्रोता है परिधि, दिल्ली में रहती हैं, लिख रही हैं माय हस्बैंड हैज ग्रेड 2 फैटी लिवर एंड ही इज 30 इयर्स ओल्ड। तो ये कितना डेंजरस है बिकॉज ही इज सो यंग, और हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, कैन इट बी रिवर्स्ड बाय लूजिंग वेट और वी हैव टू टेक सम एडिशनल मेजर्स।
2: देखिए परिधि जी, इनिशियली तो वेट लॉस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो एक बहुत ब्रॉड टर्म होती है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें एक तो आता है कि आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो मैंने आपको, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सुटेबल होता है वो आप शुरू करें। दूसरा होता है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज, लाइफस्टाइल मतलब बदल रहे हैं हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स, हम कितने बजे खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, क्यों कौन सा हम ऑयल यूज करते हैं, क्या हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, क्या हम नहीं खा रहे, कितनी देर हम बैठे रहते हैं पूरे दिन में, हम किस तरह का हमारा वर्क है, किस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, तो वो सब हमें चेंज करना होता है। इनिशियल हमेशा लाइफस्टाइल चेंज और मॉडिफिकेशन जो है दैट गोज लॉन्ग वे इन ट्रीटिंग यू। अगर उसके बाद नहीं आराम होता तो फिर बाकी चीजें दी जाती हैं कि दवाइयां हैं जो उपलब्ध हैं जो दी जाती हैं, और कंप्लीट असेसमेंट आपके हस्बैंड को जरूरत है। सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आने से अकेले से वी डोंट हैव टू पैनिक। जैसा कि मैंने अभी बताया था, वेट सर्कमफ्रेंस, BMI, LFT, शुगर, वो सारे एक बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं जो करने पड़ते हैं इवेल्युएट करके, उसके बाद हम बता सकते हैं आपको कि रिस्क कितना है। लेकिन अगर आ रहा है फैटी लिवर तो आई थिंक आप लोगों को एक्सरसाइज और डायट्री मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो अपने आप ही शुरू कर देनी चाहिए।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बात समझ में आई कि क्या ये अलग अलग ग्रेड का भी होता है, जैसे उन्होंने ग्रेड 2 लिखा है?
2: देखिए वो तो रेडियोलॉजिकल वो होते हैं, उसमें ग्रेड दिया जाता है।
0: अच्छा।
2: जैसा कि मैंने बताया फाइब्रोस्कैन है, उसमें भी हम असेस करते हैं ग्रेड, उसमें भी ग्रेड होते हैं, बट वो नॉर्मल आदमियों के लिए नहीं होते, वो डॉक्टर्स के लिए होते हैं। डॉक्टर्स देखेंगे भाई कौन सा ग्रेड है, उसमें रिस्क कितना होता है, वो हम असेस करके फिर हम आपको बताते हैं कि भाई आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए।
0: जी संजय हमें लिखकर भेज रहे हैं, कहां से, इन्होंने ये नहीं लिखा है, बिहार से इन्होंने लिखा है कि मेरे पेट में दर्द है 1 साल से, कभी ऊपर कभी नीचे रहता है, तो क्या ये कहीं से फैटी लिवर का कोई सिम्टम माना जा सकता है?
2: देखिए नॉन स्पेसिफिक पेन, कभी ऊपर कभी नीचे, तो फैटी लिवर का सिम्टम नहीं होता। मतलब जैसा कि हम बता रहे हैं ठीक है अवेयरनेस है, लेकिन इतना डर भी अपने मन में पैदा नहीं करना चाहिए कि भाई दर्द इधर उधर जो है वो कुड बी अ नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन, नॉट नेसेसरी फैटी लिवर।
0: जी तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौट के आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर के बारे में और साथ ही बात कर रहे हैं खाने में होने वाली मिलावट के बारे में। हमारे साथ हमारी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, मैं हूं शालिनी मित्तल, सुनते रहिए कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
4: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
5: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
6: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
7: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
8: जापान के आईची नागोया में खेले जा रहे 20वें एशियन खेल की लेटेस्ट जानकारी के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं कविता
9: एंड आई एम दर्पंती किया।
8: अब तक हमने आपको बताया आज के दिन में जापान में हो रहे एशियन गेम्स में शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन में भारत का दबदबा रहा, लेकिन टेबल टेनिस के टेबल पर भी इस वक्त चल रहा है एक कांटे का मुकाबला।
9: राइट, इट इज द वुमेन्स टीम इवेंट वेयर इंडिया वन देयर अर्लियर फिक्स्चर अगेंस्ट इंडोनेशिया। हाउएवर, सिंगापुर इज कॉन्स्टेंटली गिविंग द इंडियन टीम अ रन फॉर देयर मनी एंड लेट मी टेल यू दैट इन दिस पर्टिकुलर इवेंट इन अ particular fixture or a particular tie, 5 matches happened back to back and there India started off on a winning note. However, then Singapore came roaring back to win the next two. India won the fourth one and hence we went into the final match, which was supposed to be the deciding match, and that deciding match between Singapore's Ming Loy and India's Yashaswini Ghorpade has also gone into the final set, and just as we speak Yashaswini Ghorpade has scored the winning point. It looks like India have won this particular match. So good news coming your way. Both matches, both opening matches have been won by the Indian team. The Indian women's team are off to a winning start. And just as we say that, 25-year-old Manush Shah is gearing up to face an opponent from Iran in the men's team event. This is the second fixture for the men's team as well. They featured against Indonesia earlier today and they won it 3-0. Will they be able to defeat Iran as well? We will find out soon.
8: जी हाँ, लेकिन जहाँ कुछ उम्मीदें अभी बरकरार हैं, ऐसे में आज एक मेडल का मुकाबला होना था जिस पर फिर चुका है पानी। मैं बात कर रही हूँ पुरुषों के 100 मीटर बैकस्ट्रोक में ऋषभ दास का जो नंबर था वो छठे पायदान पर रहे 54.77 के अंकों के साथ, और छठे पायदान पर रहकर पदक की दौड़ से बाहर होकर इन्होंने अपना सपना अधूरा ही छोड़ दिया। इसी के साथ अब बात करते हैं वुशु की, जिसमें अब से कुछ ही देर में खिलाड़ी अपने अपने मुकाबले में चुनौती पेश करेंगे। 52 किलोग्राम में अपर्णा सांडा इवेंट में ईरान की सौगंध सिकाई चेतन से भिड़ेंगी। वहीं पुरुषों में 75 किलोग्राम वर्ग में विक्रांत बालियान का मुकाबला ईरान के सोहेल मौसवी से होगा।
9: Yes, and we will keep you updated about these events as and when they happen. But in case you missed out on the earlier updates, let's give you a quick rundown of what has transpired in Japan today, starting with shooting.
8: शूटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले शूटिंग में आए हैं दो मेडल जो कि हमें मिले हैं 10 मीटर एयर राइफल विमेन्स टीम में। ये जीते हैं हमारी तिकड़ी ने, एला वनिल वला रिवन, सोनम मस्कर, विदर्शा विनोद ने। वहीं इसी के इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में एला वनिल ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया।
9: Right, and in the hockey stadium also, India were the dominant force. The men's team started off their campaign with a 13-1 win over Indonesia. Meanwhile, the women were a step ahead. They defeated Uzbekistan by 19-0.
8: क्रिकेट की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने अपना कदम रख लिया है। फाइनल में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है और अब वो गोल्ड मेडल के लिए श्रीलंका से भिड़ेगी।
9: यस, शेफाली वर्मा स्कोर्ड अ सेंचुरी टुडे, 100 नॉट आउट ऑफ 49 बॉल्स। शी वाज द स्टार, कंप्लीटेड 100 सिक्सेस इन T20I क्रिकेट। सो डिड स्मृति मानधना, हु हैज नाउ आल्सो बिकम द ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर इन विमेन्स T20I। सो टू मेडल्स कमिंग इन शूटिंग, वन इन द इंडिविजुअल इवेंट इन द विमेन्स 10 मीटर

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, मैं हूं शालिनी मित्तल और मेरे साथ आज की रेडियो डॉक्टर डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। ओम प्रकाश जी हैं, 83 इयर्स के हैं, दिल्ली में रहते हैं। गॉल ब्लैडर की पथरी क्या फैटी लिवर के कारण हो सकती है और कितनी बड़ी पथरी के बाद ऑपरेशन कराना चाहिए, ये इनके दो प्रश्न है। तो क्या फैटी लिवर पथरी,
3: देखिए सर, ये मैं बता सकती हूं कि पथरी को प्रमोट करने के बहुत सारे कारण होते हैं और फैटी लिवर उन कारणों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ होता है। अब कितनी बड़ी पथरी होनी चाहिए ये तो इस प्रोग्राम के स्कोप से बाहर है, तो वो मैं रेडियो पे नहीं बता सकती हूँ। आप किसी भी अपने निकटतम डॉक्टर के पास जाए और उनसे बात करें कि क्या करना है गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए।
2: जी जी, और भी बहुत सारे प्रश्न है व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो
4: हेलो
2: जी,
4: हाँ जी मैम नमस्कार।
2: नमस्कार,
4: हाँ जी मैम, मेरठ से बोल रही हूँ, मेरा नाम बबीता है।
2: जी बबीता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रश्न कर लें डॉक्टर साहब से।
4: अगर फैटी लिवर हो गया है तो मैम कौन सी एक्सरसाइज करें और क्या खाएं और क्या ना खाएं?
3: बबीता जी, अगर आप प्रोग्राम शुरू से सुन रहे हैं तो मैं हर क्वेश्चन के एंड में बता रही हूँ कि ऐसे तो बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या खाएं ना क्या ना खाएं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ताजा फल और सब्जियां ज्यादा खाएं और एक्सरसाइज जो आपको सूट करे, जो आप कर सकें। अगर मान लो अब आप गांव में रहती हैं, मैं आपको कह दूं आप जिम चले जाओ, आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है और मैं आपको कहूं नहीं आप दौड़ लगाओ जबकि आप दौड़ नहीं लगा सकते, तो जो आपको शरीर अपने समय और अपने घर की जो नॉर्मल दिनचर्या है उसके हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप एक कोई एक एक्सरसाइज उठा लो और रोज उसको एक घंटे करो। ठीक है, हाँ ऐसे कोई स्पेसिफिक तो वो हर टेलर मेड होती है चीजें ना, हर चीज एक आदमी के हिसाब से होती है, वो आप देखेंगे कि आपको क्या कन्वीनियंट हो रहा है और आप किस चीज में कंफर्टेबल है। रही बात खान पान की, तो तेल घी ये सारी चीजें, तले हुए पदार्थ कम करें, प्रोसेस फूड ना खाएं, कोशिश करें कि ताजा खाना बनाएं, एक समय बनाएं उसी समय बनाकर यूज करें और अपने खाने में फल सब्जियां बीज ड्राई फ्रूट्स ये सारी चीजें ज्यादा इन्वॉल्व करें और तली हुई चीजें और प्रोसेस फूड ना खाएं। ठीक है बबीता जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। और इसी तरह से कुछ खाने पीने पे काफी मैसेजेस हमारे आए हैं और एक वेट पे काफी लोग बात कर रहे हैं। इन्होंने लिखकर भेजा है पीलीभीत से तिलक ने, मेरी दीदी की उम्र 47 इयर्स है, उनका वेट 85 केजीज है और उनका पेट लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं उन्हें रोज एक्सरसाइज करने के लिए कहता हूं तो वो कहती है कि शरीर साथ नहीं दे रहा है और एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती हूं, तो क्या एक्सरसाइज वो कर सकते हैं और उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ये
3: जी देखिये, मैंने अभी दो गोल्डन नंबर आपको बताए थे, 102 सेंटीमीटर आदमी जो मेल है उन्हें याद रखना चाहिए और 88 सेंटीमीटर है वो औरतों को याद रखना चाहिए, ये उनका वेस्ट सर्कमफेरेंस। अगर इससे ज्यादा है तो आपके रिस्क जो है वो बढ़ रहे हैं, ये ओबिसिटी भी है और आपके फैटी लिवर डायबिटीज इन सबके रिस्क भी बढ़ जाते हैं, तो आपको उसी हिसाब से अपना वेस्ट मेजर कर लीजिए और अगर आपको ये इन नंबरों से ऊपर है तो फिर आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। हर तरह की एक्सरसाइज आप, जैसा कि मैं बता रही हूं बार बार कि एक आदमी के लिए कोई एक चीज, हर आदमी के लिए एक कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं होती कि हम कहते भाई आपको ये करना है तो करना है, आप अपने हिसाब से शुरू कीजिए, धीरे धीरे घूमना शुरू कीजिए या जो भी आपकी बॉडी को कन्वीनियंट लगता है शुरुआत उससे कीजिए।
2: जैसे मुझे लग रहा है कि वो बहुत विग्रस एक्सरसाइज के लिए उनको फोर्स कर रहे होंगे, वो नहीं,
3: ऐसा नहीं हो सकता ना कि अचानक आपको आज कह दिया जाए जाइए 10 किलोमीटर दौड़ लगाकर आइए, तो ऐसा नहीं होता, इट हैज टू बी ग्रेडेड। आज अगर आपने 15 मिनट किए तो अगले हफ्ते फिर आप 20 मिनट आइए, फिर ऐसे 25 फिर बढ़ाइए, धीरे धीरे शुरुआत, हर चीज नीचे से ऊपर ही जाती है ना, ऐसा नहीं होता कि अचानक एक दिन में सारी चीजें हो जाती हैं। और वेट लॉस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो इट गोज अ लॉन्ग वे, ये तो एक लाइफ, हम बात करें लाइफस्टाइल यानी जिंदगी भर आपको ये चेंजेस अपने में लाने हैं, ऐसा नहीं है कि हमने 2 महीने किया कि दवाई भाई 15 दिन का कोर्स दिया खत्म हो गया, ये हम कह रहे हैं बार बार लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, मतलब जो आपकी जीवन शैली है उसको आप बदलाव डालें, तो ये तो धीरे धीरे आएंगी, एक दिन में तो ये बदलाव नहीं आएगा क्योंकि ये जो फर्क पड़ा है ये इतने सालों में पड़ा है ना, आप एक दिन में थोड़ा मोटे हो गए, एक दिन में थोड़ा फैटी लिवर आ जाता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो वैसे ही बदलाव में भी नेचर में खान पान में वो लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे बदलाव आएगा, एक एकदम तो कभी भी किसी में भी बदलाव लाना मुश्किल होता है।
2: जी बिल्कुल सही बात है, और बहुत सारे हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। वी हैव टू मेक चेंजेस इन आर लाइफ स्टाइल, है ना। तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और लौट के आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर के बारे में और साथ ही बात कर रहे हैं खाने में होने वाली मिलावट के बारे में। हमारे साथ हमारी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, मैं हूं शालिनी मित्तल। सुनते रहिए कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और खाने में होने वाली मिलावट, इसके होने वाले नुकसान पर। और हमारे एक श्रोता हैं जो फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार
1: मैम, मेरा पेट काफी बढ़ रहा है दिन पे दिन, 2-3 महीने से तो काफी बढ़ गया मैम। उठने बैठने में तो काफी दिक्कत हो रही थी, तो कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में जरूर बताएं मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।
0: तो पेट बढ़ रहा है तो मैम बहुत देर से बोल रही हैं कि आपके खाने पीने का, आपकी लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें आप गौर करें।
1: जी मैम
0: जी, एक्सरसाइज करें, ये तो मैं ही बता दिया, मैंने ही बता दिया क्योंकि मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठी हुई हूँ। 45 मिनट्स हो गए इस कार्यक्रम को करते हुए, तो इतना तो समझ में आ गया। आपने अभी ट्यून किया है क्या कार्यक्रम?
1: यस मैम।
0: जी जी जी जी, तो आप ऐसा है, आप हमारे साथ रहें, हम कार्यक्रम के अंत में एक बार पुनः बात करेंगे मैडम से कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और उसमें मैम काफी सारी चीजें बताएंगी हमें कि किस तरह से हम फैटी लिवर को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यशपाल हमें लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से कि नमस्कार कर रहे हैं, साथ ही लिख रहे हैं माय क्वेश्चन इज कि आई हैव बॉर्डर लाइन हाई LDL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड SGPTDO, आई नीड मेडिकेशन। तो क्या ये इससे कुछ जुड़ता है जो आप
2: देखिए यशपाल जी, आपके आसपास या किसी ने आपको ये टेस्ट करवाने को बोला होगा ना, या तो ये ब्लड टेस्ट होते हैं, तो जिन भी डॉक्टर ने आपको ये बोला है करवाने के लिए, एक बार आप उनसे जाएं और संपर्क करें, वो आपको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे और जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट होते हैं फैटी लिवर के वो करवाएंगे इन ब्लड टेस्ट के साथ, और फिर देखेंगे कि कितना रिस्क है, उस हिसाब से वो आपको बता देंगे कि इनिशियल आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है या कोई दवाइयां लेने की जरूरत है।
0: जी, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर से तरुण लिख रहे हैं, मेरी उम्र 43 इयर्स है और मेरा वजन 63 kg है, मुझे मोटे होने से डर लगता है, इसलिए मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, पर लोग मुझे कहते हैं कि उम्र के हिसाब से मैं थोड़ा पतला हूं, तो क्या मेरा वजन उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है?
2: देखिए ये हमें अपनी बॉडी इमेज से ना कभी हम खुश नहीं होते, जो मोटा होता है उसको लगता है कि हमें ज्यादा मोटे हैं, जो पतले होते हैं उन्हें लगता है वो हम पतले हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आप जो लाइफस्टाइल जीवन शैली जो आप कर रहे हैं वो अच्छा है और उसको आप मेंटेन करके रखें, उससे आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। इम्पोर्टेंट बात है हेल्दी होना, और आइडियल बॉडी वेट आप अपना हाइट और वेट के हिसाब से चेक कर लें कि क्या होता है। लोग अब लोगों के हिसाब से तो जीना बड़ा मुश्किल होता है ना। ये
0: अगर आपका वेट वो आप जैसा मैडम ने बताया है और सरकमफेरेंस
2: जी, जैसा कि वेट सरकमफेरेंस में कई बार बता चुकी, 102 आदमियों के लिए और 88 सेंटीमीटर औरतों के लिए, तो आप ध्यान रखें कि आप इन दोनों नंबरों से नीचे ही रहें तो वो बेहतर है आपके लिए।
0: जी, संदीप कुमार लिख रहे हैं मुजफ्फरनगर बिहार से, मेरी उम्र 34 ईयर्स है, मेरा पिछले कई वर्षों से फैटी लिवर ग्रेड 1 है, मैं नियमित एक्सरसाइज, रोज स्विमिंग करता हूं, खाने पीने में फल सब्जियां नियमित रूप से खाता हूं, प्रोसेस्ड फूड बहुत कम खाता हूं, क्या ये रिवर्सिबल है? इसे रिवर्स होने में कितना समय लगता है, मुझे और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: संदीप जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको जो जो चीजें हम बता रहे हैं इस प्रोग्राम में वो आप सब फॉलो कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल डेफिनेटली है, और आप लगे रहिए इन सब चीजों के साथ और इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। ये नहीं है कि भैया मैं 6 महीने करके फिर छोड़ दूंगा तो फिर वापस दिक्कत हो जाएगी, तो आपकी जो लाइफस्टाइल चल रही है उसको आप मेंटेन करें तो आपका जो लिवर है वो भी हेल्दी रहेगा।
0: जी, और मोहम्मद इब्राहिम लिख रहे हैं श्रीनगर से कि माय रिक्वेस्ट इज रिगार्डिंग यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फ्रूट्स। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कार्यक्रम में कि इस तरह से पेस्टिसाइड्स भी यूज होते हैं और उनको फ्रूट्स एंड देयर रीपिंग बिफोर देयर नॉर्मल टाइम, उनको पहले ही तोड़कर फिर उनको प्राकृतिक रूप से पकाया जाता है, कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, तो इनका प्रश्न इसी से संबंधित है कि क्या ये भी हार्मफुल हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए?
2: जी, ये हार्मफुल है, इसलिए कहा जाए हमेशा कहा जाता है कि मौसमी फल और सब्जियां खाइए, कि जो जिस मौसम की फल और सब्जी अगर हम खाएंगे तो फिर किसान को भी इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे ना चीजें पकाने के लिए, कि भाई जो गर्मी की चीजें हैं, जो सर्दी की चीजें हैं वो हम चाहते हैं हम गर्मी में खा लें, गलती तो हमारी ही है। हाँ हाँ, तो इसीलिए हमें जो सीजनल फ्रूट होता है वो उसी समय उन्हीं को खाना चाहिए, और डेफिनेटली पेस्टिसाइड्स और फूड एडल्ट्रेशन तो नुकसानदायक है ही है, तो उसका तो फिर अलग विषय में, इस पर तो अलग विषय में बात होनी चाहिए। जी, जी, पर जी हाँ, इनके नुकसान है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जिस मौसम का फल हो वो खाएं, क्योंकि वो उसी मौसम में प्राकृतिक रूप से ही बड़ा हुआ होगा और हमें नुकसान भी नहीं दिया होगा उसमें, और उसमें एडल्ट्रेशन की मात्रा कम से कम होगी।
0: जी, हमें ये प्रश्न किया है लिखने वाले का नाम मुझे

0: नहीं इधर मिल रहा है। इन्होंने लिखा है कि रात को खाना मैक्सिमम कितने बजे तक खा लेना चाहिए, खाने के तुरंत बाद सो जाना कितना सही है।
1: रात को खाना 7 से 7:30, अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 7 से 7:30 के बीच में अपना रात का खाना खा लें, और उसके खाने के एकदम बाद बैठ के 2 घंटे टीवी ना देखें। कोशिश करें कि आप आधा पौना घंटा टहलें, उसके बाद किसी तरह का हल्का फुल्का व्यायाम करें, और खाने के

0: जाए सोने से पहले पहले।
1: जी। और ये दूसरा प्रश्न है भेजने वाले सुशील ठाकुर, ये लिख रहे हैं कितना खाना चाहिए रात में कितना खाना
0: ये तो अब आप डिसाइड करेंगे कि आप कितना और क्या खाना चाहते हैं। वैसे रात का खाना हल्का होना चाहिए, सबसे भारी नहीं होना चाहिए
1: जी।
0: सुबह का नाश्ता सबसे हैवी मील होना चाहिए, फिर जो लंच है वो थोड़ा उससे हल्का, और रात का खाना सबसे हल्का जिससे वो जल्दी पच जाए।
1: अच्छा, एक प्रश्न मेरा है डॉक्टर साहब कि अगर किसी को पता लग भी जाता है, जैसा आप कह रही हैं कि फैटी लिवर बहुत कॉमन है, घबराने की जरूरत नहीं है कोई, पर कोई इतना रिलैक्स हो जाए कि वो फिर उसके आगे कुछ चेंजेस करे भी नहीं और उसको लगे कि कुछ ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल है, तो क्या उसके आगे पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो सकते हैं?
0: जैसे कि मैंने बताया, जो फैटी लिवर है वो एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज है, जिसका जो सबसे नीचे वाली सीढ़ी है अगर हम बात करें तो वो है फैटी लिवर। उसके बाद जब फैट जो है वो ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो स्टियो हेपेटाइटिस शुरू हो जाता है, यानी एक तरह की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है लिवर के सेल्स में, जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टियो हेपेटाइटिस। और अगर इस समय भी हम ध्यान ना दें, लाइफस्टाइल ना मॉडिफाई करें, और साथ में हमें कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, डायबिटीज है, ऐसी बीमार मोटापा है, और हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आगे जाके चांसेस हैं कि हमें फैटी लिवर डिसीज हो सकती है आगे जाके, जिसमें हमें सीएलडी जो सिरोसिस ऑफ लिवर है वो हो सकता है, और सिरोसिस ऑफ लिवर के सारी कॉम्प्लिकेशंस जैसे पेट में पानी भरना, साइटिस होना, गफलत में आ जाना, हेपेटिक एनकेफलोपैथी होना, और आगे चल के लिवर का जो कैंसर है वो भी हो सकता है। तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज पे, नॉन कम्युनिकेबल जो एक डिसीज होती है, इस पे प्रोग्राम शुरू किया है, अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है कि के लेवल से लेके और टर्शरी केयर हॉस्पिटल तक सब जो हेल्थ केयर वर्कर उस लेवल पे होते हैं उन्हें ट्रेन किया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए कि कैसे फैटी लिवर डायग्नोस करना है, कैसे हमें एक स्टेज को दूसरी स्टेज में जाने से रोकना है, और जब तक चीजें रिवर्सिबल हैं मतलब वापस नॉर्मल हो सकती हैं, सब लोगों को मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है, और ये जागरूकता फैलानी है कि भाई आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए जिससे ये फर्क पड़े और रिवर्सिबल होकर आपका लिवर जो है वो नॉर्मल हो जाए
1: जी। और कोई भी बीमारी से बचना सबसे अच्छा होता है,
0: प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।
1: तो हम कार्यक्रम समाप्त करें, अभी समय है हमारे पास थोड़ा सा, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप भेज सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी क्योंकि अभी एक श्रोता हमारे साथ जो फोन लाइन पर जुड़े थे तो वो भी कह रहे थे, कुछ मैसेजेस भी आए थे, तो मैंने उनको यही कहा कि ये बात हम पुनः आखिर में करेंगे जिससे हमारे जो श्रोता बाद में भी जुड़े उन्हें भी लाभ मिल सके कि प्रिवेंशन क्या है इसका, और अगर प्रिवेंशन के लिए हम वर्क करना चाहें, चाहे जिसको नहीं हुआ है या जिसको ग्रेड वन है या स्टार्टिंग है, ये सबके लिए बताएं कि एक जो टिप्स जो है आपकी तरफ से आज के।
0: देखिए, एक तो जनरल मेजर्स हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए, कि हमें जनरल मेजर है जो आपको फैटी लिवर है, आपको नैश है, आपको नैफल्ड है, या आप जनरल है, मैं आप इसमें सब आ गए, ये कुछ चीजें हैं जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए। वो है कि हमें अल्कोहल नहीं पीना चाहिए सबसे पहले, जैसे कि हमने बात की थी नशे के ऊपर, एक क्वेश्चन भी आया था
1: जी।
0: हमें किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, पीयर प्रेशर में आके सोशल, उसके लिए आजकल बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से अल्कोहल सभी पीते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हैवी अल्कोहल यूज है, एक तो आपका लिवर पहले से ही डैमेज है, साथ में अगर आप ऊपर से अल्कोहल और स्मोकिंग करोगे तो वो और डैमेज हो जाएगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। फिर बहुत सारे हेपेटाइटिस के वायरस हैं जो हमारे सोसाइटी में, हमारे यहाँ प्रचलन है, और कुछ लोगों, कुछ के तो प्रिवेंशन के लिए इम्यूनाइजेशन है, तो हमें सबको अपने आप को इम्यूनाइजेशन जो इंजेक्शन है वो लगवा लेने चाहिए, जिससे एटलीस्ट हमारे लिवर पे दूसरा जो अटैक है किसी और चीज का वो ना हो फैटी लिवर के साथ।
1: इंजेक्शन
0: हेपेटाइटिस बी के, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है जो हेपेटाइटिस बी बड़ी प्रिवेंटेबल है, वो हमें करना चाहिए सब तरह के। और फिर आती है डाइट रिकमेंडेशन। डाइट जैसा कि मैंने बताया है कि हमें एक बैलेंस डाइट खानी है, ये नहीं है कि सिर्फ हम कार्ब्स नहीं खा रहे हैं, हम हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं। जिम जो लोग जाते हैं वो बड़ा प्रचलन है कि बहुत सारे हमने ये सप्लीमेंट्स ले लिए, हमने हाई प्रोटीन, हम बस प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हैं, बाकी चीजें हम नहीं खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, फैट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, और गुड फैट्स जो है वो हमें खाने चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, दालें जो होती है वो, और जो संतुलित भोजन जो होते हैं ना, एक थाली दिखाई जाती है हमेशा जिसमें सारी चीजें हैं,
1: कलर्स भी,
0: हाँ कलर्स पे, कलरफुल फ्रूट्स, हमें 2 से 3 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अपने खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। हमेशा हेल्दी फैट्स खाने चाहिए, और जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, जो रेड मीट में होता है, जो फुल फैट जो डेरी होती है ना वो उनमें होता है, और फ्राइड फूड

0: जो होते हैं प्रोसेस फूड होते हैं वो हमें नहीं लेने चाहिए। फिर ट्रांस फैट जो होते हैं, जो हम प्रोसेस फूड की बार बार बातें कर रहे हैं, वो सब हमें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। और पोर्शन कंट्रोल पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये
1: अच्छा
0: नहीं कि हम इतनी बड़ी थाली भर के बैठ जाएं। हमें अपने पोर्शन को धीरे धीरे कम करना चाहिए और कैलोरी काउंट करके वो खानी चाहिए कि भाई इतनी कैलोरी हम खाएंगे, इतना कम पोर्शन, धीरे धीरे हमें पोर्शन कम कर देना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। साथ में फाइबर जो है उस पर बहुत स्ट्रेस होता है, फाइबर इंटेक हमें बढ़ा देना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। फिर एक्सरसाइज पे हम बात कर ही चुके, जो भी आपको सूट करे अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, वो आपको एक्सरसाइज को भी अपनी लाइफस्टाइल का एक परमानेंट हिस्सा बनाना ही बनाना है। क्योंकि जब वेट अगर हमारा लॉस होगा तो हमारा जो फैटी लिवर है या नैश है या हम लिवर डिसीज तक पहुंचने वाले हैं वो सब कंट्रोल हो, और साथ में इनके एसोसिएटेड जो भी बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हाइपरटेंशन, वो भी कंट्रोल होंगी। एक्सरसाइज से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो एक्सरसाइज से आपको फायदा होगा। और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, आपको रेगुलर ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये आपको रेगुलर अपनी जिंदगी का, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है इनको रोज।
1: जी, तो बहुत सारी बातें आज डॉक्टर साहब ने हमें बताई फैटी लिवर से संबंधित, कैसे इससे बचा जा सकता है, अगर हो जाता है तो भी आपने बताया इसको रिवर्स किया जा सकता है, और कैसे हमें लाइफस्टाइल ये जो है चेंजेस करने चाहिए,
0: हाँ,
1: है ना।
0: एटलीस्ट 1 घंटा एक्सरसाइज, विग्रस एक्टिविटी जिसे कहते हैं, वो होनी चाहिए। शुरुआत आप धीरे धीरे कीजिए, लेकिन आप 1 से सवा घंटे का एक्सरसाइज आप रोज रखिए, जिसमें आपका सांस फूले बात करते हुए ना,
1: अच्छा।
0: हाँ, वो टेस्ट होता है कि आप एक्सरसाइज करें तो आप किसी से बात ना कर पाए, आपको इतनी एक्टिविटी हो रही है, इस तरह की एक्सरसाइज। ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे चल रहे हैं और
1: जी जी
0: पसीना भी नहीं आ रहा और सांस भी नहीं चढ़
1: अच्छा।
0: रहे हैं,
1: मतलब
0: हाँ,
1: विग्रस होनी
0: विग्रस
1: चाहिए।
0: एक्टिविटी होनी चाहिए,
1: जी
0: फिजिकल
1: जी
0: एक्टिविटी।
1: तो हमारे आज बहुत सारे मैसेज आए हैं जो इस बात को ये दर्शा रहे हैं कि हमारे श्रोता काफी वेट
0: हाँ
1: कॉन्शियस हैं,
0: जी जी
1: बता रहे हैं कि वो कर रहे हैं और कुछ
0: जी
1: लोग कोशिश कर रहे हैं।
0: जी
1: तो हमें लगता है आज का जो ये कार्यक्रम है उसको सुनकर आपको काफी फायदा हुआ होगा, लाभ मिला होगा, और कुछ जो जिज्ञासाएं थी मन में, कुछ शंकाएं थी, कुछ समस्याएं जो आपकी थी,
0: एटलीस्ट अवेयरनेस है,
1: जी।
0: वेन लोग इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एटलीस्ट वो अवेयर है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, कि आपको पता है कि कहीं
1: जी,
0: प्रॉब्लम है।
1: शुरुआत तो वहीं से
0: शुरुआत
1: होती
0: तो
1: है,
0: वहीं से होती है कि यू नो कि देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर।
1: बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला है डॉक्टर साहब, और इतनी सारी जो शंकाएं हमारे श्रोताओं के मन में थी उसको आज दूर करने में आपने मदद की है। तो हमारे साथ आज रेडियो डॉक्टर के रूप में डॉक्टर वैशाली भारद्वाज रही, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डॉक्टर RML हॉस्पिटल। हमारी आज बातचीत काफी गहन हुई और हमने
0: जी
1: काफी कुछ सीखा आपसे, पता चला हमें फैटी लिवर को हमने जाना, साथ ही साथ फूड सेफ्टी, फूड एडल्ट्रेशन के होने वाले नुकसान क्यों होता है और कैसे हमें अपने खाने में बदलाव करना चाहिए, इसके बारे में भी हमें काफी कुछ जानकारी मिली। तो आपको अगर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं, सुझाव भी लिख सकते हैं, हमें मेल लिखिए healthairdelhi@gmail.com पर और बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। आप रोज जुड़ते हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के साथ FM रेनबो 102.6 पर, और इस कार्यक्रम में आपको हम प्रतिदिन कोई ना कोई नई जानकारी देते हैं स्वास्थ्य से संबंधित। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आगे भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और अब स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: थैंक यू।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा किया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाण जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पत्रकार पायल मेहता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविरों का आयोजन हो रहा है। इसमें मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने जापान के आइची नागोवा में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता है। एवावेलिन वलारियन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उनको बधाई दी है। डॉक्टर सुचिका तारियाल ने इतिहास रचते हुए आइची नागोवा खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी मुख्य समाचार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम लम्हे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटल हेल्थ। हेल्थी फूड्स मानसिक सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं, जाने मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट फूड। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका असर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। खाने का असर शारीरिक के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य और हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन एक दूसरे से संबंधित होता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भोजन खाने की जरूरत होती है। संतुलित भोजन हमारे शरीर के विकास, रखरखाव और इम्यून सिस्टम के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना ध्यान देना चाहिए। आज के समय में हमारे सामने कई ऐसे लोग आते हैं जो फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन में जरूरी समझते हैं। वे स्वास्थ्य शरीर को बनाए रखने के लिए हर रोज व्यायाम करते हैं, लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंधी का उनके पता नहीं। लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध का उनको पता नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य को शामिल किए बिना शरीर की फिटनेस नहीं हो सकती है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी फूड्स और डाइट मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़े होते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होता है। जब हम अच्छा खाते हैं तो उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं जो हमारे शरीर को रोग से लड़ने में मदद करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में फाइबर, मिनरल्स, अल्फा लिनोलिक एसिड और विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन के भी होता है। विटामिन के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये एसिड्स हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। फ्रूट जैसे बेरीज और जामुनों का सेवन हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद हो सकता है। बेरीज और जामुन दिमाग की काम करने की शक्ति को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। शोध के मुताबिक जो लोग हर रोज फ्रूट खाते हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बहुत से फलों में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट से हमारा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। अखरोट यानी वॉलनट में फैटी फिश की तरह ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। बादाम में विटामिन ई भी पाया जाता है जो हमारी याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। मानसिक और भावनात्मक हेल्थ की बात करें तो भोजन सबसे अधिक अंधे की पहलुओं में से एक है। लेकिन सच्चाई ये है कि हेल्थी डाइट के बिना आप अपने शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख सकते हैं। भोजन शरीर को विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन आदि जैसे हेल्थी पोषक तत्व प्रदान करता है जो ठीक से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। कई शोध से ये बात साबित हुई है कि एक पौष्टिक आहार से कई तरीकों से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। फ्रूट्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स तनाव और शरीर की सूजन से लड़ने वाले सुपर पोषक तत्व है। ये ताजे और कलरफुल फ्रूट

फ्रूट्स और सब्जियों में पाई जाती है, जैसे कि जामुन, स्ट्रॉबेरीज, नट्स एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, डू यू नो गट इज अ सेकेंड ब्रेन। पेट को बॉडी के दूसरा ब्रेन के रूप में जाना जाता है। इसका नेटवर्क और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एक हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करता है। मजबूत इम्यूनिटी के निर्माण और ब्रेन को बॉडी की जरूरत का संकेत भोजन के रूप में काम करने के लिए संकेत भेजता है। प्रोबायोटिक्स जैसे दही, केफिर, कम्बुचा, किमची आदि अच्छे बैक्टीरिया है जो डाइजेशन, आंतों को साफ करना और पेट को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। जब आपकी आंत स्वस्थ होती है तो ब्रेन को विश्राम, निराश और खुश होने के संकेत मिलते हैं। यह बॉडी की सूजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत भी करता है। एक्टिव और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए भोजन मानसिक हेल्थ को बढ़ाए देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। भोजन में पोषण से ब्रेन को जरूरी ईंधन मिलता है और प्रभावी रूप से और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ब्रेन के अनुकूल डाइट लें। दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी को ये जरूर कहा होगा, दिमाग खराब हो गया है क्या? अक्सर लोग ऐसी बात को बहुत हल्के में कह देते हैं, लेकिन ये महज एक बात नहीं, आप जाने अनजाने में मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। कोविड के बाद से ये मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दे को लेकर थोड़ी गंभीरता बढ़ी है, लेकिन अभी भी इन चीजों की कई लोग ध्यान देना जरूरी नहीं समझते हैं। ऐसे में हम आपके लिए दिमाग को हेल्थी और बीमारियों से दूर रखने के उपाय बता रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य में आपका भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होते हैं। ये प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। इसके अलावा ये भी निर्धारित करने में मदद करता है कि एक तनाव को कैसे संभालते हैं, दूसरे को प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करते हैं और चुनाव करते हैं। बचपन और किशोरावस्था से वयस्कता तक जीवन का हर चरण में मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, विटामिन बी बहुत जरूरी है। ये 8 अलग अलग पोषक तत्वों का एक समूह है। विशेष रूप से B6, B9, फोलिक एसिड और B12 शामिल है। ये तंत्रिका तंत्रों को समुचित कार्य के लिए आवश्यक है और चिंता को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। पिछले एक दशक के डेटा पर ध्यान दिया जाए तो इससे पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर मानसिक समस्याओं का जोखिम काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चे और युवाओं में भी इसका खतरा बढ़ रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ का कहना है कि महामारी के बाद से जिस तरह से लोगों में चिंता, अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम देखा जा रहा है, इसको लेकर सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर का कल्पना नहीं की जा सकता है। तो दोस्तों, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे चेतन के साथ। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

वेलकम वेलकम बैक, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और बिल्कुल आप ही का अपना पसंदीदा प्रोग्राम, बिल्कुल जो आपका फेवरेट नॉलेज गेम शो यानी कि रेनबो जीनियस, शुरुआत हो चुकी है उसकी। और बिल्कुल यहां पर आपको सवाल पूछे जाएंगे, उनका आपको जवाब देना है। और अगर आप 5 सवालों के सही जवाब दे देते हैं लगातार, तो आप बन जाएंगे हमारे रेनबो जीनियस। बिल्कुल, तो बिल्कुल यहाँ पर क्विज आपकी जनरल नॉलेज भी टेस्ट करेगी, टेस्ट करेगी। और बिल्कुल आपको बहुत सारे अमेजिंग गाने भी यहाँ पर सुनने को मिलेंगे। फिलहाल इस शो की शुरुआत करते हैं, और हमारे नंबर नोट कर लीजिए 2342-1080 एंड 2342-1084। और अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देता हूँ, 2342-1080 एंड 2342-1084। बिल्कुल आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं रेनबो जीनियस, और आशुतोष आपके साथ कनेक्टेड है। स्टे ट्यून्ड, और आपके कॉल्स मैं कुछ ही पलों में लेने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए हमारे साथ।

0: क्या बात है जी, क्या बात है। वेलकम एक बार फिर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिल्कुल। और हमारे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर।
1: जी धन्यवाद, मैं उमेश बात कर रहा हूँ हरियाणा से।
0: हरियाणा से उमेश जी बात कर रहे हैं इस वक्त। और क्या करते हैं उमेश जी आप?
1: मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ सर।
0: ओके, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल नॉलेज आपकी हम टेस्ट करने वाले हैं, और बिल्कुल आपको रेनबो जीनियस हम चाहते हैं कि आप बन जाएं। तो शुरू करें क्यूज के, आपको जो नियम है वो तो पता ही होंगे आपको।
1: जी
0: जी जी। तो हम आपके लिए पहला सवाल लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, और आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है।
1: पैसिफिक ओशन।
0: बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, बहुत ही शानदार शुरुआत किया आपने। और आपको बताना है सेकंड आपके लिए जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं यहाँ पर, कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए सबसे प्रमुख योगदान किसका होता है?
1: हीमोग्लोबिन का होता है।
0: हीमोग्लोबिन, बिल्कुल ठीक जवाब आपने दिया है। और बिल्कुल दो सवालों के आप सही जवाब दे चुके हैं। और तीसरा सवाल जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम स्पोर्ट्स की दुनिया से, कि फ्लाइंग सिख के नाम से भारतीय एथलीट हैं, वो किनको हम कहते हैं?
1: मिल्खा सिंह
0: जी, बिल्कुल सही जवाब। और तीसरा भी बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। और चौथा सवाल हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल पदार्थ में रहती है?
1: एक तो पारा भी है, पारा पीबी।
0: बिल्कुल पारा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, मरकरी इसको कहते हैं। और ये चौथा सवाल आपने बिल्कुल सही दिया है इसका जवाब, बहुत ही शानदार आप खेल रहे हैं। और अंतिम सवाल, अगर इस सवाल का आपने जवाब दे दिया तो आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस, और बिल्कुल बहुत ही शानदार शुरुआत होगी आज के इस कार्यक्रम की हमारी। तो आपको बताना है, बिल्कुल तैयार हैं आप उसके लिए?
1: जी कोशिश करते हैं।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। सो आपको बताना है कि जो कि भारत का सबसे दक्षिणी ध्रुव है, जो बिंदु है, उसको क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं?
1: इंदिरा पॉइंट।
0: बिल्कुल सही पहचाना आपने, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने ये खेल खेला है। और आज हमारे आप पहले रेनबो जीनियस बन गए आज हमारे इस प्रोग्राम के। सो आपको बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस। और बिल्कुल हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारी वो कर सकते हैं इस शो के लिए, अगर वो सुनना अगर हमारे यहाँ पर रेनबो जीनियस बनना चाहते हैं?
1: वो मेहनत करें सर, जैसे जनरल नॉलेज हमारा ये क्विज कॉन्टेस्ट है, तो इसके लिए वो जितनी नॉलेज जहाँ से भी मिले वहीं से ले लो, चाहे वो रेडियो हो, अखबार।
0: तो आप कैसे तैयारी करते हैं, आप ये जो अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं किस तरीके से बढ़ाते हैं, कौन से साधन होते हैं आपके?
1: सर मैं ये बताऊँ तो मैं 8 साल पहले तैयारी की थी, वो काम आई।
0: क्या बात है, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उमेश जी आपको बहुत सारी मुबारकबाद आज के लिए, आप हमारे बने हैं रेनबो जीनियस, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और आप भी बन सकते हैं रेनबो जीनियस, बहुत ही आसान है। अगर आपको 5 सवालों के आपने सही जवाब दिए जिस तरीके से कि उमेश जी ने दिए हैं, तो आप भी बन सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम के रेनबो जीनियस। फिलहाल ये वाला ट्रैक निकल रहा है खास आपके लिए, स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6। और फिलहाल वक्त हो चुका है 4:22।

0: यस विक्रम, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेनबो जीनियस और हमारे अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, जी स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं प्लीज हमारे सुनने वालों को बताएंगे प्लीज।
1: जी मेरा नाम आकाश है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
0: आकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी
0: सो आकाश जी, जी जी आप क्या करते हैं आकाश जी आप?
1: जी मैं बेसिकली टीचर हूँ।
0: ओके ओके।
1: और कंपटीशन की भी तैयारी करती हूँ साथ में।
0: बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल तैयार हैं आज इस प्रोग्राम के लिए हमारे।
1: हाँ जी सर।
0: जी जी, तो पहला सवाल आपके लिए आ रहा है कि पयोली एक्सप्रेस के नाम से भारत की किस एथलीट को हम जानते हैं?
1: एक मिनट सर, एक मिनट रिपीट कीजिए।
0: जी जी, पयोली एक्सप्रेस के नाम से हम भारत के किस एथलीट को जानते हैं? उनका निक नेम ये था, उनको इस नाम से भी पुकारा जाता था।
1: पीटी उषा को कहा जाता है।
0: पीटी उषा जी, बिल्कुल सही जवाब ने दिया। और दूसरा आपके लिए सवाल आ रहा है और ये है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था?
1: पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था भारत का।
0: बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। दो सवालों के आप सही जवाब दे चुके हैं। पृथ्वी में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस अभी फिलहाल प्रेजेंट होती है?
1: नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अधिक पाई जाती है।
0: बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। तीन सवालों के आप सही जवाब दे चुके हैं। और चौथा सवाल आपके लिए आ रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ये आपको बताना है। चौथा सवाल बहुत सही, बहुत सही। आज हमारे दोनों ही कॉलर्स बहुत ही शानदार मिले हैं इस वक्त हमें। और आपको बताना है कि भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है, आपको इसका नाम बताना है।
1: आदित्य एल1।
0: आदित्य एल1
1: पर जाके
0: बहुत शानदार,
1: अधिकतम जो वो है।
0: जी जी,
1: जहाँ तक पहुँचा जा सकता है,
0: जहाँ तक पहुँचा जा। बहुत शानदार, बहुत शानदार आप खेले हैं और बिल्कुल आपने सारे ही सवालों के सही जवाब दिए और आप भी बन गए हमारे रेनबो जीनियस। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, और ऐसे ही बस लगातार आगे बढ़ते चले जाइए और कनेक्ट रहिए रेनबो के साथ लगातार।
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा नंबर है 2342-1080 एंड 2342-1084, और इस नंबर पे हमें कॉल कीजिए और कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ। आप बन सकते हैं रेनबो जीनियस अगर आप हमारे सवालों के सही जवाब दे देते हैं। स्टे ट्यून्ड, और फिलहाल कुछ ही पलों में आप सुनेंगे एशियन गेम्स की लाइव अपडेट्स। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट यहाँ पर आपके लिए वेट कर रहा है। स्टे ट्यून्ड, आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए। फिलहाल आशुतोष आपके साथ है।

0: बिल्कुल, और आप भी ऐसे ही झूमते रहिए क्योंकि अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का, तो सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। और अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: जापान के आईची नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कविता।
3: एंड आई एम दर्पंती किया।
2: 45 देशों के करीब 17,000 एथलीट 43 खेलों में 469 मेडल्स के लिए मशक्कत कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि भारत के अब तक 2 सिल्वर मेडल आ चुके हैं और इसके अलावा अभी 2 पदक सुनिश्चित हो गए हैं। पहला है MMA और दूसरा है महिला क्रिकेट में।
3: Right, but currently we will take you to what is the Sky Hall in Nagoya, where the table tennis competition is happening. And after getting off to a winning start and winning their respective first fixtures, both the Indian men's team and the Indian women's team have been given a run for their money in their second fixture. In their second fixture, after winning against Indonesia earlier in the morning, the women's team ran into Singapore, a team that really pushed them to the edge in a seesaw battle that went down to the wire. Eventually, India came out on top. However, the men's team is currently huffing and puffing against Iran. Against Iran, we started off with a battle between Manush Shah and Naushad Alamian, who defeated the Indian paddler. After that, a 16-year-old Faraji of Iran defeated India's Manav Thakkar. And currently, Harmeet Desai is in the third match, is playing against Naushad Alamian and has come to the brink of losing the first set. The score is currently 11-10, and just as I say that, he loses another point and eventually loses the set as well. So India have already lost 2 matches and they have lost this set as well, which means in this particular fixture they are struggling and they need to win almost everything from here on in order to win in this fixture.
2: बात करते हैं वुशु की, जहां पर अभी से कुछ ही देर पहले मुकाबला हुआ महिलाओं का एशियन गेम्स 2026 में। भारत की डेब्यूटेंट वुशु खिलाड़ी अपर्णा को महिला सांडा 52 किलोग्राम के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में ईरान की सोगन सिकाई ए चेतान के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ अपर्णा का एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। हालांकि एशियाई स्तर के इतने बड़े मंच पर उनका पदार्पण अपने आप में उनके करियर का एक महत्वपूर्ण अनुभव है। आज नतीजा भले ही अपर्णा के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन ये सफर अभी शुरू हुआ है और आने वाले मुकाबलों में यही अनुभव उनके काम आएगा। वही बात करते हैं अगले मुकाबले की जो अभी होना है। बात करते हैं विक्रांत बालियान की, जिनका मुकाबला अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है। और अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएं तो ये सेना में कार्यरत हैं, अपनी ड्यूटी के साथ साथ देश के लिए रिंग में भी कड़ा मुकाबला लड़ते हैं। सीनियर्स को देखकर इन्होंने अपना सफर शुरू किया था और अब उसी की प्रेरणा लेकर इन्होंने इस खेल को चुना और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं अगर सोहेल की बात करें तो सोहेल भी इनसे कम नहीं है, इनके ओपोनेंट जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, तो ये मुकाबला कड़ा हो सकता है।
3: Right, Sohail comes from Iran, and Iran is giving India a run for their money on the table tennis table. What would be the outcome in Wushu? We will find out together. However, in case you missed out on the earlier updates, let's give you a quick highlight of what has transpired for India today. First of all, starting with shooting, where India won 2 silver medals. The first one came in the team event of the 10-meter women's air rifle, the trio of Vidarsa Vinod, Sonam Maskar and Ella Vanil won the silver medal, and then Ella Vanil went on to win the silver medal in the individual event as well.
2: इसके बाद बात करते हैं MMA की, जिसमें सुचिका तारियाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है और अपने लिए कम से कम एक मेडल सुनिश्चित कर चुकी हैं।
3: Similarly, the cricket team, the women's cricket team has also secured a medal riding on Shefali Verma's swashbuckling 100. India defeated Bangladesh in the semi-final by 114 runs, which means now they will compete with Sri Lanka in the finale for the gold medal.
2: Hockey में भी भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने अपने अपने मुकाबले जीते। इंडिया में महिलाओं में जो मुकाबला हुआ वो भारतीय टीम ने 19-0 से जीत लिया उज्बेकिस्तान के साथ।

0: वहीं पुरुषों ने 13-1 से इंडोनेशिया से अपना मुकाबला जीता।
1: मीनवाइल इन बैडमिंटन पीवी सिंधु, तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा गेव गुड परफॉर्मेंसेस इन द वुमेन्स टीम इवेंट एंड इंडिया वन देयर ओपनिंग फिक्स्चर 3-0 एंड एंटर द क्वार्टर फाइनल्स।
0: चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं मेडल टैली पर। भारतीय पोजीशन इस वक्त काबिज है। हम 10वें पायदान पर 2 सिल्वर मेडल के साथ। पहले नंबर पे है चाइना, जिन्होंने जीत लिए हैं 11 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। इसी के साथ जापान है दूसरे पायदान पर, जिन्होंने जीते हैं 6 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल।
1: स्टिल अर्ली डेज, वी होप दैट द पिक्चर वुड चेंज एंड इट वुड बी रोजियर फॉर इंडिया इन द कमिंग डेज। हाउएवर, वी विल कीप यू अपडेटेड। वी विल मीट यू अगेन एट 6:30 PM फॉर आवर नेक्स्ट अपडेट। फॉर नाउ कीप लिसनिंग टू आकाशवाणी।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: यस बिल्कुल आपने सही सुना, ये है आकाशवाणी रेनबो और बिल्कुल आप सुन रहे हैं रेनबो जीनियस हमारे साथ, क्योंकि हमारे दो रेनबो जीनियस इस वक्त हमें मिल चुके हैं अब तक और अब तीसरे कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। देखते हैं कि कौन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी रामधारी अवाना बात कर रहा हूँ, भाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से।
0: ओके, हांसी हरियाणा से रामधारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या करते हैं आप?
1: सर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मैं भी, हरियाणा पुलिस में जॉब कर रहा हूँ।
0: ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो आज के जो इस प्रोग्राम के जो रूल्स हैं वो तो आपको पता ही हैं।
1: जी जी।
0: सो क्या हम शुरुआत करें इस कार्यक्रम की?
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। तो पहला सवाल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है।
1: सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश।
0: उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया पहले सवाल का। और बिल्कुल अब शुरुआत करते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये प्रसिद्ध कथन किस महान शख्सियत ने दिया था, आपको उनका नाम बताना है।
1: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
0: बिल्कुल सही जवाब। और दो सवालों के आप बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं फिलहाल अब तक। और साथ ही साथ आपको बताना है तीसरे सवाल जो आपके लिए आ रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसको क्या नाम दिया गया था, किस नाम से उसको जाना जाता है?
1: पोखरण में हुआ था।
0: जी जी जी, उस
1: लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से।
0: नहीं, ये गलत जवाब
1: हो। स्माइलिंग बुद्धा सर। स्माइलिंग बुद्धा।
0: स्माइलिंग बुद्धा, यस, ये ठीक जवाब दिया आपने, सोचा समझा आपने।
1: ये मैंने वो लिटिल वो बता दिया परमाणु जो जापान पे
0: गिराए गए। जी जी जी जी जी। तो ठीक है, आप तीन सवालों के आप बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं। और साथ ही साथ अब आपको बताना है कि जो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो जिसको कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, कौन सा वो ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? हम
1: यूनिवर्सल डोनर होता है।
0: जी जी, वो किसी को भी। यस, बिल्कुल सही जवाब। और चार सवालों के आप बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं। और पांचवा सवाल, अगर इस सवाल का आपने सही जवाब दे दिया तो आप बन जाएंगे हमारे रेनबो जीनियस और बहुत ही शानदार। इस वक्त जो जो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सभी बनते जा रहे हैं। और भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर है वो आपको बताना है।
1: सबसे लंबा समुद्री तट
0: बिल्कुल
1: गुजरात राज्य का।
0: गुजरात राज्य का।

बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और बिल्कुल इसी के साथ आप बन गए हमारे रेनबो जीनियस और तीसरे रेनबो जीनियस आज आपके बने हैं हमारे। सो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर हमें, और शुभकामनाएं आपको बहुत सारी आज के इस जी जी थैंक यू सो मच कनेक्ट रहने के लिए हमारे साथ, और ऐसे ही सुनते रहिए और तमाम लोगों को जोड़ते चले जाइए हमारे साथ। थैंक यू सो मच रामधारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस वक्त अगर आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुन रहे हैं हमें रेडियो पर, तो अगर आप फ़ोन उठाएंगे सीधा हमसे जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 2342-1080 एंड 2342-1084, और उससे पहले 011 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ और बन सकते हैं आप भी हमारे रेनबो जीनियस आज के इस प्रोग्राम में। फिलहाल आप सुन रहे हैं रेनबो जीनियस आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आशुतोष के साथ। वक्त हो चुका है 4:45 और 35 सेकेंड्स।

0: हाँ, सो वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेनबो जीनियस और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर कनेक्टेड हैं। आइए कनेक्ट होते हैं उनके साथ। हेलो
1: जी, सभी को मेरा नमस्कार। रजनेश राठी बांडोर महेंद्रगढ़ से कॉल कर रहा
0: हूँ। ओके रजनेश राठी जी, इस वक्त हमारे साथ महेंद्रगढ़ से कनेक्टेड हैं। और क्या करते हैं आप?
1: जी मैं तैयारी करता हूँ कंपटीशन वगैरह के।
0: ओके ओके ओके, सो तैयार हैं आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए?
1: जी जी जी।
0: सो बिल्कुल, आज आपके लिए हम पहला सवाल लेकर आए हैं और इस सवाल का जवाब आपको देना है। तो पहला सवाल आपके लिए है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? आपको इसका नाम बताना है शहर का।
1: ये मुंबई में है जी।
0: मुंबई में है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। पहला सवाल बिल्कुल आपने ठीक जवाब दिया है। और दूसरा सवाल आपके लिए आ रहा है कि ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपको उस डेट का नाम बताना है।
1: 16 सितंबर को।
0: 16 सितंबर को, बिल्कुल अभी कुछ ही दिनों पहले हमने इस दिन को मनाया था और इसके प्रति जागरूकता हमने फैलाई थी। तो आपको भी इसके लिए सतर्क रहना चाहिए, सभी को इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। और बिल्कुल दो सवालों के आपने सही जवाब दे दिए हैं। और साथ ही साथ तीसरा सवाल आपके लिए

0: रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है।
1: जी जी, गोवा है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य।
0: गोवा, बिल्कुल सही जवाब। और तीन सवालों के बिल्कुल सही जवाब आप दे चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बताना है कि बिल्कुल टेनिस में जो शून्य होता है ना, शून्य का स्कोर होता है, उसको क्या कहते हैं?
1: लव ऑल ऐसे बोलते हैं, लव
0: लव बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब। चार सवालों के आपने बिल्कुल सही जवाब

0: किसने जीता था आप उनको?
1: अभिनव बिंद्रानी शूटिंग में जीता था।
0: क्या बात है, क्या बात है, 2008 के ओलंपिक्स में। डेट भी आपने बता दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और प्लीज हमारे सुनने वालों को एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए।
1: जी रजनेश राठी नाम है मेरा, और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट।
0: रजनेश राठी जी इस वक्त हमारे साथ, और एक और रेनबो जीनियस आज हमारे इस कार्यक्रम में मिले हमें। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं रजनेश जी।
1: धन्यवाद जी, और सभी जीनियस बनने वालों को, सभी को मेरी तरफ से भी बधाई।
0: बिल्कुल, आज का शो बहुत ही अमेजिंग जा रहा है और बहुत सारे हमें रेनबो जीनियस मिल रहे हैं आज भी तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और इतने नॉलेजेबल लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, तो बिल्कुल सभी को इंस्पायर कीजिए। क्या
1: सभी जितने भी साथी जुड़े हैं सभी के सभी जीनियस बनेगा,
0: बिल्कुल कोशिश यही रहेगी। और देखते हैं कि सभी इतने अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं बढ़िया तरीके से बिना किसी रुकावट के, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए आपका
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच। और बिल्कुल अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वक्त बहुत कम बचा है, तो आप भी कनेक्ट हो सकते हैं 2342-1080 एंड 2342-1084। एंड नंबर से पहले 01 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कनेक्ट हो जाएंगे आप हमारे साथ सीधा आकाशवाणी रेनबो के दिल्ली स्टूडियो से। सो कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए हमारे साथ रेनबो जीनियस, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आशुतोष आपके साथ कनेक्टेड है, स्टे ट्यून्ड।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल,

0: का हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: बिल्कुल, एक बार फिर से आपका स्वागत है और वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर कनेक्टेड है, उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हाँ सर, बोलिए।
0: जी जी, आपका शुभ नाम प्लीज, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: फरीदाबाद से बोल रहा हूँ मैं।
0: फरीदाबाद से कौन बात कर रहे हैं?
1: राहुल कुमार।
0: राहुल कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा पहला सवाल है कि अशोक चक्र में कितनी लाइन्स होती हैं, कितनी तिल्लियाँ होती हैं?
1: 24।
0: बिल्कुल सही जवाब ने दिया। और दूसरा आपको सवाल बताना है, जवाब देना है कि जनगण मन के रचयिता कौन है, उनका नाम आपको बताना है।
1: रविन्द्रनाथ टैगोर।
0: बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, दूसरा बिल्कुल ठीक जवाब दिया। और साथ ही साथ आपको बताना है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, उसका आपको तारीख बतानी है।
1: 14 सितंबर।
0: क्या तारीख बताई?
1: 14 सितंबर।
0: बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और साथ ही साथ भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, उनका आपको नाम बताना है।
1: सरोजिनी नायडू।
0: बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, चौथा भी बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। और साथ ही साथ आपको बताना है कि भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम आपको बताना है कि उस डिवाइस को क्या कहते हैं।
1: रिक्टर स्केल।
0: नहीं, वो तो स्केल हो गया, नापने का स्केल होता है, उसको डिवाइस को क्या कहते हैं जो जिससे हम नापते हैं उसको।
1: सिस्मोग्राफ।
0: बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और बिल्कुल आपने भी पांचों सवालों के सही जवाब दिए हैं, तो आप भी बन गए हमारे रेनबो जीनियस आज के। सो आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस।
1: थैंक यू सर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उन तमाम श्रोताओं का जो हमारे साथ जुड़े। और आज बहुत ही शानदार दिन रहा और सभी हमारे रेनबो जीनियस बने आज के दिन। तो कनेक्ट रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, क्योंकि अब आपके साथ कोमल जुड़ेंगी कुछ ही पलों में सिटी लाइट्स लेकर। स्टे ट्यून्ड, और आशुतोष आपसे लेते हैं अनुमति। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। शाम के बजे हैं 5। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुई। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा किया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को ही मिले। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योगों को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविरों का आयोजन हो रहा है। इसमें मतदाता सूची के विवरण को ठीक किया जा सकेगा। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उनकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने एशियाई खेल 2026 में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद को बधाई दी। और सूचिका तारियाल ने इतिहास रचते हुए आइची नागोया खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: संडे की शाम है, शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन फेस्टिवल सीजन ने अपना गियर बदल दिया है। कहीं गणपति बप्पा की विदाई की तैयारियां हैं और कहीं महालक्ष्मी पूजा की भक्ति, और आने वाले दिनों में तो कैलेंडर का लगभग हर दिन किसी न किसी त्योहार के नाम होने ही वाला है, यानी फेस्टिवल मोड ऑन हो चुका है। नमस्कार दिल्ली और दिल्ली के आसपास वाले, दिल्ली एनसीआर वाले, मैं हूं ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। इसके साथ साथ हम आप सभी के लिए अवेलेबल हैं हमारी न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी। लेकिन आज की शाम सिर्फ फेस्टिवल्स की बात नहीं करेंगे, दिल्ली की सड़कों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है, यानी बारापुला फेज 3 खुलने के बाद किन कम्यूटर्स का सफर होगा आसान, और जू में आने वाला है एक ऐसा एक्सपीरियंस जहां आप चलेंगे और बर्ड्स आपके आसपास उड़ते हुए मिलेंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ रसोई से जुड़ी हुई भी एक जरूरी खबर है आप सभी के लिए। तो इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज सिटी लाइट्स में, ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल आपको जवाब देगी। जी हाँ, तो संडे इवनिंग को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाइए, म्यूजिक के साथ रहिए, अपडेटेड रहिए और आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज की कुछ जानकारियां सीधे आपके काम की हैं।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

जी, आकाशवाणी रेनबो है ये, और प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, आपका अपना इवनिंग ड्राइव शो। और मैं हूं आपके साथ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। दिल्ली की रोड्स पर एक और मेजर कनेक्टिविटी अपडेट आने वाला है। साथियों, अगर आपका रूट ईस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली की तरफ है तो ये खबर आपके लिए डेफिनेटली वर्थ नोइंग है। 19 सितंबर से बारापुला फेज 3 पब्लिक के लिए खुलने जा रहा है। करीब 5 किलोमीटर का ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है, मयूर विहार फेज 1 को सरायकाले खान से जोड़ेगा और इस रूट पर सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी सभी को मिलने वाली है। यानी कि इससे ईस्ट दिल्ली से सेंट्रल और साउथ दिल्ली की तरफ जाने वालों को बहुत फायदा मिलने वाला है। तो दिल्ली कम्यूटर्स के लिए सिंपल सा मैसेज, कम सिग्नल, स्मूदर कनेक्टिविटी। दिल्ली की कनेक्टिविटी धीरे धीरे स्मार्ट हो रही है और जब रूट स्मूदर हो तो शाम की ड्राइव भी थोड़ी लेस स्ट्रेसफुल लगती है। तो बारापुला फेज 3 के खुलने से ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के बीच में कनेक्टिविटी का जो एक नया लिंक है वो जुड़ने वाला है और नए रूट्स और उम्मीद है थोड़ा स्मूदर कम्यूट आप सभी को मिलने वाला है। ड्राइव सेफ, लेन डिसिप्लिन मेंटेन रखिए और दिल्ली के रोड्स पर मिलते रहिए। और याद रखिएगा, फ्लाईओवर नया है लेकिन सेफ्टी रूल्स वही पुराने हैं, वो पूरी तरह से फॉलो कीजिएगा।

ज़रा इमेजिन कीजिए, आप दिल्ली के जू में हैं, चल रहे हैं, और तभी फुर्र करके एक खूबसूरत परिंदा आपके ठीक पास से उड़कर निकल जाता है। आप ऊपर देखते हैं, आसमान खुला है, चारों तरफ हरियाली है और बर्ड्स आपके आसपास हैं। साउंड एक्साइटिंग है, राइट? दरअसल दिल्ली जू की तस्वीर जो है वो आप बदलने वाली है, और यहाँ पर जो है विजिटर्स सिर्फ बर्ड्स को दूर से नहीं देख सकेंगे बल्कि उनके हैबिटेट के बीच वॉक भी कर सकेंगे। करीब 50 तरह के जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर रखने की योजना बनाई जा रही है, और ख़ास बात यह है कि इस एवियरी में ऊपर से कोई भी ट्रेडिशनल छत नहीं होगी, यानी करीब 15 से 20 फीट ऊंची प्रोटेक्टिव मैश होगी ताकि बर्ड्स को खुला और ज़्यादा नेचुरल स्पेस मिल सके। यानी सीन कुछ ऐसा होने वाला है कि आप ज़मीन पर वॉक कर रहे हैं और बर्ड्स आपके ऊपर से उड़कर जा रहे हैं, और इसके साथ साथ बनेगा एक नाक टनल हाउस भी, और यहाँ पर जो है दिन में ही नहीं बल्कि रात पे एक्टिव रहने वाले क्रिएचर्स की दुनिया आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे उल्लू, सिकरा, चमगादड़, ये सभी आपके आसपास होंगे। स्पेशल लाइटिंग से उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाएगी जो उनको नेचुरल नाइट साइकिल के करीब लेकर के जाए, यानी कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानियां ना आए किसी भी तरीके की, और आप भी उस चीज़ को इंजॉय कर सके। तो बस जल्दी से ही आप ये सब इंजॉय करने वाले हैं दिल्ली के जू में। और ऑनेस्टली कंक्रीट से बड़े जो शहर में है ना, अगर कोई जगह हमें थोड़ी देर के लिए नेचर के करीब ले जाए तो वो एक्सपीरियंस अपने आप में खास होता है। बस याद रखिए, नेचर के घर में हम गेस्ट हैं, यहाँ पर मालिक नहीं। तो अगली बार जब जू जाने का प्लान बने तो शायद एक्सपीरियंस सिर्फ केजेस देखने का नहीं होगा, बर्ड्स होंगे आसमान में, ग्रीनरी होगी आसपास, और आप होंगे उस नेचुरल वर्ल्ड के बीच। मैं हूं ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल, और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स पर। ऐसे ही शहर के दिलचस्प अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स और मैं हूं आपके साथ कोमल। और दोस्तों, अब आपकी रसोई से जुड़ी हुई एक जरूरी खबर। अगर आपको घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ मिलता है तो ये जानकारी आपके काम की है। दरअसल 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के लिए आधार का बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी हो गया है। अगर आपने अपना आधार बायोमेट्रिक सत्यापन पहले से करा लिया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अभी तक नहीं कराया है तो समय रहते इसे करा लीजिए। और अगर कोई ग्राहक आधार सत्यापन नहीं कराना चाहता तो उसे गैस सिलेंडर तो मिलता रहेगा लेकिन सब्सिडी का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। तो बात सीधी सी है, सब्सिडी का लाभ चाहिए तो आधार बायोमेट्रिक सत्यापन जरूर करा लीजिए, जरूर, क्योंकि एक छोटी सी प्रक्रिया और रसोई के बजट में थोड़ी राहत भी। तो दोस्तों, संडे इवनिंग की खूबसूरत मुलाकात हमारी यहीं तक रहेगी। उम्मीद है फेस्टिवल सीजन की इस शुरुआत में सिटी लाइट्स ने आपके संडे को थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया होगा, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी। तो दोस्तों, त्यौहार आते रहेंगे, हर दिन कोई नया रंग कोई नई खुशियां लेकर के आएगा। आप बस सेलिब्रेशन की खुशी में अपनों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी सेफ्टी और जिम्मेदारियों को भी साथ रखिएगा। मैं हूं ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आज के लिए बस मुझे यहीं इजाजत दीजिए। फिर होगी आप सभी से मुलाकात आकाशवाणी रेनबो की तरंगों पर ऐसे ही। तब तक के लिए नमस्कार और कीप लिसनिंग टू आकाशवाणी FM रेनबो।

0: देखे तेरे कुड़ी।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए सुनते हैं हमारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
2: उतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
2: मतलब
1: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी हाँ? माटी भी तंदुरुस्त और लोग पहली वाली बात कहाँ
2: पर हम तो सब यही डाले हैं
1: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
2: सच
1: है एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं
2: ठीक है भाई मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती
4: अरे किसानों मानो या न मानो फार्म टू सिटी सबको पसंद आने लगा है इसीलिए हम आपको करते हैं धन्यवाद और प्रणाम नमस्कार थैंक यू मेरा नाम ओपी राठौर है और आज के प्रोग्राम में मैं आपके खास बात बताना चाहता हूँ वो ये मेरा भी एक छोटा सा बगीचा है मतलब बैल्कनी में ही है तो वहां पर मैंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं लगाई दो ही तीन चीजें लगाई है जैसे एक नारियल का पेड़ लगाया है एक एकड़ में धान लगाया है और क्या जो थोड़ा एरिया बच गया है उसमें मैंने गेहूं लगाया है नारियल के दो तीन पेड़ और लगाऊंगा मैं मतलब इतना साफ बोलो कि सामने वाले को पता चल जाए कि छोड़ रहा है पर मैं इस कार्यक्रम को नहीं छोड़ रहा अभी तो शुरू हो रहा है जनाब अभी तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि आज के अंक में कितना कुछ है आपके लिए तो प्यारे मिनी किसानों छोटे किसानों बागवानी वालों किचन गार्डनिंग वालों प्यारे श्रोताओं ये कार्यक्रम आप तक लाया जा रहा है भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हमारे पास कई सवाल आते हैं कहते हैं सर ये FPO शब्द हमने बहुत सुना है ये क्या है FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में से कहते हैं किसान उत्पादक संगठन सुनने में कुछ श्रोताओं को गाड़ी चला रहे हैं संडे की शाम है लग रहा होगा अरे पता नहीं भैया क्या कह रहे हैं लेकिन जब आप इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से कई बार आप ही लोग सोचा करते थे कि किसान उगाते हैं अनाज जिसे पैदा करते हैं उनसे बड़े व्यापारी कम दाम पे खरीद के बहुत ज्यादा दाम पे बाजार में बेचते हैं तो इसी कमी को दूर करने के लिए FPO क्रिएट किया गया और उसका फायदा किसानों को तो हो ही रहा है आप और हम जैसे लोगों को भी हो रहा है कैसे हो रहा है यही है आज का टॉपिक FPO के बारे में तो चलिए अभी मैं गाना चला के जा रहा हूं नीचे वो एक्सपर्ट साहब आ गए हैं वो ढूंढ रहे हैं स्टूडियो कहां है मैं उनको यहां तक लेके आता हूं तब तक ये गाना सुनिए।

0: आज का हमारा टॉपिक है फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, और FPO में PO को उल्टा सीधा कर दें तो OP, आप OP राठौर के साथ हैं। तो आज हमें इसी FPO विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन राजेंद्र प्रसाद पचौरी जी, जो स्वयं एक FPO संचालक हैं। नमस्कार कैप्टन राजेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान। अब ये बताएं कि FPO क्या होता है, FPO की क्या विशेषताएं होती हैं, इसमें सरकार क्या पहल करती है और क्या सहायता देती है।
1: FPO एक जो सीमांत और छोटे किसानों का संगठन होता है, इसमें संगठित होकर किसान अपने एग्रीकल्चर को करें और उसको एग्रीकल्चर का जो यील्डिंग है उसको प्रसंस्करण, क्लीनिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें किसान लेवल पे ही करें, इसी को FPO कहते हैं। सरकार सबसे पहले अगर 10 किसान जो है जिनके विचार मिलते हों, उस तरह के लोग इकट्ठा होके अगर गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं तो सरकार इसमें आपको 18 लाख तक मनी जो है मैचिंग ग्रांट बोलते हैं उसको, वो देती है सरकार आपको। ऑफिस का खर्चा और आपके स्टाफ का खर्चा वो सारा 3 साल तक ये व्यवस्था सरकार की तरफ से होती है। तो काफी अच्छा अमाउंट है, जितना अमाउंट आप किसान इकट्ठा कर लें उतना ही अमाउंट जो है सरकार उन्हें गिफ्ट कर देती है FPO चलाने के लिए।
0: जी, FPO के लाभ क्या हैं?
1: FPO में देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई एक छोटी उपज है या छोटी है, उसको आप ठीक तरह से बार्गेनिंग नहीं कर सकते, ठीक तरह से नहीं बेच सकते उसको, लेकिन वही यील्डिंग जब बड़ी हो जाती है तो फिर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कि मेरे पास इतना प्रोड्यूस है, मैं इस रेट में आपको दूंगा या मैं जो है इस रेट में आप बेचूंगा। वही चीज इनपुट में भी आती है, एग्रीकल्चर को करने के लिए 284 आइटम्स की जरूरत होती है, तो उन आइटम्स के भी परचेजिंग में किसान को वो पावर मिल जाती है कि हम बार्गेनिंग कर सकें लोगों से, नहीं भाई मैं इतने नहीं, मैं इतने में लूंगा, मुझे इतना बल्क में चाहिए, तो रेट डाउन हो जाते हैं सर, और वही चीज है किसान की आय को डेवलप करता है।
0: यानी हम सबके फायदे की चीज है FPO, फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं सर?
1: किसान भाइयों को जो भी जानकारी है, हमारा SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम की वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हैं, वहाँ हिंदी और इंग्लिश सारी चीजें इन्फॉर्म है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ आप इससे सूचना ले सकते हैं। और दूसरा स्टेट वाइज भी, स्टेट एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट, उनके जो डिप्टी डायरेक्टर जो डिस्ट्रिक्टों में बैठे हैं, आप वहां से भी पूरा लिटरेचर अभी पहुंचा हुआ है, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान। ये बातें ऐसी हैं कि लोग सुनते हैं, किसी को हल्का फुल्का पता है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, किसानों को पता चलेगा, बिचौलियों की भूमिका कम होती जाएगी, फसल का उचित मूल्य मिलेगा और अच्छा अनाज, अच्छी चीजें हम सब लोगों को खाने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच श्रीमान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सॉन्ग के साथ, और अभी प्रोग्राम में बहुत कुछ है आप सबके लिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फार्म टू सिटी, बिल्कुल फुल फॉर्म में चल रहा है और फुल फॉर्म में यानी बहुत ही बेहतरीन ढंग से आयोजित हुआ 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026। इसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान कल्याण से जुड़ी ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर और एग्रो इकोलॉजी और रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जैसी महत्वपूर्ण पहलों का उल्लेख किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर के जरिए किसानों के लिए नए अवसर सृजित होंगे एवं एग्रो इकोलॉजी और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने का काम करेंगे।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे। कम्युनिटी बेस्ड क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए तैयार किए गए सिद्धांत इंडिजीनियस नॉलेज को क्लाइमेट एक्शन का महत्वपूर्ण आधार बनाएंगे।
0: फार्म टू सिटी कार्यक्रम में आज हम आपको भारत सरकार की एक खास योजना के बारे में बताना चाहते हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आधुनिक कृषि से जोड़ने में भारत सरकार कामयाब हो रही है। इसका नाम जानते हैं, नाम है नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले SHGs को कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन तकनीक से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं के SHG को खेती के काम के लिए ड्रोन दिए जाते हैं। महिलाएं इन ड्रोन को किसानों को किराए पर देती हैं ताकि खेतों में खाद और कीटनाशक का छिड़काव किया जा सके। सरकार ड्रोन और उसके सामान की कुल कीमत का 80% हिस्सा सब्सिडी अनुदान के रूप में देती है। बाकी बचे हुए पैसों के लिए कम ब्याज पर लोन की सुविधा मिलती है। इन सदस्यों में से एक को ड्रोन पायलट के रूप में 15 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना जरूरी होता है। तो भाई इससे फायदा यह होता है कि महिलाएं ड्रोन किराए पर देके अतिरिक्त कमाई बढ़ा सकती हैं। ड्रोन की मदद से खेतों में कम समय और कम पानी में दवा या खाद का छिड़काव हो जाता है और गांव की महिलाएं हाईटेक कृषि उद्यमी बन रही हैं। तो नमो ड्रोन दीदी योजना का लाभ उठाइए, ग्रामीण महिलाओं तक ये संदेश पहुंचाइए। चलिए ड्रोन दीदी योजना के बाद अब आज के स्पेशल सक्सेस स्टोरी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हम एक सक्सेसफुल FPO किसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने आम की बागवानी, आम की खेती करके अपने आप को स्थापित किया है और FPO के माध्यम से एक सफल व्यवसायी, उद्यमी, किसान तीनों चीज बन रहे हैं। ऐसी ही एक कामयाबी की कहानी है प्रगतिशील FPO किसान हर्षवर्धन त्यागी जी की। आइए उन्हीं से बातें करें। नमस्कार सर, अपने बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए प्लीज।
2: नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन त्यागी है और मैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के भदशाना गांव से हूं और लगभग पिछले 7 वर्षों से जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहा हूं। 2022 में हमने एक अपना FPO आरंभशील किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड के नाम से एक FPO बनाया जिसमें आज लगभग 800 किसान उसके सदस्य हैं।
0: तो मतलब ये है कि आप काफी समय से इस काम में लगे हुए थे, अब धीरे धीरे आपको कामयाबी मिलने लगी है, तो शुरू में क्या कोई बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा आपको?
2: शुरुआती दिनों में जब हमने FPO बनाने की कोशिश में हम लगे तो सबसे बड़ा संघर्ष जो था वो था किसानों को FPO की तरफ जागरूक करना, उनको किसानों को FPO की तरफ जो है उनका विश्वास बढ़ाना कि वो संगठित हों और संगठित रूप से जो है वो खेती बाड़ी करें और फिर उसके बाद अपने उत्पादन को प्रसंस्करण करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं।
0: आज आपका बिजनेस कहाँ तक पहुंचा है और इसमें किस तरह का आपको रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है?
2: देखिए, लगभग हम 1 करोड़ के पार जो है टर्नओवर पे आज तक हम अपने FPO को ला पाए हैं और हम जो है धीरे धीरे अभी 2022 में हमारा FPO पंजीकृत हुआ और जैसे मैंने बताया शुरुआती समय में जो है बड़ी समस्याएं आती हैं। एक किसान उत्पादक संगठन को बनाना और चलाना जो है, क्योंकि सभी किसान इसके साथ जुड़े हुए हैं और किसानों को जो है बहुत जागरूकता के लेवल पे इतनी जानकारी नहीं होती, तो वो चीजें देखते हुए हम धीरे धीरे निरंतर

0: फिर प्रगति कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमने जो है हमारे एफपीओ के किसानों को जो है लाभांश का वितरण किया था, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की सहकारिता विभाग का पहला एफपीओ था जिसने उत्तर प्रदेश में जो है लाभांश वितरित किया था। तो ये छोटे से प्रयास है जो हम धीरे धीरे कर रहे हैं और जिससे अपने किसानों को जो है लाभ पहुंचा पा रहे हैं। और आज के समय में हमारे जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी आय में 20% तक का इजाफा एफपीओ के बाद जुड़ने से हुआ है।
1: लोगों में जागृति आ रही है क्या एफपीओ के बारे में?
0: भारत

0: के प्रोडक्ट जो है काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं, वो ऑनलाइन मंगा पा रहे हैं, घर पर अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाद में जो है, क्योंकि जो किसान उत्पादक संगठन है वो जो उत्पादों को तैयार कर रहे हैं, वो उत्पाद जो है उत्तम क्वालिटी के होते हैं और किसानों के साथ जुड़ने का उपभोक्ताओं को सीधा लाभ भी मिलता है। तो धीरे धीरे जो है काफी जागरूकता बढ़ रही है और जो उपभोक्ता है वो भी FPOs के माध्यम से किसानों के साथ जुड़ रहे हैं।
1: आम लोगों को आप प्लीज ये बताएं कि FPO से जुड़ने से आम आदमी को भी क्या फायदा हो सकता है?
0: हमारे देश में आज के समय में छोटे किसान ज्यादा हैं, बड़े किसान कम है। छोटे किसानों के जो संसाधन है वो भी सीमित होते हैं, लेकिन अगर वो संगठित हो जाते हैं और एक संगठन के तौर पर काम करते हैं तो संगठन के लिए संसाधनों को जुटाना आसान होता है। तो सबसे पहले जो संसाधनों का उनके पास अभाव है वो संगठन के माध्यम से उनको उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा, संगठित होकर जब आप कृषि करते हैं तो आप आज के आधुनिक कृषि जो तकनीक के साथ जुड़कर कृषि करने का जो विकल्प है वो भी खुल जाता है किसानों के लिए। और फिर सबसे तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो होता है किसानों को जब वो उत्पादन करते हैं और इकट्ठा बड़ी क्वांटिटी में जब उनके पास उत्पादन होता है तो एक बार्गेनिंग क्षमता डेवलप हो जाती है FPO की, जिससे किसानों को जो है उनकी फसल का अधिक से अधिक दाम दिलवाया जा सकता है। और उसके बाद कई बार आप ये भी कर सकते हैं कि अपने उत्पादन को जो है प्रसंस्करण करकर एक अपनी ब्रांडिंग में सीधे उपभोक्ता तक पहुंचा सकें, ताकि आप मंडी के जो ये चक्र है इससे बचें और सीधे उपभोक्ता के साथ जुड़ें और उपभोक्ता के द्वारा पे किया गया प्राइस FPO को मिले और FPO के माध्यम से वो किसानों तक पहुंचे।
1: थैंक यू सर, हमें पूरी उम्मीद है कि आपसे प्रेरणा लेकर आप ही की तरह बहुत सारे किसान अब आगे आएंगे और FPO से जुड़ेंगे, और यही नहीं, आम जनता भी FPO का लाभ लेकर अच्छी फसल, अच्छा उत्पाद उचित कीमत पर प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, जानकारी के सागर में गीत का एक मोती भी हम आप तक पहुंचा देते हैं।

0: समय है, आएगा जाएगा, लेकिन हमारा लिसनर नहीं घबराएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम दोबारा अगले संडे नए टॉपिक नए मेहमानों के साथ आएगा। इस बीच में आप अपने ईमेल प्रतिक्रियाएं, अपने बारे में, इस कार्यक्रम में यदि आप शामिल होना चाहते हैं, सब कुछ या कुछ भी आप लिखें farm2citydelhi@gmail.com पे। तो आज के लिए नमस्ते, सदा रहिए हंसते हंसते, बाय बाय।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार, 6 बज चुके हैं। आकाशवाणी रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस उपाय जरूरी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एयर शो का अवलोकन किया। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अपने 30 वर्ष के सफर में भारत और विदेशों में 800 से अधिक एयर शो में प्रदर्शन किया है। आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविरों का आयोजन हो रहा है। इसमें मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। ईरान ने कहा है कि हुमर जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उनकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। उत्तर कोरिया ने आज समुद्र की ओर एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये कार्रवाई अमेरिका की कथित शत्रुतापूर्ण नीतियों के जवाब में परमाणु प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने की धमकी के 2 दिन बाद हुई है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने जापान के आईची नागोयो में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एलोवेलिन वॉलरिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद के टीम ने देश का पहला पदक दिलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं को पदक जीतने पर बधाई दी। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में और क्या क्या मिक्सअप होने वाला है इस घंटे में, वो सब आपको पता चलेगा। बस आपको जुड़े रहना है हमारे साथ 102.6 के माध्यम से, और साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए भी, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी हम आप तक बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस हमारी कुछ प्यारी प्यारी बातों का जवाब आप देते जाइए व्हाट्सएप के माध्यम से, जिस पर आप हमेशा लगे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ टाइप करते रहते हैं, किसी को कुछ भेजते रहते हैं, तो कुछ हमारे लिए भी भेज दीजिएगा। हम आपके मैसेज आपके अपनों तक आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आज आपको कहीं से भी अचानक से 10,000 रुपए मिल जाए, और ये कंडीशन हो जो स्टार बना रहता है ना, वो कंडीशन ये हो कि आज ही वो आपको खर्च करने हैं, तो आप वो पैसे कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ उड़ाएंगे, और सिर्फ आज का ही वो दिन होगा, कंडीशन ज़रूर अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो अगर आज आपको 10,000 मिल जाए कहीं से भी, तो कंडीशन ये है कि आप उसे कहाँ खर्च करना चाहेंगे और क्यों। जी हाँ, आप अपने जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं 9868107070 पर व्हाट्सएप के माध्यम से। मुक्ति को आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि इससे जुड़े जवाब या इससे जुड़ी बातें हमारे पास आएंगी ना, वही मैं ऑन एयर करूंगी। तो ध्यान से जितने भी श्रोतागण हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और ये प्यारे प्यारे सॉन्ग्स के साथ आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आज आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे तो आप उसे कहाँ खर्च करना चाहेंगे, और आज ही वो अगर आपको खर्च करने हैं तो ये कंडीशन आप लगाकर जरूर बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। फिलहाल मैसेज मसाला मिक्स में सॉन्ग्स का सिलसिला जारी रहेगा आपके लिए।

जी हाँ, एक बार फिर जुड़ गए हैं आपके साथ में। आपके बहुत सारे जवाब जो है वो हम तक पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने आपसे क्या पूछा है। हमने पूछा है आपसे ये कि अगर आज ही आपको 10,000 रुपये मिल जाएं और कंडीशन ये कि आज ही आपको वो खर्च करने हैं, तो आप वो कहाँ करना चाहेंगे बताइए। और हमारे साथ जुड़ जाइए 9868107070। जिन भी लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया है, तो हमने आपको बता दिया है नंबर 102.6 पर एकदम लाइव आपके मैसेजेस आप तक पहुँचाए जाएंगे। और ये मैसेज हम तक पहुँचा है, विजेंद्र का मैसेज पहुँचा है हमें महाराष्ट्र से कि घर का टीवी खराब हो गया है और मैं एलईडी लूंगा अगर 10,000 रुपये में मिल जाए तो। भाई ठीक है, आप सर्च कीजिए, शायद मिल जाए आपको। और ये है, मैं 10,000 जरूरतमंदों में बांट दूंगा क्योंकि उनकी जो दुआएं मिलेंगी वो

लाखों रुपए खर्च कर भी नहीं मिलेगी। नवाब अहमद भारती का बलीमारन से ये मैसेज आया, भाई बहुत ही खूबसूरत बात आपने भेजी है। यदि मुझे आज 10,000 रुपए मिल जाए तो मैं उसे हॉस्पिटल में निर्धन मरीजों के मेडिसिन आदि के लिए मदद करूंगा। हीरामणि वर्मा का छत्तीसगढ़ से हमको ये मैसेज आया, बहुत ही खूब मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। मुझे आज 10,000 मिल जाए तो मैं तुरंत इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर जाकर नए नए रेडियो सेट खरीद लूंगा। भीरूलाल धाकड़ का मैसेज हमको आया है मध्य प्रदेश से, और ये है नरेंद्र सोनी का पटियाला से। वो लिखते हैं कि उन बेसहारा पशुओं पर खर्च करूंगा और चाहूंगा जो भी हो सकता है, जो कूड़े में पॉलिथीन फेंकते हैं और खाते फिरते पॉलिथीन फेंक देते हैं, कम से कम एक दिन तो उनका पेट भरूंगा, उनको कुछ अच्छा खिलाऊंगा। जी हाँ, ये जीव जंतुओं की जो है वो अच्छे से मदद करना चाहते हैं। ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है, हम तुम्हारी पत्नी को तुरंत देकर खुश कर देंगे। यशवंत का महाराष्ट्र से यह मैसेज आया, चलिए ये भी अच्छी बात है, वो जो करना चाहे वो करना चाहे। पंकज का अमरावती महाराष्ट्र से ये मैसेज आया है, अगर 10,000 रुपये मिले तो सबसे पहले खेती किसान के लिए खाद खरीदूंगा, क्योंकि मैं किसान हूँ और खेत में खाद डालना बहुत ज़रूरी है। इस पैसों का सही इस्तेमाल भी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही सही वाकई में आप इस्तेमाल करेंगे। और ये है कि हमारे भी अटेंडेंस लगा दीजिए। भाई अटेंडेंस तो आप जब शामिल हो जाते हैं ना, खुद ब खुद हो जाती है। आप हमें ये बताइए कि जो हमने आपसे पूछा है, असली अटेंडेंस तो वहाँ से आएगी। ये है मैसेज हमारे पास कृष्ण कुमार का दयालपुर दिल्ली से, और वो लिखते हैं कि मुझे 10,000 रुपये मिल जाए तो मैं उसका आप क्या करेंगे, मैं आपको बता दूँ। 12 जून 2019 को 20,000 रुपये मिले थे जो मैंने अमर ज्योति ट्रस्ट में रख दिए हैं, लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं, आज आप क्या करना चाहेंगे वो हमें बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। 10,000 मिल जाए तो मैं अपने दिल्ली में रेडियो लिसनर क्लब को ट्रस्ट में रजिस्टर करवा दूंगा। बबलू का कश्यप का मंगोलपुरी से ये मैसेज पहुंचा है, वैसे तो ऊपर वाले का करम है कि हर वक्त जेब भरी रहती है, पर आपके कहने के अनुसार कहीं से 10,000 मिल जाए तो मैं बीवी को शॉपिंग कराने निकल जाऊंगा। ये हमारे पास है शमशुल कमर राही का मैसेज आया, भाई बहुत ही बढ़िया, बीवी खुश तो आप भी खुश, चलिए अच्छी बात है, अच्छी सोच है आपकी। और ये है मैं 10,000 रुपये का सोना खरीदना चाहूंगा। मेरठ से महेंद्र सिंह का मैसेज हम तक पहुंचा है, और ये मैसेज हम तक पहुंचा है, अगर हमें 10,000 मिल जाए तो शॉपकीपर को देंगे और कहेंगे कि पूरे महीने का राशन घर पर भिजवा देना। बहुत ही बढ़िया बात है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का शांतिनगर सोनीपत से ये मैसेज आया है, तो अगर आपको 10,000 रुपये मिल जाएं आज ही और कंडीशन ये है कि आज ही उसे खर्च करना है, तो वो आप कहाँ खर्च करना चाहेंगे और क्यों, बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए 9868107070 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी अर्जदोस्त मुक्ति सैनी।

0: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
5: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से

0: एचआईवी हो सकता है।
1: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है।
2: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
7: पता का चाय गजब का स्वाद।
8: हाँ, आपके मैसेज के 10,000 रूपए अगर आपको मिल जाए और कंडीशन ये हो कि आज ही वो आपको खर्च करने हो, तो आप उन्हें कहाँ खर्च करना चाहेंगे, वही हम आपसे जानना चाहते हैं और जान भी रहे हैं। ये हमारे पास मैसेज है कि अगर मुझे मिल जाए तो शॉपिंग कर लूंगी मैम, और जो भी मेरी पसंद का फूड है वो खाना पसंद करूंगी। अंशिका हस्तिनापुर मेरठ से हमको ये मैसेज आया है। उसके बाद ये मैसेज है शिवम फ्रॉम दिल्ली, और वो लिखते हैं वाइफ के लिए नोज रिंग वो लेना चाहेंगे, और मैसेज हम पर लगातार पहुंच रहे हैं। 10,000 मिल जाए तो मैं अपने सभी श्रोता भाइयों को आमंत्रित करूंगा और एक जगह सबको इकट्ठा करके रेडियो कार्यक्रम है वो सुनने का भी शौक रखता हूं वो करूंगा। तो चलिए ठीक है, किशन का और किशन वंजनी नीलम स्वाति का किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से मैसेज आया है, और ये है कि 10,000 रुपये मिल जाए तो लिसनर क्लब को मैं ज्वाइन करूंगा। ये है शबना भारती का वजीराबाद से मैसेज आया है, 10,000 रुपए मिल जाए तो मैं सबसे पहले पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस ले लूंगा, मुझे पढ़ाई करनी है और सॉन्ग सुन रहे हैं। दिलीप का ये मैसेज आया है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, हमको ये मैसेज पहुंचा है, और ये है इतना लंबा मैसेज एक हमको पहुंचा है कि जेब में 10,000 रुपए हो तो ख्याल आया कि सीधे मैं मॉल पहुंचूंगा और ऐसी चीज़ें खरीदूंगा जैसे पूरा स्टॉल ही मैंने खरीद लिया है, ब्रांडेड शर्ट मोजे पैसे सब खत्म हो जाएंगे, शाम को घर लौट कर खाली हाथ आ जाऊंगा, और 10,000 रुपए गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करना चाहूंगा। पता है रुपये कुछ ही नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों की हंसी इन 10,000 रुपए से ज्यादा होगी। यश शिंदे का मुंबई से हमको ये मैसेज आया है, और ये साथ ही है कि अगर मुझे 10,000 रुपए मिल जाए तो मैं ऐसी स्कीम पर खर्च करना चाहूंगा जिसमें चाहे देश में कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो पर मेरा काम चलता रहे और मेरे काम चलते रहें। और ये मैसेज हमको पहुंचा है, नाम भी लिख देते तो हमें पता चल जाता। और मैसेज है राधे का, और वो लिखते हैं प्रोग्राम हम सुन रहे हैं, लेकिन जी हाँ उन्होंने ये नहीं लिखा है कि वो 10,000 रुपये मिलेंगे तो वो क्या करना चाहेंगे। 10,000 रुपये मिलने पर बारिश के आ जाने की वजह से हमको काम बंद हो गया है क्योंकि हम खेत की मजदूरी का काम करते हैं, इसलिए घर पर पूरा राशन खरीदना चाहता हूँ और ये मिल जाए तो मैं उनसे वो खरीदना चाहूँगा। हुसैन का मैसेज है कर्नाटका से। तो चलिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ करने ज़रूर चाहते हैं और आप भी ज़रूर कीजिएगा। अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।

0: जापान के नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों की लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता
1: एंड आई एम दर्पण टिकिया।
0: हमारी पिछली अपडेट में आपने सुना था टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जा रहे थे और अब हमारे पास है उस मैच का रिजल्ट।
1: राइट, सो ईरान प्रूव्ड टू बी अ टफ ओपोनेंट फॉर टीम इंडिया एंड इंडिया एंडेड अप द मेंस टीम वी आर टॉकिंग अबाउट। इट इज द मेंस टीम इवेंट वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर द इंडियन मेंस टीम हैड स्टार्टेड ऑफ ऑन द परफेक्ट नोट अर्ली इन द मॉर्निंग बाय डिफीटिंग इंडोनेशिया बाय 3-0। हाउएवर अगेंस्ट ईरान दे लॉस्ट 3-0 व्हिच मींस दे लॉस्ट ऑल थ्री मैचेस, द फर्स्ट थ्री मैचेस, एंड देयरफॉर द मैच कुड नॉट गो ऑन फॉर एनी लॉन्गर। हरमीत देसाई, मानव ठक्कर एंड मानुष शाह फीचर्ड फॉर इंडिया बट ऑल थ्री ऑफ देम इनकर्ड लॉसेस। एंड ऑन द अदर हैंड द विमेन हैव वन बोथ देयर फिक्स्चर्स, फर्स्ट अगेंस्ट इंडोनेशिया, द सेकेंड वन अगेंस्ट सिंगापुर। नाउ टुमारो इट्स अ डबल हेडर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन टेबल टेनिस, फर्स्ट इन द मेन्स टीम इवेंट एंड देन इन द

जी आप कहना नहीं, बस आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस टाइप कर दीजिए और हम तक पहुंचा दीजिए। प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में मैं हूं आपके साथ आपके अर्ज दोस्त मुक्ति सैनी और प्रोग्राम चल रहा है आपके साथ आपका अपना। और आप हमें मैसेज करके बताइए कि अगर आपको आज 10,000 मिल जाएं और कंडीशन ये हो कि आपको आज ही खर्च करने हैं तो आप उसे कहां खर्च करना चाहेंगे। ये है कि मैं पापा के एनजीओ में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी किताब बांटेंगे, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैसेज हमें आया है जॉनी का, विपिन का, दिल्ली से मैसेज हम तक पहुंचा है। 10,000 रुपये मिलेंगे मैं अपनी बीवी को भेज दूंगा। ये आया है ईश्वर चंद प्रजापति का दिल्ली बवाना से मैसेज और ये है कि मुझे 10,000 रुपये खर्च करने को कहा जाए तो 5-स्टार होटल में फैमिली के साथ डिनर करने जाऊंगा मगर रकम 10,000 भी कम पड़ जाएंगे। ऐसे में बजट वाले अच्छे रेस्टोरेंट में 10,000 रुपये अपने सीमा में रहकर डिनर करवाऊंगा और सभी खुश हो जाएंगे। मेरे लिए ये सपने से कम नहीं है क्योंकि रिटायर्ड लाइफ में आय को स्रोत नहीं बचा के रखना बेहद ज़रूरी होता है। अनिल शर्मा का सरिता विहार से ये मैसेज आया है और ये है कि आई स्पेंड देम ऑन माई कोचिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेट 2028। संजीव कुमार का ये मैसेज हम तक पहुंचा है, हरियाणा से ये मैसेज आया है। ये है कैसे आप, हम बढ़िया हैं और आप भी बढ़िया हैं तो बता दीजिए कि 10,000 रुपये कहाँ खर्च करेंगे अगर आज ही खर्च करने हो। 10 कम बताए, 10 और भी होने चाहिए थे, खर्च तो यूं ही हो जाते हैं। राजेश भल्ला का मैसेज हमें आया है मेरठ से। चलिए 10 कम है ना, तो उन कम को ही आप कहाँ खर्च करना चाहेंगे यही बता दीजिए। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, किसी दिन क्यों आज ही बन जाए, आज मेरे पास 10,000 रुपये आ जाएं तो पूरे खर्च कर देंगे, कहाँ खर्च कर देंगे यही तो जानना चाहते हैं। पूरे तो बहुत आसानी से बोल देंगे और सोच भी रहे होंगे कि आज ही मिल जाए आज ही मिल जाए, लेकिन खर्च करने इतने आसान नहीं होते। कुछ तो कभी तो सोचा होगा ना क्या करना चाहते हैं, वही हमें बताइए। मेरे पापा का मोबाइल फोन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, मैं उनके लिए नया फोन खरीद कर गिफ्ट करूंगा अगर 10,000 रुपये मिल जाए। डॉली का ये मैसेज आया है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। आप कहीं भी हैं, अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, अपना वीकेंड मजेदार बना रहे हैं, तो चलिए एक मजेदार सवाल हमने भी आपसे पूछ लिया। अगर आप हमें सुन रहे हैं अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। 9868107070 पर भेज दीजिए। देखिए वीकेंड भी तो एंजॉय करते ना, कहीं ना कहीं तो जाते हैं, चाहे खाने जाएं, घूमने जाएं, कहीं की टिकट लेनी होती है, फिल्म की टिकट हो, इसके बाद खाना खाना, फ्रेंड सर्कल जाना चाहे, जो भी कुछ करना चाहे, 10,000 रुपये बहुत होते हैं, इतने भी कम नहीं होते हैं। कहां खर्च करना चाहेंगे बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। समय अपनी गति से चल रहा है, फिर ये ना कहना कि भाई आपने हमारा मैसेज तो शामिल ही नहीं किया। तो भेज दीजिए अपना मैसेज और बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे।

बहुत ही खूबसूरत ये सॉन्ग, और हमें भी आपसे जुदा होकर थोड़ा सा जाना है, लेकिन अब भी नहीं जाना है, फिलहाल हम आपके साथ बने हुए हैं। और ये हमें भुवनेश का अशोक विहार से मैसेज आया, वो लिखते हैं कि आई गेट 10,000 रुपीज, आई विल परचेज अ लैंड वेयर आई विल प्लांट लॉट ऑफ ट्रीज फॉर बर्ड्स एंड मेक अ स्मॉल रिवर फॉर फिशेज सो दैट आई कैन गिव अ गुड होम सो बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड गिव माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ड्स ब्रिंग ग्रीनरी। और ये मैसेज हम तक पहुँचा है भाई, बहुत ही प्यारी सोच है आपकी। और मैसेज ये किसका है जो हम तक पहुंचा है, मैसेज मसाला मिक्स सुन रहे हैं, 10,000 रुपये का एक हफ्ते का राशन लेकर आ जाऊंगा, आदिल कुमार का मैसेज, आदिल कमर का मैसेज हम तक ये पहुंचा है। और ये मैसेज है कि 10,000 रुपये अगर मिल जाएं तो फुटपाथ पर रहने वाले गरीब परिवारों को दे दूंगा, अगर मुझे 10,000 रुपये मिल जाएं तो मैं मैसेज जैसे ही पढ़ने वाला तो वैसे ही आप डिलीट अपना मैसेज कैसे कर सकते हैं, अगर मुझे 10,000 रुपये मिल जाए तो गरीबों और दुखियों में, एक दीन दुखियों में बांट दूंगा, और किसी की भलाई हो सकती है तो वो भी मैं खर्च कर दूंगा। ये हमें मैसेज आया है झारखंड से, शिवा गोप और प्रेम गोप का मैसेज हम तक पहुँचा है। और ये मैसेज हम तक पहुंचा है, अगर मुझे 10,000 रुपये मिल जाएं तो अच्छे से मैं सबसे बात करना चाहूंगी, मैं अपना कम से कम 5 साल का रिचार्ज करवा लूंगी। भाई ये तो बात है, अगर आपका ऐसा रिचार्ज होना मुमकिन है तो भाई मुझे तो नहीं पता ऐसी कोई स्कीम भी है हमारे पास, मैं उस पैसों को समाज की भलाई में खर्च करूंगा, क्योंकि ये पैसे बिना मेहनत के हैं, और खाना खिलाना, बुक्स दिलाना, खिलौने दिलाना, ये बहुत ही अच्छा काम है। संजय का मैसेज हमें मुंबई से आया है, और ये है कि मैं अगर मुझे मिले तो मैं अपनी वाइफ को लेकर जाऊंगा बाहर, उस पर खर्च करूंगा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पैसे मिले तो उसका हक भी उतना ही बनता है। ये मैसेज हमारे पास आया मोहम्मद इम्तियाज का, सलमा बेगम का, कीर्ति नगर से हमको ये मैसेज आया है, मुझे अगर 10,000 रुपये मिल जाए तो किस्मत से तो उनको शगुन समझ कर पहले कुछ हिस्से से प्रसाद अर्पण करूंगा, और फिर 10,000 से कुछ ना कुछ खरीदने के लिए सोचूंगा ज़रूर। और ये मैसेज हमारे पास आया है, रीता का मैसेज, शिल्पा का मैसेज, आकाश का मैसेज आया है कि 10,000 हमें मिलेंगे तो बीवी बच्चों को लेकर बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए चले जाएंगे और खूब डिनर करेंगे और बाज़ार में घूमेंगे। तो चलिए, बहुत सारी प्लानिंग आपने कर ली है, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से अगर आपके पास आ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे, आप कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। 10,000 रुपये मिल जाए, संजय का मैसेज हमें आया है कि 10,000 रुपये मिल जाए तो आइसक्रीम का बिजनेस शुरू कर लूँगा, और अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्लानिंग भी ज़रूर करूँगा। तो चलिए, कुछ ना कुछ ऐसा होता ना, कई बार हमें बहुत सारी, बहुत आसानी से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन हमें खर्च करने के बारे में पता नहीं होता, तो ये भी एक अच्छी सोच है कि अगर आपको पता है कि अगर आपके पास इतने पैसे आ जाए तो उन्हें खर्च कहाँ करना है, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपके बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस हम तक पहुँचे, और मुक्ति कहेगी आपसे इतना ही कि अपनी लाइफ को फुल ऑन इन्जॉय कीजिए, और अभी 8 बजे भी मैं आपसे मिलूँगी प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती में, तो ये मस्ती चलती रहनी चाहिए, मस्ती बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। एक ब्यूटीफुल ट्रैक पहुंचेगा सीधा आप तक।

ले जाए प्यार हर जाई। 200 FM रेनबो आकाशवाणी, आइए डाले नजर अब तक की सुर्खियों पर। द न्यूज हेडलाइंस ऑन टॉप ऑफ द आवर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेज रीसेंट नेचुरल डिजास्टर्स अंडरस्कोर द नीड फॉर रोबस्ट क्लाइमेट एक्शन। एड्रेसेस कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट डायनामिक्स इन न्यू दिल्ली। चीफ ऑफ द बैंड नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन तृतीय प्रस्तुति कमेटी कैरिंग 30 लाख रुपी बाउंटी killed in an encounter with Uttar Pradesh ATS in Varanasi. Rashtriya Sankalp Samaroh as a part of Nasha Mukt Bharat Abhiyan being organized at various locations across the country to eradicate drug abuse among the youth. India and Japan conduct joint air self-defense force in Jodhpur. Two-day air show of Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force concludes in Meerut today. Iran says Strait of Hormuz will remain closed until its conditions are met and US commitments are implemented. Regional tensions continue to

0: की वाणी आकाशवाणी।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर।

0: कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी,
1: हम सब की वाणी आकाशवाणी। एंड वन ऑफ आर उर्दू पोएट्स फॉर दिस इवनिंग इज मिर्जा गालिब ऑफ दिल्ली। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। कते कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। मेरे होने में है क्या रुसवाई, ये वो मजलिस नहीं खलवत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही। अपनी हस्ती ही से हो जो कुछ हो, आगे गर नहीं गफलत ही सही। उम्र हर चंद की है बर के खिर्राम, दिल के खूं करने की फुर्सत ही सही। हम कोई तर के वफा करते हैं ना सही, इश्क मुसीबत ही सही। कुछ तो दे ऐ फलक ए ना इंसाफ, आह हो फरियाद की रुखसत ही सही। हम भी तस्लीम की खूं डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। यार से छेड़ चली जाए असद, गर नहीं वसल तो हसरत ही सही।
2: And since Mirza Ghalib is dead and has stayed dead for a long time now, here's a bit of mega death. Apologies for the poor joke. Time for us to sweat bullets, because at 7:30 p.m. we shall check what is happening in the land of the rising sun, Japan. What is the Indian contingent doing there? How many medals are we winning? And how many are we on the course for? We are already a Commonwealth superpower, an Asian sports superpower, and hopefully soon we shall also be an Olympic sports superpower.
3: Oh, me? Meet the real me.
2: Stay tuned for the update, which will come up at 7:30 p.m.
3: It's my most valued possession. Hindsight is always 20/20. But looking back, it's still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story. Tell me.

0: It is time for the Asian Games 2026 update.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: नमस्कार, जापान के आईची नागोया में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ मैं हूं कविता
3: एंड आई एम दर्पंतिकिया। इट हैज बीन अ फैसिनेटिंग डे फॉर द इंडियन कंटिंजेंट। ऑफ कोर्स वी हैव गिवन यू द अपडेट हाउ द हॉकी टीम्स डोमिनेटेड देयर ओपनिंग फिक्स्चर बोथ मेन एंड वुमेन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अ लॉट ऑफ गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। शूटिंग रेंज इज वेयर इंडियाज फर्स्ट मेडल्स केम फ्रॉम, टू सिल्वर मेडल्स इन द वुमेन्स 10-meter air rifle, one coming in the team event, one an individual medal won by Elavalin Valarivan. So two silver medals to India are confirmed. Apart from that, we are also assured of another medal coming from the women's cricket team who defeated Bangladesh in the semi-final today and will now be competing against Sri Lanka for the gold medal on the 22nd of September.
2: इसके साथ ही पदक की उम्मीद बरकरार है और एक पदक सुनिश्चित पहले ही हो चुका है। मैं बात कर रही हूँ एमएमए में कांस्य पदक सुनिश्चित करने वाली सुचिका की, जो अपना मुकाबला कल खेलेंगी सेमीफाइनल में।
3: Right, and apart from that, a lot of action is in store tomorrow. So these were the highlights of today, but what's in store tomorrow? Suchika's match is definitely one to keep an eye on. She will be competing in her semi-final. And apart from that, soft tennis will be on display tomorrow, where the mixed doubles pair of Aditya

0: Tiwari and Jay Meena will be taking the court. Remember, this is a pair which won the bronze medal in the World Championship as well as in the Asian Championship. Tomorrow, they are supposed to compete in three matches back to back. One against Cambodia, the other one against Mongolia, the third one against South Korea. And if they make good in these three matches, then they obviously progress towards the knockouts and reach the medal stage. As well.
1: बात करते हैं तैराकी की, जहां आज का दिन तो कुछ खास नहीं लेकर आया, लेकिन कल हो सकता है उम्मीदें बरकरार रहें। बात करेंगे आकाशमणि की, जो 50 मीटर फ्री स्टाइल में कल तैराकी करेंगे। इसके साथ साथ जितेश 50 मीटर फ्री स्टाइल में रहेंगे। इसके साथ साथ धनु सुरेश 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में रहेंगे। बात करते हैं 4x200 मीटर रिले में शिरकत करेंगे दक्षिण शशि, अनीश गौड़ा, सत्य प्रकाश और वेदांत माधवन। इसके साथ ही 50 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास और हरि नटराज दिखाई देंगे।
0: Right, and then shooting, of course, can't keep your eyes off shooting, can we? Men's 10 meter air rifle will get underway. Himanshu Dhillon, Parth Mane and Rudraksh Patil will be in action. Then skeet competitions will also start. The men's team will have Ananjit Singh Naruka. Apart from him, there will be Bhavteg Gill and of course Mehraj Ahmed Khan. In the women's skeet, there will be Reza Dhillon, there will be Maheshwari Chauhan and there will be परिणाज धालीवाल एज वेल।
1: पारंपरिक मुकाबलों की बात करें तो सबसे पुराना खेल कबड्डी भी कल अपनी शुरुआत करने जा रहा है। मेंस कबड्डी टीम का सामना जापान से होगा और महिलाओं को होगा बांग्लादेश के साथ। वहीं बात करते हैं हॉकी की, जिसमें शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय महिला टीम पूरे जोश में है और कल टीम का मुकाबला इंडोनेशिया के साथ होने वाला है।
0: Let's not forget table tennis, where the men's team and the women's team both will be locking horns with arch rivals Pakistan. So it is India versus Pakistan in the men's team event as well as India versus Pakistan in the women's team event. Also, let's not forget another racket sport. We are talking about badminton, where today the women got off to the perfect start, but tomorrow the men will be expected to do the same. So Lakshya Sen, Ayush Shetty, HS Pranoy, Kidambi Srikanth, Chirag Shetty, Satvik Sairaj, Ranki Reddy and a few other names are in the squad. Who will take the court in their match against Bangladesh remains to be seen.
1: वुशु में जहां आज के दिन का अभियान तो हमारे खिलाड़ियों का समाप्त हुआ, लेकिन कल का दिन नई शुरुआत लेकर आएगा। सांडा में आर्यन 56 किलोग्राम भार वर्ग में अफगानिस्तान के शहजाद शाफी के साथ भिड़ेंगे। वहीं महिलाओं में 60 किलोग्राम के सांडा में रोशिबीना देवी हमें दिखाई देंगी। चांगकुआंग में महिलाओं में नेमान वांगसू महिलाओं की प्रतिस्पर्धा करेंगी।
0: Right, and in boxing, in the 70 kilogram category, Sumit will be up against Thailand's Sensiri Bunjong. And before all of this, we will have the Sepak Takraw men's team Regu event, where India will be locking horns with Japan. So lot in store tomorrow, but very quickly we'll wrap up with the medals tally.
1: Medal tallies ki baat kare to yahan par Bharatiya team 10th sthan par kabiz hai, 2 silver medal lekar pehle paidan par hai. Yahan par China ki team 11 gold ke साथ दूसरे पायदान पर है जापान 6 गोल्ड मेडल के साथ।
0: In case you missed our hourly updates today, don't worry, because sharp at 10 p.m. on the same frequency, you will be able to hear a consolidated report. With that, me Darpan Tikya and my colleague Kavita Sharma say goodbye. Stay tuned to Akashvani.
2: You're listening to the Asian Games 2026 update.

No, baby, I won't do that. What? That. But I shall certainly anchor live wire for you. One of our Urdu poets for the evening is Mirza Ghalib. किसी को देके दिल कोई नवा संजय फुगा क्यों हो, ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में जबां क्यों हो। वो अपनी खून न छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों छोड़ें। सुबुक सर बन के क्यों पूछे कि हमसे सरगिरा क्यों हो। किया गम ख्वार ने रुस्वा, लगे आग इस मोहब्बत को, न लावे ताब जो गम की, वो मेरा राजदां क्यों हो। वफा कैसी कहां का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संग आस्ता क्यों हो। कफस में मुझसे रूदादे चमन, कहते न डर हमदम, गिरी है जिस पे कल बिजली, वो मेरा आशियां क्यों हो। यह कह सकते हो हम दिल में नहीं है, पर यह बतलाओ कि जब दिल में तुम ही तुम हो तो आंखों से निहां क्यों हो। गलत है जज्बे दिल का शिकवा, देखो जुर्म किसका है, ना खींचो गर तुम अपने को, कशाकश दरमियां क्यों हो। ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं, अदू के हो लिए जब तुम मेरा इम्तिहान क्यों हो। कहा तुमने कि क्यों हो गैर के मिलने में रुसवाई, बजा कहते हो सच कहते हो फिर कहियो कि हाँ क्यों हो। निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, तेरे बेमहर कहने से वो तुझ पर मेहरबान क्यों हो। दिस इज व्हाट अमेरिकन हार्ट्स लुक लाइक, दिस इज व्हाट अमेरिकन हार्ट्स फील लाइक, and this is what American hearts smell like. Sniff, sniff, the sound of air supply. Supply of great music brought to you on air by the mighty 102.6 mind-blowing megahertz of Akashvani. We who have been in the business of broadcasting for more than 9 decades now, take it away.

वाणी आकाशवाणी। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

नमस्कार, 8 बज चुके हैं। आकाशवाणी रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस उपाय जरूरी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में युवा एकजुट हो रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एयर शो का अवलोकन किया। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अपने 23 वर्ष के सफर में भारत और विदेशों में 800 से अधिक एयर शो में प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ETS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। नेपाल बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। इस आपदा में अब तक 1400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 6000 लोग अभी भी लापता हैं। पाकिस्तान में अधिकारियों ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन आलिमा खान को हिरासत में लिया। ये कार्रवाई उनके पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के अगले सप्ताह प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले की गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने जापान के आईजी नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेलिन वला रिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद की टीम ने देश का पहला पदक दिलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं को पदक जीतने पर बधाई दी। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

जी हाँ, वीकेंड है, कल से ऑफिस या अपने अपने कामों में लग जाना है। और वीकेंड को कैसे एंजॉय आप कर रहे हैं? खूब घूम फिर रहे होंगे, साथ ही साथ खाने पीने का इंतज़ाम भी आज बाहर ही किया होगा कि भाई हर रोज़ तो हम लगे रहते हैं किचन में या कामों में, आज थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं क्योंकि फिर वही आपाधापी की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। बस वही तो है, यही सोचते रहते हैं लेकिन आज में जीना है ये हम भूल जाते हैं। चलिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, वीकेंड तो ऐसा होता है कि उसमें आप जिम से एक्सरसाइज से भी छुट्टी कर ही लेते हैं, लेकिन हाँ एक वॉक तो निकल ही जाती है, एक वॉक के लिए टाइम तो हो ही जाता है क्योंकि अगर बाहर भी आप कहीं जाते हैं तो हर समय गाड़ी में बैठे रहते हैं, हर समय बाइक पे रहें, हर समय ऑटो में रहें, ऐसा तो मुमकिन नहीं होता है। थोड़ा बहुत चहलकदमी तो हो ही जाती है, तो यही सबसे अच्छा वीकेंड है इसको फुल टू इन्जॉय करने का। और आज कहते हैं ना, चीट डे भी मना सकते हैं, जो कुछ खाना है जी भर के खाना है खा लीजिए, खूब इन्जॉय कर लीजिए क्योंकि समय जो है ना वो किसी के लिए रुकता नहीं, और समय जिस गति से चलता है ना उसे चलते रहना चाहिए क्योंकि ना हम इन्हें रोक सकते हैं ना हमें रुकना चाहिए। फिलहाल मैं हूं आपके साथ प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में, आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, और ये मस्ती यूं ही चलती रहेगी ठीक 9 बजे तक।

0: यहाँ पर बैक टू बैक सॉन्ग्स होंगे आपके लिए, तो बस देर किस बात की, झूमते रहिए, इंजॉय करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना जो आने वाला कल होता है उसकी ज़्यादा टेंशन रहती है, जिसमें हम हैं वो हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहता। तो अभी आप बिल्कुल बढ़िया से जो भी खा पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, रास्ते में भी अगर आप हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं इस म्यूज़िक मस्ती को, क्योंकि ये जो मस्ती ना कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा आपके लिए बनी रहती है। फिलहाल यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक बाद जल्द हाजिर होंगे आपके साथ।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
8: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

जी हाँ, आप भी हमें बहुत बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए आपसे मिलने के लिए हम आ जाते हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में 102.6 पर। दिल से दिल का ये कनेक्शन हमेशा बने रहना चाहिए, बस यही तो कनेक्शन है जो हमें जिंदा रखे हुए है आपके लिए, और ये ब्यूटीफुल कनेक्शंस बस बने रहते हैं। और लाइफ में ऐसे बहुत से कनेक्शंस हैं जो हम अपने आप से, अपने लोगों से, अपने आसपास के लोगों से खूबसूरत रिश्ते बना के रखते हैं, और जब ये खूबसूरत रिश्ते हमारी जिंदगी में आते हैं तो चाहे वो वीकेंड हो या वीकडेज हो, सब के सब खूबसूरत हो जाते हैं, फिर भूल क्यों हो जाते हैं इस आपाधापी भरी लाइफ के अंदर। देखिए, जिंदगी में परेशानियां भी आएंगी, खुशी भी आएंगी, टेंशन भी आएंगी, और कुछ ऐसे मंगलमय पल भी आएंगे जिन्हें देखकर आपको लगेगा अरे इन्हीं की तो तलाश थी, ये कहां चले गए थे, जाते कहीं नहीं है, बस हम ही भूल जाते हैं। और वो जो भूल है ना, उसी को हमें सुधारना है, या फिर कह सकते हैं कि उसी को हमें सही करना है। मुझे पता है कि आप वो सही कर लेंगे, और उसे सही जरूर कीजिए, क्योंकि अगर वो सही ना तो सब कुछ सही है। और वैसे भी आकाशवाणी रेनबो पर और प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती हो, मुक्ति साथ में हो, तो ज्ञानवर्धक बातों का सिलसिला ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ज्ञानवर्धक बातों के सिलसिलों के साथ में जो मैंने प्लेलिस्ट बनाकर लाई हूँ ना, खास आपके लेकर आई हूँ, और बैक टू बैक सॉन्ग्स का ये सिलसिला कहीं और भी आपको नहीं मिलेगा इतने धमाकेदार, तो फिर कहीं और वैसे भी जाना ही क्यों है। आप बने रहिए हमारे साथ।

चलिए फाइनली कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चल रहा है और जो कि चलते भी रहना चाहिए। देखिए चलना तो प्रकृति का नियम है और प्रकृति के साथ हम चल रहे हैं, समय भी अपनी गति से चल रहा है और सॉन्ग्स भी अपनी गति से चल रहे हैं, क्योंकि वो सभी सॉन्ग्स जो हम आपके लिए लेकर आए हैं आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बस बात इतनी सी है कि उस मस्ती में आप भी रंग जाइए हमारे साथ में, क्योंकि यही बात है जो हम नहीं समझते हैं और जिसे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।

जी हाँ बिल्कुल, साढ़े नाल ही आपको रहना है, यानी कि 102.6 के साथ जुड़े रहना है, और साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हम लगातार आप तक पहुंचते रहेंगे। 102.6 पर म्यूजिक है, मस्ती है, आपका मनोरंजन और साथ ही इंफोटेनमेंट भी आपको मिलता रहता है। तो फिर कहीं और क्यों जाना है, बस बने रहना है हमारे साथ में। फिलहाल मुक्ति कहेगी आपसे इतना ही कि आगे आने वाले प्रोग्रामों की रूपरेखा मैं आपको बता देती हूँ। अब से कुछ ही देर यानी कि 9 बजे आप सुनेंगे जरीन नाज को, प्रोग्राम आपकी याद आती रहे। फिर समय रहेगा आपके लिए 10 बजे का, और उसमें आप डेली हाईलाइट कैप्सूल भी सुनेंगे, और उसके बाद आपके साथ रहेंगे संडे रिक्वेस्ट शो के लिए सुप्रदीप मुखर्जी। और फिर 11 बजे का समय रहेगा रंगे महफिल, जिसमें जरीन नाज रहेंगे आपके साथ। तो मुक्ति कहेगी आपसे इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्यार की इज्जत कीजिए। आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। अपना खास ख्याल रखिए।

रात के 9 बज चुके हैं और लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए के इनामी नक्सल कमांडर को मार गिराया गया। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को शहर में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को निशाना बनाया। नेपाल बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। इस आपदा में अब तक 1400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 6000 लोग अभी भी लापता हैं। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। तो ये थी इस घंटे की खास खबरें और अब पेश है कार्यक्रम आपकी याद आती रही।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: जी हाँ 9:02 आपकी याद आती रही प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं जरीन। खुशी ना जिंदगी के उन पलों का नाम है जिन्हें हम खोना नहीं

चाहते। ये लम्हे मेहमान की तरह आते हैं और गुजर जाते हैं हमारे ना चाहने के बावजूद। शायरों ने इन लम्हों को लफ्जों में कैद करने की बहुत कामयाब कोशिशें की हैं। साहिर लुधियानवी साहब कहते हैं, अरे ओ आसमां वाले, बता इसमें बुरा क्या है, खुशी के चार्ज होके घर इधर से भी गुजर जाए। पहला ट्रैक आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोग्राम में अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म कसूर।

फूल तितलियां खुशबू रंग शायरी रातें एक तेरे होने से कितने जाविये निकले। मेरे लफ्जों की खूबसूरत रंगीन तितलियां उड़ती फिरती हैं अक्सर यहाँ वहाँ, चहकती हैं उचक उचक कर नन्ही मासूम चिड़ियों की तरह।

जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि लफ्जों की खूबसूरत रंगीन तितलियां उड़ती फिरती थी अक्सर यहाँ वहाँ, चहकती रहती थी उचक उचक कर नन्ही मासूम चिड़ियों की तरह। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि इनके जो शोक रंग हैं वो फीके कर दिए जाते हैं वक्त की तेज़ धूप में, और ये चमकती नहीं है, धुंधला जाती है रिवाजों के सख्त बेरंग दाइने में। मगर इनके उड़ने की दबी दबी ख्वाहिश इनके भीतर ही इससे सकती रहती है, और इनके रंग अब उभर कर आते नहीं हैं, सहमते रहते हैं, दिल की आवाज़ कहीं दब सी जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि दिल को ना कभी कभी आवारा होने दीजिए, यूं ही बेवजह इधर उधर भटकने दीजिए, क्योंकि दिल तो दिल है, दिल की बातें दिल ही जाने। और जब मन में बेचैनी हो जाए, कुछ समझ ना आए, तो निकल जाइए कुछ दूर, बहुत दूर, थोड़े से सुकून के लिए कुछ समय अपने लिए देना भी ज़रूरी होता है। रास्ते भागे पांव से आगे ज़िंदगी से चलकर कुछ और मांगना भी ज़रूरी होता है, ये कहना भी ज़रूरी होता है कि कहाँ जाएं, किधर जाएं, और दिल कहता है जहाँ मन हो वहीं जाओ। बहरहाल, ये अगला ट्रैक आपके लिए लेकर आई हूँ मैं हेमा सारा देसी की आवाज़ में आपके लिए। 90s का ये हेमा सारा देसाई की आवाज़ का ये जो ट्रैक है सपने फिल्म का, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही ढूंढ कर ये ट्रैक लाई हूँ। आई होप कि मेरी ही तरह आपको भी बहुत सालों बाद ये गाना सुनाई पड़ेगा कानों में।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेड

0: पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आप सुन रहे प्रोग्राम आपकी याद आती रही, आपके साथ मैं आपकी दोस्त जरी। जरा सोचिए, अगर हमारे खाने में नमक शामिल ना हुआ होता, हम खाना तो जरूर खा रहे होते लेकिन उसमें जायका नहीं होता। ये जो संगीत होते हैं ना, कुछ इसी तरह हमारी जिंदगी में जरूरी होते हैं। संगीत जिंदगी की रूह है, इबादत है, ताकत है। एक कश्ती जिस पर सवार होकर बहुत दूर की दौड़ लगाई जा सकती है। संगीत को खास तौर से गीतों के जरिए महसूस किया जा सकता है, जिनमें जज्बात कहने के लिए लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो सिंगर होते हैं, जो गायक होते हैं, उसे अपनी मीठी आवाज के जरिए सात सुरों के तालमेल में इस तरह से बांध देते हैं कि सुनने वाले के दिल तक सीधा पहुंच सके। लेकिन कभी कभी कुछ धुन, कुछ लफ्ज, कुछ अल्फाज, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है सीने को चीर रहे हैं और बिल्कुल रूह तक पहुंच रहे हैं।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: तो अगर हम ये कहें कि हमारे जो प्रोग्राम का आधा सफ़र है वो बीत गया है और स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 9:36 पूरे 50 सेकंड हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट ये जो सफ़र है एक घंटे का, उसको आधा से ज़्यादा हमने पूरा कर लिया। ज़िंदगी भी तो एक सफ़र ही है ना, एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक दिन, एक एक महीने, एक एक साल जो हम जी रहे हैं या यूँ कहें बिता रहे हैं, वो भी तो एक सफ़र की ओर ही चलने जैसा है, बढ़ने जैसा है। और क्या खूब कहा है साहिर लुधियानवी साहब ने कि संसार की हर शय का बस इतना ही फसाना है, एक धुन से आना है, एक धुन में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही न समझा है न जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। क्या जाने कोई किस पर किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में एराही हर मोड़ बहाना है। तो आइए ना इसी बात पर अनुपम रॉय की आवाज में द जर्नी सॉन्ग सुनते हैं ना, पीकू फिल्म की। ये साउंड ट्रैक आप तक पहुंचा रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही में। मैं हूं जरीन।

0: कुछ दिनों में ना सर्दी अपने शबाब पर होगी, ऐसे में लोगों को जितनी ज़रूरत अलाव और सूरज की गर्मी की होती है, उतने ही महबूब के मिलन की भी। आशिकों और शायरों की अगर बात करें तो ये बेचैनी का मौसम होता है। सर्दियों के एहसासात को शायरों ने खूबसूरत अल्फाजों में नवाजा है। वो सर्दियों की धूप की तरह गुरूब हो गया, लिपट रही है याद गर्म से लिहाफ की तरह। आँखें जो दीदार करती हैं या जो दीदार करना चाहती हैं, बहुत ज़रूरी होता है कि जहन में कुछ बात हो जो बार बार दिमाग से दिल तक आए और फिर आँखों से कैद हो जाए। महबूब की शक्ल महबूब से रूबरू। आँखें ना हमारे जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि हज़ारों दिलकश ख्वाबों शायराना ख्यालों का एक कीमती ख़जाना है। शायरों ने महबूब की आंखों की तारीफ में बहुत कुछ लिखा, बहरहाल उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपका कोई महबूब है फिलवक्त, तो ज़रा आंखें बंद करिए ना और इस गाने के ज़रिए उसे बस महसूस करिए। बहुत दिनों बाद लकी अली की आवाज़ में ये ट्रैक आप तक पहुँचा रही हूँ, कहो ना प्यार है मूवी का।
1: राज!
2: Hey, नीता! तुम्हारी मौजूदगी में उसकी मौजूदगी गुमशुदा क्यों है?
1: कौन? ओ सानिया, वो तो सुबह ही गुम होगी, लेकिन आप इतने सुमसुम क्यों हैं?
2: तुम्हारी कजन सोनिया की वजह से। मैं खुद समझ नहीं पा रहा, उसकी एक नजर ही काम कर गई। मैं बता नहीं सकता नीता, वो जिस तरह मुझे देख रही थी, मैं वो आंखें भूल नहीं सकता जिनमें कई सवाल थे। क्या कुछ लिखा था उसके चेहरे पर? So simple, so innocent. और फिर उसका इस तरह चले जाना, I mean, it just left so many questions unanswered, you know?
1: Too much. Oh, wow, Raj, that is so romantic. अगर तुम यही डायलॉग ना सोनिया को कहते तो वो अभी इसी वक्त बेहोश हो जाती।
2: नीता, you've got to help me. मैं उसे मिलना चाहता हूँ, उसे जानना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि जो मैं फील कर रहा हूँ क्या वो भी एग्जैक्टली वही फील कर रही होगी।

सह चुकी हूँ। तुम पर क्या बीती होगी इसका तो शहर में अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो सोनिया, तुम भूल रही हो कि जिंदगी अब भी तुम्हारे साथ

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही, आपके साथ मैं आपकी दोस्त जरी। नर्म हवाएं हैं तुम्हारी ही खातिर, किताबें छोड़ो, कुर्सी से उठो, पहनो चप्पल, बांधो बाल, कमरे से निकलो, छत पर आओ, मुंडेर पर बैठो, हाथ फैलाओ, कोई गाना गाओ, देखो ना कोई आया है तुम्हारी खातिर। फिक्र छोड़ो, आंसू पोछो, मुस्कुराओ, दीवारों से नीचे आओ, शबनम है दरख्तों पर तुम्हारी ही खातिर, हाथ थामो ना, छोड़ो जमी को, चलो सफर पे, अपने पांव रखो पत्ती पत्ती, हाथों से छू डाली डाली, बात करो बादलों से, रूह ना अपनी भिगो डालो, चलो ना बढ़ो ना, चलो चलते हैं।

वेल गाइस, साइनिंग ऑफ तो कुछ ऐसे गाने के साथ कर रही हूँ जैसे लग रहा है बस्ता लूंगी और बस घर की ओर चल पड़ूंगी, लेकिन ना ना ना, पूरे एक घंटे बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी रंगे महफिल में। वेल, साल भर को कुछ शब्दों में बांध कर लोग बाग कितना अच्छा समेट लेते हैं ना, मुझे पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा साल कैसा गया, क्योंकि मेरा हर साल ऐसे ही निकल जाता है सर से, जैसे कि ये शो निकल गया सर से, कब आई कब जा रही हूँ पता ही नहीं चला। लेकिन हाँ, एक उम्मीद रहती है कि आने वाला वक्त बेहतरीन होगा, और जो आने वाला शो है उसमें अभी एक घंटे और आपसे बातें करनी है। तो मैं ये कहती हूँ कि कैसे भी हालात हों, बस ना मुस्कुराते रहिए। ये जो मुस्कुराहट है ना, होठों का वो खूबसूरत घुमाव है जो कई टेढ़ी बातों को ना सीधा कर देता है। तो वेल, जा रही हूँ इस वादे के साथ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक घंटे बाद, और फिर हम गजलें आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इस ट्रैक के साथ आपसे कहना चाहूंगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, FM रेनबो इंडिया सुनते रहिए। अल्लाह हाफिज, शब खैर।

0: Vani, Akashvani.
1: And here is the update for today, for the 20th of September, the Asian Games 2026.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: नमस्कार, खेल की दुनिया से इस वक्त की सबसे अहम रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। एक तरफ जापान की धरती और आईची नगोया का खेल मैदान है, तो दूसरी तरफ हर खेल में पदक की उम्मीद में धक धक करती करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन है। आईची नगोया एशियन गेम्स 2026 का औपचारिक उद्घाटन और दो दिन पहले शुरुआती मुकाबलों के रोमांच के बाद आज से महामुकाबले और पदकों की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकलने की होड़ शुरू हो चुकी है।
4: एशिया के 45 देशों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट यहां जुटे हैं। 43 खेलों के कुल 469 मेडल इवेंट में हर खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार है।
3: तो अब आज की सुर्खियां। भारत ने शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल पर साधा निशाना। एलेवेनिल वलारिवन विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 0.6 अंक से गोल्ड से चूकी। एलेवेनिल सोनम मस्कर और विदार्सा विनोद को टीम इवेंट में भी सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में सुचिका दरियाल ने इतिहास रचा, सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची, खिताब के लिए श्रीलंका से होगा मुकाबला। हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों का धमाकेदार आगाज, अपने अपने वर्गों में हासिल की बड़ी जीत। और बैडमिंटन में महिला टीम ने अपना पहला मैच आसानी से जीता, अब जापान से अगला मुकाबला।
4: वक्त बदल रहा है और खेल भी। इस साल एशियन गेम्स में 6 नए खेलों को पहली बार मेडल स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया है। ये खेल है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, पैडल, सर्फिंग, टेक बॉल, वर्चुअल टाइकोंडो और बीएमएक्स फ्रीस्टाइल। भले ही खेल नए हो, लेकिन भारतीयों का जज्बा पुराना और आक्रामक है। जापान की धरती पर इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला पदक सुचिका तरियाल ने पक्का कर लिया है। सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेडिशनल कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर दुनिया को बता दिया है कि नए दौर के नए खेलों में भी भारत किसी से पीछे नहीं है। एमएमए में सुचिका की सफलता के बारे में बता रही हैं कविता शर्मा।
5: आईची नगोया एशियन गेम्स में मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत के लिए आज का दिन मिलाजुला रहा। महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के 36 वर्षीय सुचिका तारियाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया की अल्तानची मेग बैगलमा को क्वार्टर फाइनल में 2-0 से हराया और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ सुचिका ने एशियन गेम्स के इतिहास में एमएमए में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दोनों हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिलता है, इसीलिए सुचिका का कम से कम कांस्य पदक तय हो चुका है। वहीं पुरुषों के 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल का अभियान मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वजन वर्ग में आने के लिए वजन घटाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें चक्कर आए और वो बेहोश हो गए। मेडिकल जांच के बाद उन्हें प्रतियोगिता के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई और बाद में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस तरह सुचिका ने इतिहास रचा, तो दूसरी तरफ वरुण के लिए दिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। भारत की नज़र अब सुचिका के सेमीफाइनल मुकाबले पर है।
3: सुचिका ने इन खेलों में भारत का पहला मेडल भले

0: किया, लेकिन पहला मेडल शूटिंग में मिला। कमाल के मेंटल स्ट्रेंथ और सटीक निशाने साधने के इस खेल में पहले दिन भारत की सफलता की जानकारी दे रहे हैं दर्पण तिकिया।
1: एशियन गेम्स 2026 में सफलता का पहला समाचार शूटिंग रेंज से आया है। 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धाओं में महिला निशानेबाजों ने टीम इंडिया को दिलाए हैं 2 सिल्वर मेडल। पहला टीम इवेंट में एलावनिल वलारीवन, सोनम मास्कर और विदर्शा विनोद की तिगड़ी के नाम रहा। भारतीय टीम ने पिछले एशियन गेम्स रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए कुल 1898 अंक हासिल किए। हालांकि चीन से आने वाली तिगड़ी ने 1904.2 अंक हासिल कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सोनम मास्कर ने क्वालिफाइंग एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 634.1 अंक हासिल किए। वहीं दिग्गज खिलाड़ी एलावलिन ने 633.5 तो विदर्शा ने 630.4 अंक हासिल किए। इस प्रदर्शन के चलते एलावलिन और सोनम 10 मीटर एयर राइफल के वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई की। एकल प्रतियोगिता के फाइनल में जहां सोनम के हाथ छठा पायदान लगा, तो वहीं एलावनील लगातार गोल्ड मेडल पोजीशन पर बरकरार रही। हालांकि उनके अंतिम कुछ शॉट निशाने से अंश मात्र ही भटके और वो मेजबान जापान की हिनाटा ताइची से 0.6 अंकों से पिछड़ गईं। कुल 253 अंक हासिल कर ताइची ने नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं भारत की एलावनिल वलारीवन के हाथ सिल्वर मेडल लगा। जापान जाने से पहले उन्होंने यही बताया था दैट शी इज ट्राइंग टू स्टे इन द प्रेजेंट।
2: मुझे लगता है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी तो वो मेरे उस दिन के लिए काफी रहेगा एंड मैं बस उसी पे फोकस कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हम यही चाहते हैं कि इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर रहे।
0: एशियन गेम्स के जरिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन का लक्ष्य लेकर उतरी भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम्स ने अपने अभियान की शुरुआत उम्मीदों के अनुरूप की। महिला टीम ने ग्रुप के अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को तो पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को टिकने का मौका ही नहीं दिया, बता रही हैं अमीषा।
3: भारतीय महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए पूल बी के ग्रुप स्टेज के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 के बेहद विशाल अंतर से मात दी, जिसमें भारतीय फॉरवर्ड दीपिका सहरावत ने इंडिविजुअल 8 गोल दागे, जिसमें 6 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए आए। ये किसी भी महिला हॉकी फील्ड मैच में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा किया गया विश्व रिकॉर्ड जैसा एक बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन है। इसके अलावा इशिका चौधरी ने एक शानदार हैट्रिक लगाई। वहीं लालरम सियामी, बलजीत कौर, नेहा गोयल, लाल थंथलुंगी और साक्षी राणा ने भी गोल करने में अपना योगदान दिया। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बना लिया था और पहले हाफ में ही 8-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी, जो दूसरे हाफ में 11 गोल्स के साथ 19-0 हो गई। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अब भारतीय महिला हॉकी टीम का अगला ग्रुप स्टेज मैच कल इंडोनेशिया के खिलाफ होगा। वहीं दूसरी तरफ मेंस हॉकी में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम ने अपने पूल ए के ग्रुप मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से शिकस्त दी, जिसमें दिलप्रीत सिंह ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए 4 शानदार गोल दागे। भारत ने शुरुआत में ही आक्रामक खेल दिखाते हुए हाफ टाइम तक 7-0 की बढ़त बना ली थी, जो सेकेंड हाफ के अंत तक 13-1 हो गई। इस मैच में 8 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल किए, जिसमें दिलप्रीत के अलावा अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा, राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह शामिल थे। इस जीत के बाद भारत का अगला ग्रुप स्टेज मैच 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होगा।
0: टेबल टेनिस में भी भारत की दोनों ही वर्गों में धमाकेदार शुरुआत हुई। इस खेल में मजबूत शुरुआत महिला टीम ने की। भारतीय टीम ने ग्रुप एफ के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया को 3-0 की करारी शिकस्त दी। पहले मैच में शिजा अकुला ने अपनी प्रतिद्वंदी एन महरानी को करारी शिकस्त दी। शिजा ने यह मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में दिया चिताले ने अपनी प्रतिद्वंदी अलमायरा नेबुच डनेजर को पांव जमाने का भी मौका नहीं दिया। दिया ने अपनी विरोधी को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से मात दी। इसके बाद बारी थी अनुभवी यशस्विनी घोरपड़े की। उन्होंने भी निराश नहीं किया और इंडोनेशियाई खिलाड़ी चित्रा रश्मि का 3-0 से क्लीन स्वीप किया। ग्रुप बी के दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम ने 14वीं रैंकिंग वाली टीम सिंगापुर को बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-2 शिकस्त देकर दूसरी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने पहला मैच 3-1 से जीता, दूसरे मैच में श्रीजा

0: अकुला को लॉय मिंग ने 2-3 से हराया। टाई का तीसरा मैच सिंगापुर की तेंझाओ ने दिया चिताले को 3-1 से हराकर जीता। चौथे मुकाबले में शिजा अकुला ने भारत को वापसी कराई। उन्होंने जेंग जियान के खिलाफ ये मैच 3-1 से जीता। टाई 2-2 पर पहुंच गया। अब बारी थी पांचवें यानी निर्णायक मुकाबले की। यशस्विनी घोरपड़े का सामना 15 साल की लॉय मिंग से था। हर खेल प्रेमी की धड़कन बढ़ी हुई थी। इसी बीच लॉय मिंग ने पहला गेम 11-5 से जीत कर बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद यशस्विनी ने 11-8 12-10 से जीत हासिल कर वापसी की। फिर मिंग ने चौथा गेम 4-11 से जीत लिया। मैच का फैसला पांचवें गेम पर पहुंचा। इसे यशस्विनी ने 11-9 से जीत कर भारत को लगातार दूसरा मैच जिता दिया। भारतीय पुरुष टीम ने भी जीत से शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पहला मैच जी साथियान और मोहम्मद नेगारा के बीच खेला गया, जिसे जी साथियान ने 3-0 से आसानी से जीता और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। मानव ठक्कर और मोहम्मद जुनिंद्रा के बीच खेला गया दूसरा मैच बेहद नजदीकी रहा। इस रोमांचक मुकाबले में मानव ने 3-2 से जीत हासिल की। तीसरा मैच मानुष शाह और अफ़ान प्रातामा के बीच खेला गया, जिसे मानुष शाह ने 3-0 से जीत कर भारत की जीत पक्की कर दी। हालांकि दूसरे मुकाबले में 15वीं रैंकिंग वाले भारत को 20वीं रैंक वाली टीम ईरान ने एक तरफा अंदाज में 3-0 से हराया। उधर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने उम्मीदों के अनुरूप अपने अभियान का आगाज किया है, बता रही हैं अमीशा।
1: 20वें एशियन गेम्स आईची नगोया में बैडमिंटन के विमेंस टीम इवेंट के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इंडियन टीम ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। इस पूरे टाइम में इंडियन शटलर्स ने शुरुआत से ही कोर्ट पर अपना फुल कंट्रोल बनाए रखा। मैच की शुरुआत की भारत की स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने। सिंधु ने कजाकिस्तान की कामिला समागुलोवा को स्ट्रेट सेट्स में 21-7 21-9 से हराकर भारत को 1-0 से शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरी सिंगल्स खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्नति ने अपनी रफ्तार और सटीक स्मैश के दम पर कजाकिस्तान की अलीसा कुलेशोवा को 21-7 और 21-10 से हराकर ये मैच अपने नाम कर लिया। इस समय मुकाबला पूरी तरह भारत की झोली में था और फिर आखिर में जीत की इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए कोर्ट पर उतरी युवा शटलर तन्वी शर्मा। तन्वी ने कजाकिस्तान की विपक्षी खिलाड़ी डियाना नामेनोवा को 21-5 और 21-10 से एक तरफा मुकाबले में हराकर मैच अपने नाम कर लिया, जिसके चलते भारत 3-0 से अजेय बढ़त बना पाया और क्वार्टर फाइनल्स का टिकट कंफर्म किया। अब इंडियन टीम इसी जीत के इरादे से 22 सितंबर को होस्ट कंट्री यानी जापान से भिड़ेगी।
0: शारीरिक चपलता और स्टेमिना के खेल टेक बॉल में हम ऐतिहासिक पदक के करीब पहुंचकर चूक गए, परिणाम के बारे में बता रही हैं कविता।
2: डेब्यू हुए टेक बॉल से पदक की उम्मीदें थी, लेकिन दिन की शुरुआत निराशा के साथ हुई। महिला सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में क्विंसी डिसूजा को जापान की विश्व नंबर 7 युइना साकामोटो के खिलाफ 2 सेटों में सीधे हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम बेहद करीबी रहे, लेकिन क्विंसी दोनों सेट 11-12 के अंतर से हार गयी। इसी के साथ टेक बॉल में अगला मुकाबला हुआ मिक्स डबल का, जहां एक और कांस्य पदक दांव पर था, लेकिन ये मुकाबला भी भारतीय टीम वियतनाम की जोड़ी से हार गई। मिक्स डबल्स में क्विंसी और मोहम्मद अनस इमराद बेग की जोड़ी वियतनाम से 12-9 12-6 से हार कर बाहर हो गई। ये अभियान यहां जरूर समाप्त हुआ, लेकिन क्विंसी ने अपने मुकाबले जीतने के लिए पूरी मशक्कत की। क्विंसी लगातार मुकाबलों के बीच दर्द में दिखी, जहां मुकाबला कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा। खेल के दौरान क्विंसी का दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसका नतीजा उनकी परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिला और इस तरह से एशियन गेम्स में टेक बॉल में भारत का अभियान बिना पदक के समाप्त हो गया। पर भले ही ये खिलाड़ी मुकाबला हार गई हो, लेकिन खेलों के एक नए रूप टेक बॉल की पहचान जरूर बन गई।
0: तैराकी में इस बार भारतीय दल बड़ी उम्मीदों के साथ उतरा है। इस दल को न सिर्फ अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर करना है, बल्कि पदक जीत कर भी लाना है। हालांकि पहले दिन तैराकी में भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। पुरुष 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास ने हीट में शुरुआत तो अच्छी की और कमाल का प्रदर्शन करते हुए 54.85 सेकंड का समय निकाला। वे अपनी हीट में तीसरे और ओवरऑल 5वें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। हालांकि पदक की दौड़ में वे चीनी और जापानी खिलाड़ियों की तगड़ी चुनौती के बीच पोडियम तक नहीं पहुंच सके। फाइनल में ऋषभ ने टाइमिंग के लिहाज से अपने प्रदर्शन को और निखारा, फिर भी वे 54.77 सेकंड का समय लेकर 9 खिलाड़ियों के मुकाबले में 6ठे स्थान पर रहे। इसी स्पर्धा के हीट में उत्कर्ष पाटिल ने 56.19 सेकंड का समय लिया और ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे। इस तरह वे फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल में रोहित बेनेडिक्टन अपनी हीट में 50.25 सेकंड के समय के साथ 5वें स्थान पर रहे। वह ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। इसी इवेंट में आकाश मणि ने 50.85 सेकंड का समय निकाला और अपनी हीट में 8वें स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन से वे भी फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अपने खिताब के बचाव के लिए उतरी महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की टीम के साथ दो दो हाथ किया और जीत के साथ स्वर्ण पदक के और करीब पहुंच गई है। अमीषा की रिपोर्ट।
1: आज जापान के कुरुगी स्पोर्ट्स पार्क में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी जब बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मुकाबले में नाबाद शतक लगाकर शिफाली वर्मा ने क्रिकेट के इतिहास में एशियन गेम्स में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। शिफाली ने मात्र 49 गेंदों में 100 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली जिसमें 9 छक्के और 3 चौके शामिल थे। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजों के बाद अब बारी गेंदबाजों की थी। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम भारतीय गेंदबाजी और बड़े लक्ष्य के प्रेशर के आगे टिक नहीं पाई और महज 81 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा और नंदिनी शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए और भारत ने 114 रनों के विशाल अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अब भारत अपना सिल्वर मेडल तो पक्का कर चुका है, पर अब उनका लक्ष्य अपना गोल्ड मेडल बचाने पर होगा।
0: वुशु में भारत के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही, बता रही है कविता।
2: भारतीय वुशु खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहा। भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम, अपर्णा धैया और विक्रांत बालियान अपने अपने मुकाबलों में पदक की दौड़ से बाहर हो गए। दिन की शुरुआत पुरुषों के चांगक्वान फाइनल से हुई जहां भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम ने 21 खिलाड़ियों के बीच 9.683 अंक के साथ 11वां स्थान हासिल किया। सूरज ने क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में 5.000 और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में 2.000 अंक हासिल किए जबकि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर 2.683 रहा। इसके बाद महिलाओं की 52 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में भारत की अपर्णा धैया का मुकाबला ईरान की सोगंध सिंकाई चेतान से हुआ। राउंड ऑफ 16 में अपर्णा को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों राउंड में उन्हें 5-0 के स्कोर से हार मिली और इसके साथ ही उनका एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। वहीं पुरुषों की 75 किलोग्राम सांडा में भारत के विक्रांत बालियान का सामना ईरान के सोहेल मौसवी से हुआ। विक्रांत को भी राउंड ऑफ 16 में 0-2 से हार मिली और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस तरह 20 सितंबर को भारतीय वुशु के तीनों मुकाबलों में भारत को जीत नहीं मिल पाई।
0: और अब बात कल के मुकाबलों की। सेपक टेकरा में भारतीय पुरुष रेगु टीम की भिड़ंत ग्रुप बी में जापान से होगी। शॉट टेनिस में मिक्स डबल्स में जय मीणा और आद्या तिवारी का सामना ग्रुप बी में कंबोडिया से होगा। फिर ये भारतीय जोड़ी मंगोलिया के साथ खेलेगी। इन्हें दक्षिण कोरिया से भी मैच खेलना है। वुशु में न्यमान वाक्सु महिला चेंगक्वान में चुनौती रखेंगी। पुरुषों के 56 किलोग्राम वर्ग में आर्यन राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के प्रतिद्वंदी का सामना करेंगे। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मेंस कैटेगरी के व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन, पार्थ मान्य और रुद्रांश पाटिल निशाना साधेंगे। पुरुषों के स्कीट इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन टीम फाइनल के पहले दिन अनंतजीत सिंह नारू का भवतेक सिंह गिल और मैराज अहमद खान की चुनौती होगी। इसी इवेंट के महिला वर्ग में माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल के साथ साथ रायजा ढिल्लन निशाने साधेंगी। महिला टेबल टेनिस में भारत का सामना ग्रुप एफ में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। तैराकी में पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक के हीट 2 में ऋषभ दास और श्री हरि नटराज स्विमिंग पूल में होंगे। पुरुष फ्रीस्टाइल के हीट 2 में आकाश मणि उतरेंगे। हीट 4 में गीतेश हीरशाह भारत की चुनौती रखेंगे। पुरुषों की ब्रेस्ट स्ट्रोक में हीट 1 में दानुष सुरेश उतरेंगे। पुरुषों की 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले के हीट 2 में वेदांत माधवन, दक्षिण शशि कुमार, अनीश गौड़ा और साजन प्रकाश की चौकड़ी होगी। एमएमए के महिला ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में सूचिका तरियाल ईरानी प्रतिद्वंदी से मुकाबला करेंगी। हॉकी में भारतीय महिला टीम का सामना इंडोनेशिया से होगा। कबड्डी में पुरुष टीम का ग्रुप ए में जापान से मुकाबला होगा। महिला टीम ग्रुप ए में बांग्लादेश के साथ 2-2 हाथ करेगी। वुशु में रोशिबीना देवी महिलाओं के 60 किलो वर्ग के राउंड ऑफ 16 में बांग्लादेश की खिलाड़ी का सामना करेंगी। बॉक्सिंग में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में पहले मैच में सुमित थाईलैंड के सिंसिरी का

0: सामना करेंगे। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम की टक्कर पाकिस्तान से होगी।
1: तो अब बात करते हैं मेडल्स टैली की। चाइना 11 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ कुल 20 मेडल्स जीत कर टॉप पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर जापान है, जिसके पास भी कुल 20 मेडल्स हैं, लेकिन 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ वे चाइना से पीछे है। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, जिन्होंने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ कुल 14 मेडल्स अपने नाम किए हैं। वहीं अगर भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत फिलहाल 10वीं पोजीशन पर बना हुआ है, जहां भारत के खाते में अभी तक कुल 2 सिल्वर मेडल्स आए हैं और देश को अभी अपने पहले गोल्ड का इंतजार है।
0: तो भारतीय खिलाड़ियों की जीत की ये शुरुआत तो बस एक झांकी है, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। हमारे पदक वीरों को आपकी दुआओं और चीयर्स की जरूरत है। अब जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह 9:30 बजे हर घंटे हम आईची नागोया एशियन गेम्स की हर अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिर रात 10 बजे दिन भर की रिपोर्ट लेकर उपस्थित होंगे। अभी प्रोग्राम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और अमिशा पटेल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।

वाणी आकाशवाणी। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: यस, हम सब की वाणी आकाशवाणी। वन ऑफ आवर ओल्ड पोएट्स फॉर दिस इवनिंग इज मिर्ज़ा ग़ालिब। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। दामे हर मौज में है हल्का है सत्काम ए निहंग, देखें क्या गुजरे हैं कतरे पे गुहर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। हमने माना के तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक। यक नजर बेश नहीं फुर्सते हस्ती गाफिल, गर्मी बज्म है एक रक्स शरर होने तक। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। For those of you who have dropped off, half awake, half asleep, baby, it is time to come back to life, to the sound of Pink Floyd, playing on Akashvani at 10:38 and 18 seconds. You're in control this evening with your main man, your host with the most. And this is 102.6 magical, mind-blowing megahertz of Akashvani, in the business of broadcasting for more than 9 decades now. Take it away.

नमस्कार, रात के 11 बज चुके हैं और लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभियान के दौरान तेजस विमानों का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरतकालीन सत्र कल श्रीनगर से शुरू होकर सत्र के दौरान श्रीनगर में शुरू होगा। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रूपये के इनामी नक्सल कमांडर को मार गिराया गया। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को शहर में 1000 से अधिक ड्रोन दागे। एक तेल शोधन संयंत्र को निशाना बनाया गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। तो ये थी इस घंटे की खास खबरें और अब गजलों का प्रोग्राम रंगे महफिल पेश है।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आंखें जो उठाए तो मोहब्बत का गुमा हो, नजरों को झुकाए तो शिकायत सी लगे। दिन की भागदौड़ और बेचैनियों को अगर रात का आसरा ना हो तो जिंदगी ख्वाब देखने को भी तरस जाए। रात का अंधेरा और सन्नाटा जितना भी भयानक हो, लेकिन शायरों ने इसे पूरी ईमानदारी के साथ हर रूप में देखा और दिखाया है। जी हाँ, लफ्ज जब शायरी में दाखिल होते हैं ना तो अपनी हदों को लांघते हुए कई दुनियाओं की सैर कराते हैं। रात शायरी को सुनकर आप भी कुछ ऐसा ही महसूस करेंगे, हमें यकीन है। जो गजलें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं आपको पसंद आएगी। प्रोग्राम की शुरुआत कर चुकी हूं मैं नाज। प्रोग्राम है रंग महफिल।

102.6 पर आप सुन रहे रंग महफिल नाज के संग। ये शहर ये गलियां जब जब मेरे सामने आए किसी ने

जी हाँ, रात के 11:15 और मैं आपके साथ इस वक्त नाज प्रोग्राम जारी है रंगे महफिल। आज की रात ना कुछ खास है, थोड़ी थना, थोड़ी महकी हुई, बिल्कुल उस एहसास की तरह जब दिल के पास सिर्फ यादें होती हैं और एक हल्का सा दर्द भी। कभी कभी ना जिंदगी के सफर में हम भीड़ में होते हुए भी बेहद अकेले होते हैं, और कभी एक शख्स की याद ही पूरी दुनिया बन जाती है हमारी। होता है कि आपके साथ भी ऐसा शायद हो सकता है। और वो कहते हैं ना कि चांद की आज उदासी नजर आती है, चांद भी आज जाने क्यों उदास सा लगता है, जैसे उसको भी किसी का इंतजार है। और मैं भी खिड़की पर बैठी सोचती हूँ, क्या उन्हें भी हमारा ख्याल आता है? ये तन्हाई ना हमेशा हमारी दुश्मन नहीं होती, कभी कभी वही हमें खुद से मिलवाती है, रूबरू करवाती है। तो हो सकता है कि कोई शाम ऐसी गुजरे आपके साथ कि आंखों में नमी हो और दिल में कुछ कमी हो। तो बस कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करिए, रंगे महफिल सुनिए और डूब जाइए इस खूबसूरत गजल में।

11:21 हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक और आप सुन रहे हैं रंगे महफिल नाज के संग। मोहब्बत में कोई खत मुख्तसर अच्छा नहीं लगता, लिफाफे में फकत तितली का पर अच्छा नहीं लगता। तुम अपने दिल के कैमरे में मुझे क्यों कैद करते हो, मुसाफिर हूं, मुसाफिर को तो घर अच्छा नहीं लगता। मगर हाँ एक बात भी है, अजीब चाहत होती है इस दिल की, सोचता है मोहब्बत भी करे और आजाद भी रहे। बहरहाल आप तक पहुंचा रही हूं ये अगली गजल हरिहरन साहब की आवाज में, बेहद उम्दा।

इस खूबसूरत महफिल को गज़लों से सजाकर और खुशनुमा बनाकर हम आप तक लाते हैं। गज़ल ना सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं होता, ये दिल की आवाज़ होती है, जज्बात का आईना होता है। बहरहाल स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 11:28 हो गए हैं। अगली गज़ल आशा जी की आवाज़ में आप तक पहुंचा रही हूँ। सुनते रहिए रंगे महफिल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 6:30

0: 12 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आंख से आंख मिलाता है कोई, दिल के बंद दरवाजों को खटखटाता है कोई, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने खामोश निगाहों से बहुत कुछ बता जाता है कोई। कभी कभी कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं नजरों से बनते हैं। एक नज़र में अपनापन, एक नज़र में मुस्कान जब चेहरे पर तैरती है तो सैकड़ों बातें और एक ही मुलाकात में पूरी कहानी छुपी होती है। महफिल में हम बात कर रहे हैं एहसास की, जो आंखों से शुरू होकर दिल तक कब पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। और किसी का चेहरा जब आप देखते हैं तो बस लगता है देखते ही रहें।

0: ये आंखें ना बड़े उस्ताद होती हैं, कमबख्त गुस्ताख होती हैं, खामोशी से वार करती हैं, इशारों से कमाल करती हैं, जुबां की जरूरत नहीं दूर से ही हलाल करती हैं। आंखों पर इतनी बातें हो गई, दिल की बातें, जज्बात की बातें, एहसास की बातें। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। दोबारा बने रहिए रंगे महफिल में।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: भाई आहिस्ता आहिस्ता हम इतनी जल्दी प्रोग्राम के खात्मे पर आ गए, पता ही नहीं चला। देखिए ना, 11:48 स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, और इस वक्त मैं आपकी दोस्त नाज आपके साथ। कभी कभी ना जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब चारों ओर भीड़ होती है मगर दिल किसी एक शख्स की कमी महसूस करता है। तब लगता है कि दुनिया की ये सारी रौनकें फीकी हैं, क्योंकि सुकून तो बस उसी एक शख्स के साथ है। और अब मेरा एक बहुत ही पसंदीदा उम्दा गजल आप तक पहुंचा रही हूँ जगजीत साहब की ही आवाज में। आइए मिलकर सुनते हैं।

जी हाँ, रंगे महफिल आप सुन रहे थे नाज के साथ। ये गजलें जो इश्क यादों और चांदनी की नर्म रोशनी में भीगी हुई थी, कुछ एहसास लेकर जैसे हर दिल ने कभी न कभी महसूस किया होगा। तो खैर, कुछ ऐसे ही खूबसूरत गजलों को लेकर दोबारा किसी मोड़ पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। जा रहे हैं इस वादे के साथ कि आपसे दोबारा मिलेंगे। अपना खूबसूरत ख्याल रखिएगा फिलहाल। अल्लाह हाफिज़। शब खैर।

कई बार कहानी ख़त्म हो जाती है, किस्से बीत जाते हैं, मगर कुछ अलवास बाकी रह जाते हैं। जो हम नहीं कह सकते वो जज्बात बाकी रह जाते हैं। एक अधूरे इश्क की मुकम्मल सी यादें बाकी रह जाती हैं, जिनमें टूटे ख्वाबों के भी निशान शामिल होते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो। 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में मुख्य समाचार। समाचारों के साथ मैं हाजिर हूं दुर्गेश। आइए मुख्य समाचार सुनते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करी। राष्ट्रपति ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितम्बर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। सत्र के दौरान सरकार द्वारा GST, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। यूक्रेन ने कल रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को शहर में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को निशाना बनाया और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीम ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली का ये FM रेनबो है।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: There's something I want to tell you, girl. I don't know what it is. I just can't. You've done some kind of magic.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी रेनबो पर अभी आप सुन रहे थे जीरो आर शो। इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं इस गीत के साथ और आइए सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि

सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरतकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगर पालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। यूक्रेन ने कल रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को शहर में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते और महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। तो श्रोताओं, ये थे समाचार। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुहानी रात कार्यक्रम। सुहानी रात में हम आपको सुनवाएंगे 90s के बैक टू बैक सॉन्ग्स।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: मंगल भवन मंगलहारी,
7: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
8: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सपना पूरा होगा।
1: क्या तुम्हारा सपना पूरा हो गया?
0: पूरा ना सही, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है।
1: मुझे भी कुछ कुछ

0: होएगा ये तो मालूम था, लेकिन इतनी जल्दी होएगा ये नहीं मालूम था। देखो देखो कैसे अपना नाम उसके दिल पर लिख रहा है। देखो
1: दिल पर थोड़ी लिख रहा है, हाथ पर लिख रहा है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली पर एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। और अब समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों का परीक्षण किया।

भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरतकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। यूक्रेन ने कल रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को शहर में 1000 से अधिक ड्रोन दागे एक तेल शोधन संयंत्र को निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी रेनबो पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम फुलाए ना बनी।

0: मशहूर हो जाए।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम भुलाए ना बने। रात्रि के ठीक 3 बजे हैं। अब मुख्य समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्यवाही और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। नागालैंड में निर्वाचित आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत 8.838% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। SIR ने पहले से 13,57,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व नेताओं से

शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। श्री गुटेरेस ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संवाद, सहयोग और सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी है। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते, महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष महिला हॉकी टीम ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर

0: वाला इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
3: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

प्रातः के 4 बजे हैं और अब मुख्य समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्यवाही और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों ने साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। भारत और जापान ने वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। नागालैंड में निर्वाचित आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। SIR से पहले के 13,57,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतगणना फॉर्म जमा किए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व नेताओं से शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। श्री गुटेरेस ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संवाद, सहयोग और सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी है। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीम ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। समाचार समाप्त हुए।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

रामकथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

प्रातः के 5 बजे हैं। अब मुख्य समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्यवाही और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों में साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा। नागालैंड में निर्वाचित आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। SIR से पहले के 13,57,208 मतदाताओं में से 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता फॉर्म जमा किए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व नेताओं से शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। श्री गुटेरेस ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संवाद, सहयोग और सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी है। रूस में युद्ध के दौरान हुए संसदीय चुनाव के लिए कल रात मतदान खत्म हुआ। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का लगभग कोई विरोध नहीं किया था और क्रेमलिन का दबदबा और मजबूत होना लगभग तय। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीम ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।